तो जो नाम हमें सही उत्तर के साथ प्राप्त हैं हम वो पढ़ रहे हैं। अगला सही उत्तर हमें मिला है कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से अंगराज संदीप दत्ता और बंसी का।

साथियों, लगभग सभी मैसेजेस में बस यही लिखा गया है कि आज वो ऐप नहीं सुन पाए और सही उत्तर का समय जो है वो समाप्त हो चुका है भेजने का। तो अब अगर आप भेजेंगे भी तो नाम शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो साथी ऐप नहीं सुन पाए वो शायद प्रश्न भी नहीं सुन पाए हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। एक दिन वह नदी किनारे पत्थरों की तलाश कर रहा था। उसे वहां दो बड़े पत्थर मिले। वह दोनों को अपने साथ कार्यशाला में ले आया। सबसे पहले उसने पहले पत्थर पर छेनी और हथौड़ी चलानी शुरू की। जैसे ही पहला वार हुआ, पत्थर चिल्लाया, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ऐसे ही छोड़ दो। मूर्तिकार ने कुछ देर कोशिश की, लेकिन पत्थर हर वार पर विरोध करता रहा। अंत में उसने उसे छोड़ दिया। फिर उसने दूसरे पत्थर पर काम शुरू किया। उस पत्थर को भी चोट लग रही थी, लेकिन उसने सोचा, अगर यह व्यक्ति मुझे तराश रहा है तो शायद मेरे भीतर कुछ बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। कई दिनों, हफ्तों और महीनों तक मूर्तिकार उसे तराशता रहा। आखिरकार वही पत्थर एक सुंदर देव प्रतिमा बन गया। कुछ समय बाद उस प्रतिमा को गांव के मंदिर में स्थापित कर दिया गया। लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे, फूल चढ़ाने लगे और सम्मान देने लगे। उसे मंदिर के बाहर पहले वाला पत्थर सीढ़ी के रूप में लगा दिया गया था। लोग उस पर पैर रखकर मंदिर में प्रवेश करते थे। एक दिन सीढ़ी बने पत्थर ने प्रतिमा से कहा, यह तो अन्याय है, हम दोनों एक ही जगह से आए थे। आज लोग तुम्हारी पूजा करते हैं और मुझ पर पैर रखते हैं। प्रतिमा मुस्कुराई और बोली, जब मूर्तिकार हमें तराश रहा था तब तुमने पहली ही चोट से हार मान ली थी। मैंने दर्द सहा, संघर्ष सहा और खुद को बदलने दिया। आज जो सम्मान मुझे मिल रहा है वह उसी संघर्ष का परिणाम है। साथियों, जीवन में कठिनाइयां, असफलताएं और चुनौतियां हमें तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आती हैं। जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है वह वहीं रह जाता है जहां वह है, लेकिन जो धैर्य के साथ कठिनाइयों का सामना करता है वही एक दिन अपनी पहचान बनाता है। आज का संघर्ष

साथियों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं आपकी बात akashvani@gmail.com पर। इसी के साथ ही कार्यक्रम सुबह सवेरे संपन्न करने की गेशना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब प्रस्तुत है नॉन फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम स्वरांजलि। गीत से पहले सुनिए ये संदेश।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ,
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे हैं शैल की आवाज में।

कार्यक्रम स्वरांजलि की अंतिम पेशकश आपने सुनी साबरी ब्रदर्स की आवाज़ में। इसी के साथ ही कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र।

0: रुकुमार जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कि कौन कौन आते थे?
1: अब्बा जी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह खान
1: साहब और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफ़ी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके एक बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोज़र हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमीम अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
0: तबला जो था उसमें, उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और किन से आपने सीखा?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने से आई, कुछ चीज़ें सीखने से आई, और कुछ चीज़ें जो हैं अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, ख़ास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित शामता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तरखवा खान साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सब को देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में बिठाई, और मैं आज भी वो चीज़ें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गज़लें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला। उसमें से ये एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था।

0: 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहाँ मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में
0: और वहाँ पर हारमोनियम पड़ा हुआ था, ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था, और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई। उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
2: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौड़ को

0: जमाना।
1: लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौड़ पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

नमस्ते कुरुक्षेत्र सुनने वाले सभी श्रोताओं को गेशना का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हमसे बात करने के लिए और अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए कॉल करें 221-322 पर। कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड है 01744। जब तक आप हमें कॉल मिलाते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, नमस्ते। कौन बात कर रहे हैं?
1: बेटा जी, प्यार अते सत्कार परी सत श्री अकाल पाई।
0: जी, सत श्री अकाल जी।
1: मैं बेटा पिंड मौड़ को

हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो। लगता है किसी कारणवश कॉल कट गया है। हमारे साथ राजेश जुड़े थे, जिन्होंने दस्तूर फिल्म के गाने की हमसे फरमाइश की थी, तो उनकी फरमाइश पर ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार मैम, मैं जबलपुर एमपी से अशोक सिंह बोल रहा हूँ। आदरणीय मैडम जी को प्यार भरी राम राम।
0: जी अशोक जी, आपको भी राम राम, बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में।
1: मैं कैसी है और आकाशवाणी की अपने कुरुक्षेत्र के?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आकाशवाणी के भी सभी सदस्य बहुत अच्छे हैं
1: जी। मौसम कैसा है मैम?
0: मौसम हल्की बारिश वाला था, ठंडा हुआ, अब थोड़ी धूप भी निकल आई है।
1: इधर तो धूप है, गर्मी है, परसों बरसा था पानी।
0: अच्छा, अभी तो हल्की बारिश हो गई सुबह। मौसम तो ऐसा हुआ था कि खूब बरसेगा, पर वैसा हुआ नहीं, बारिश धूप तो निकल आई, पर अभी हाँ जी। चलिए, अब बारिश धीरे धीरे सब जगह हो ही रही है जी।
1: आपके कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी है
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: गाना चुनवा दीजिए, हम तुम्हारे चरणों का टाइटल का
0: जी। आपकी फरमाइश पर ये गीत आपको सुनवाते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: हेलो
1: जी, लाइन पे हूँ मैं।
0: जी नमस्कार, कौन श्रोता बात कर रहे हैं?
1: परम मालिनी दीदी, सारा सा प्रेम प्यार से नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं।
1: जी, मैं आपका राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप लोग कैसे हैं?

0: बहुत बढ़िया है। आप बताएं, आप कैसे हैं?
1: मैं तो बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा जुनून है, दीवानगी है। और जब कभी आपसे वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त होता है तो बहुत ही खुशी प्रसन्नता होती है, एक सुखद अनुभूति होती है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं और आप लगातार सुनते हैं।
1: जुड़ता हूँ 2 या 3 सप्ताह के बाद, जैसे कि दूसरे श्रोताओं को मौका मिले और हमें उनके विचार और बात करने का जो अंदाज है वो भी सुनने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है।
0: जी, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे जो श्रोता है उन्होंने हमारी इस बात को समझा कि 15 दिन के बाद जो है वो कॉल करें और लौटकर फिर हमारे साथ जुड़ें, ताकि नए श्रोता भी जो हमारे साथ जुड़ सकें। तो इसका
1: जी
0: हमने भी ध्यान रखा और श्रोताओं ने भी ध्यान रखा, उन्होंने हमारी बात मान ली। अब काफी श्रोता जो है वो
1: सभी को ये बात को मानना चाहिए और नियम का पालन करना चाहिए, दूसरे के दूसरे श्रोता।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है इतनी। आज गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप?
1: आर्यन दीदी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है बलमा
0: जी
1: और इसका शीर्षक गीत है बांसुरिया अब यही पुकारे बलमा नदिया किनारे। ये गीत सुनना चाहता हूँ आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से।
0: जी, आपके पसंद का गीत सुनवा रहे हैं, साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी हृदय धन्यवाद, आभार, आपका दिन मंगलमय हो, सादर नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, नमस्ते। कौन बात कर रहे हैं?
1: कृष्णा मैम, आपको गुड गुड मॉर्निंग, नमस्कार।
0: जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताएं।
1: मैम, मैं करनाल के पास गांव है रावर रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा बोल रहा हूँ मैम।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान भूषण जी। और कितने समय बाद आप कॉल कर रहे हैं?
1: मैम, मैं कम से कम 4 महीने हो गए मैम
0: चार
1: मेरे को
0: महीने हो
1: बात की
0: गए
1: हो।
0: चलिए। और आप कार्यक्रम सुन रहे थे लगातार?
1: कार्यक्रम तो लगातार सुनता रहता हूँ। असल में मैं ना जॉब करता हूँ मैम,
0: जी जी जी
1: तो जॉब के दौरान फिर कभी मौका मिलता है
0: जी
1: तो
0: जी
1: फोन
0: जी
1: मिला
0: जी
1: लेते हैं, लेकिन
0: जी जी
1: प्रोग्राम तो रात को भी और सुबह सुपर बात तो जरूर सुन।

0: सुनते हैं ना।
1: चलिए, अपने इस मतलब बिजी दिनचर्या में से आप रेडियो के लिए समय निकाल रहे हैं, हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: मैम रेडियो तो ना हमारे जीवन का एक ऐसा अंग बन चुका है कि जिसको छोड़ना हमारे लिए हम सोच भी नहीं सकते। रेडियो को शुरुआत भी रेडियो से होती है और रात
1: जी
0: की जो अंत होता है वो भी रेडियो से ही होता है। हाँ
1: चलिए, बहुत बढ़िया है।
0: जी
1: तो फिर आप रेडियो पर गीत सुनते रहते हैं, फिर आप खुश रहते होंगे हमेशा।
0: मैम, एक बात मैंने देखी है, अगर जिंदगी में आपको खुश रहना है ना और
1: जी
0: लंबी उम्र जीना है तो संगीत के साथ रहना शुरू कर दो।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आपके पास ना और पॉजिटिविटी तो आप में ना कई प्रॉब्लम कई बीमारियां हैं जो शरीर में आती ही नहीं। मैम
1: जी जी जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अच्छा, आज आप कौन सा गीत सुनेंगे ये भी बता दें।
0: मैम गीत जैसे पिछले 2-3 दिन से ना 4 दिन से भीषण गर्मी का सामना हो रहा था,
1: जी
0: लेकिन
1: बिल्कुल
0: कल तो बहुत ज्यादा ही थी गर्मी, 44-45 डिग्री तापमान था।
1: जी
0: लेकिन आज सुबह ऐसा मौसम ने करवट बदला और सुबह सुबह हमारे करनाल में भी और कुरुक्षेत्र में भी
1: जी
0: ठंडी
1: बारिश
0: ठंडी
1: हो
0: हवाएं चली,
1: गई।
0: बादल आए और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी होगी जिससे मौसम सुहाना हो गया।
1: जी जी जी हाँ, धूप के बावजूद भी मौसम काफी अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसी गर्मी नहीं है अभी।
0: आप धूप में भी ना ऐसा महसूस नहीं हो रहा जैसे कल था। तो
1: जी
0: इसी
1: जी
0: उस उपलक्ष्य में अनाड़ी फिल्म का गीत है, ये कृष्णा कपूर जी पे फिल्माया गया है कि
1: जी
0: क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, वो सुनवा दो मैं।
1: चलिए, आपके पसंद का गीत सुनवा रहे हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया मैम।

साथियों, बात करते हैं पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। पेड़ प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं। इनके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना लगभग असंभव है। पेड़ न केवल हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। पेड़ वायु प्रदूषण को कम करते हैं, धूल धुआं और हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने में भी सहायक हैं। पेड़ जल चक्र को संतुलित बनाए रखते हैं, वातावरण में नमी बनाए रखने में मदद करते हैं और वर्षा को आकर्षित करने और भूजल स्तर बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखती हैं, मिट्टी के कटाव और बाढ़ के प्रभाव को कम करती हैं। फल, मेवे और अनेक खाद्य पदार्थ पेड़ों से प्राप्त होते हैं। नीम, आंवला, अर्जुन, अशोक जैसे अनेक पेड़ों का उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों में भी किया जाता है। पेड़ मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। पेड़ पक्षियों, पशुओं और अनेक जीवों का घर होते हैं। जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखते हैं। लकड़ी, कागज, रबड़, गोंद और कई उद्योगों के लिए कच्चा माल पेड़ों से प्राप्त होता है। लाखों लोगों की आजीविका वन और वृक्षों पर निर्भर है। हरियाली तनाव को कम करती है। पेड़ों के बीच समय बिताने से मन को शांति मिलती है। स्वच्छ वातावरण बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करता है।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: साथियों, जोश हमारे श्रोता जो फुटबॉल प्रेमी हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि फीफा विश्व कप 2026 का शुभारंभ हो चुका है। यह विश्व कप पहली बार 3 देशों अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है। इस बार टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप है। उद्घाटन मुकाबला मेक्सिको सिटी में खेला जाएगा और पूरे टूर्नामेंट में कुल 104 मैच आयोजित होंगे। दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रशंसकों की नजरें अब इस महाकुंभ पर टिकी हैं, जहां नए रिकॉर्ड बनेंगे और नए सितारे उभरेंगे। खेल भावना, रोमांच और विश्व एकता का संदेश लेकर फीफा विश्व कप 2026 का आगाज हो चुका है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
3: साथियों, अफवाहों के बीच की सच्चाई को पहचानना बेहद जरूरी है। आज के डिजिटल युग में जानकारी पहले से कहीं अधिक तेजी से फैलती है, लेकिन इसके साथ ही अफवाहें और छोटी खबरें भी बहुत तेजी से फैलती हैं। इसलिए इनसे अपना बचाव करना और सच्चाई की पहचान करना बेहद जरूरी है। अब अफवाह क्या होती है? ऐसी सूचना जिसका सत्यापन ना हुआ हो और जो बिना प्रमाण के फैलाई जाए वह अफवाह कहलाती है। अफवाहें अक्सर अधूरी, भ्रामक या पूरी तरह झूठी हो सकती हैं। सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स और मौखिक बातचीत के माध्यम से ये तेजी से फैलती हैं। लोगों में भय और भ्रम पैदा होता है, समाज में तनाव और अविश्वास बढ़ता है। कई बार अफवाहें सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती हैं, आर्थिक और मानसिक हानि भी हो सकती है। सही जानकारी हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। जागरूक नागरिक बनने के लिए तथ्य जानना आवश्यक है। गलत जानकारी को रोकने में हर व्यक्ति की भूमिका होती है। सत्य की पहचान समाज में विश्वास और शांति बनाए रखती है। अब इसकी सच्चाई को कैसे पहचाने? जहां से आपको मैसेज या बात बताई गई है उस स्रोत की जांच करें। खबर कहां से आई, क्या वह विश्वसनीय समाचार संस्था या आधिकारिक स्रोत से है। जानकारी को क्रॉस चेक करें। एक ही खबर को कई विश्वसनीय स्रोतों पर देखें। केवल एक संदेश या पोस्ट पर भरोसा ना करें। कई बार पुरानी घटनाओं को नई बताकर साझा किया जाता है। खबर की तारीख और परिस्थिति अवश्य जांचें। जो संदेश बहुत अधिक डर, गुस्सा या उत्साह पैदा करें उन्हें तुरंत सच न माने और मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले इसकी जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि कई बार जब हम आगे से आगे ऐसे मैसेज पहुंचाते हैं और बाद में पता चलता है कि ये सब एक फ्रॉड था, तो इससे बचें और अपना ध्यान रखें।

साथियों, इसी के साथ ही कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र संपन्न होता है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं आपकी बात आकाशवाणी @gmail.com पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र, FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ खता न हो, जो ये दिल दीवाना।
1: मोहम्मद रफ़ी और साथियों को आप सुन रहे थे, फिल्म धर्मपुत्र की ये कव्वाली थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे, एन दत्ता का संगीत था।

0: बेगम अख्तर की आवाज में ये पारंपरिक दादरा गीत आप सुन रहे थे।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

छोड़।

0: ये पॉप गीत आप सुन रहे थे अदनान सामी की आवाज में, समीर के बोल थे।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
4: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग।

सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज थी, देव कोहली के बोल थे, आनंद राज आनंद का संगीत था, ये फिल्म थी हमको तुमसे प्यार है।

0: शारदा सिन्हा की आवाज में मैंने प्यार किया इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। असद भोपाली के बोलों को सुरों में ढाला राम लक्ष्मण ने।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही है बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं को समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान के वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मेनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगे, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

राम और श्याम फिल्म का दो गाना था मोहम्मद रफी आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। जब याद किसी की आती है इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं, महेंद्र कपूर की आवाज है, राजा मेहदी अली खां के बोल हैं।

0: का सर्वदिखिया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी जब याद किसी की आती है, महेंद्र कपूर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खान के बोल थे।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: शंकर जय किशन की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने, हसरत जयपुरी का लिखा, ये नगमा आपने सुना फिल्म शिकार से।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्वरबद्ध किया गीत आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर का गाया, राजा और रंग फिल्म से, आनंद बख्शी की रचना है।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

0: मैं तुलसी तेरे आंगन की, इस फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर आशा भोसले का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को शुरू में ढाला लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल ने।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे,
2: नहीं ते
1: नहीं ते

मर्यादा फिल्म का दो गाना आपने सुना, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज से और इस गीत की रचना की आनंद बख्शी ने। आदमी और इंसान फिल्म का ये गीत है, आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजें, साहिल लुधियानवी की बोल।

तो बनती है हथकड़िया, हाय टूटती है पायल तो बनती है हथकड़िया।

0: आप सुन रहे थे सुहाग फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे थे इस वक्त कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने

0: बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

संस्कृत भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, ये तो सही है कि आप जहाँ जहाँ हैं विविध भारती साथ साथ है, और साथ है सरगमी नगमों का जादू जो हमारे दिल की हर बात जानता है, कहता है और सुनता है। हमारी खुशियों, हमारी जिंदगी के सफर में शामिल इन नगमों की परवाज का क्या कहना, और उन बातों, उन शिकायतों का भी क्या कहना जिनमें छुपा छुपा सा प्यार भी नजर आ रहा है, और यही बातें मिलकर बनाती हैं इस प्रोग्राम को सुरीला सफर। तो अब आज की इबारत से पहले उन श्रोताओं को बता दें जो अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं, इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं दे पाए हैं, तो लॉग इन कर सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai, और इस पते पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। और अब आपको बता दें आज की इबारत। एक रात दस्तक दी किसी ने, दरवाजा खोला तो देखा जैसे मेरी ही शक्ल, मेरा ही हमसाया। कहने लगा मैं तुम्हारी ही यादें हूँ, रैन बसेरा चाहता हूँ। याद करो वो भोर की किरणों का पनघट पर बसेरा, इसी पनघट पर जब बातें होती थीं। एक दिन जब खो गया कहीं कान का बाला, वो सूंधी रोटी, वो खिलौने, वो रेत की नाव, वो झाग के माझी, वो काठ की रेल, वो सीप के हाथी, वो मोम के चाक जो रुके न चले, वो संगी साथी, वो जादूगर का खेल, वो पगडंडी में दौड़ना, जब तुम्हारे आने से मेरी टूटी फूटी नाव सज जाती थी, कभी तुम्हारी मुस्कुराहट को देखते, कभी सोचते कि हमसे तो ये पायल ही अच्छी है, काश अपनी आंखों में बसा कर ये तस्वीर रख लूं, फिर कोई दिल तोड़ चला। सखियां भी एक एक कर ससुराल चली गईं। एक रोज डाकिया डाक लाया, पता चला ये शहर ही अब जिंदगी बन गए, और मन गांव में बस गया। शहर में कमरे ज्यादा हैं, घर बड़ा है, शायद इतना बड़ा कि कोई मिलता नहीं। शहर की इस आपाधापी में कोई पास बैठता नहीं, हाल पूछता नहीं। सुनो चलो उसी मनमोहक गांव में वापस चले, जो आज भी वैसा ही है, जिसकी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, शायद हमने दुनिया से अलग एक गांव बसा रखा है। तो ये थी श्रोताओं आज की इबारत, आज का टेक्स्ट, और अब

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत तेजी से खेलों का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने ओलंपिक की तैयारियों को विकसित भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया, साथ ही विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में खेल जगत में भारत की पहचान और मजबूत होगी।
1: भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये खाती और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है।
0: हरियाणा में सिरसा के थाना डिंग और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 88 किलो 970 ग्राम अफीम बरामद की है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस कार्रवाई में एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने यह जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त हरियाणा के संकल्प को साकार करने की दिशा में हरियाणा पुलिस लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि यह बरामदगी न केवल बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की खेप को बाजार तक पहुंचने से रोकने में सफल रही है, बल्कि अंतर्राज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क को भी गहरा झटका पहुंचाने वाली कार्रवाई है। आयुष विभाग द्वारा जींद के ग्राम पंचायत कौंडल गहलव आमरू में योग जागरण यात्रा निकाली गई। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर हमीदुल्लाह ने बताया,
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ताल्लुक से

0: हमारे यहाँ तैयारियां चल रही हैं और इस सिलसिले में 8 से 10 तक प्रत्येक गांव में योग जागरण यात्राएं निकाली गई हैं। 11, 12, 13 को हमारे यहाँ प्रशिक्षण शिविर चलेगा जिसमें ब्लॉक लेवल पर भी प्रोग्राम होंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। इसके अलावा 15 जून को योग मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 16, 17, 18 में अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रशासनिक अधिकारियों सभी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाएगा।
1: आज हरियाणा में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कुरुक्षेत्र में सुबह करीब 3 बजे तेज आंधी के साथ बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट आई है, जिससे मौसम भी सुहावना बना हुआ है। कुरुक्षेत्र में समाचार लिखे जाने तक हल्के बादल छाए हुए थे। अम्बाला में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवा के साथ बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कहीं कहीं जैसे कि कुरुक्षेत्र में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है जिससे तापमान में गिरावट आई है। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो समाचार लिखे जाने तक हल्के बादल छाए हुए थे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
2: वो आजादी, वो स्वच्छंदता अब लौट के नहीं आने वाली। जब मेघ बरसते थे, भीगते निकल जाते थे और साथियों के साथ चपाकचई खेलते, बहते धारे में कागज की नाव चलाते, दिन भर बिना भूख प्यास की चिंता के नदी के पार जाकर खेतों से खरबूजे चुराया करते। एक श्रोता और लिखते हैं कि आज की इबारत केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि अतीत की स्मृतियों और आधुनिक जीवन के अकेलेपन का एक बेहद खूबसूरत और मर्मस्पर्शी दस्तावेज है। लेखक इन्होंने लिखा है कि बड़ी संवेदनशीलता के साथ शहरी चकाचौंध के पीछे छिपे खालीपन और ग्रामीण जीवन की निश्चलता के बीच द्वंद को हमने उभारा है। आखिरी पंक्तियां शायद हमने दुनिया से अलग एक गांव बसा रखा है, ये दर्शाती हैं कि भले ही भौतिक रूप से इंसान शहर में कैद हो लेकिन उसका मन आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। ये अंत निराशा में भी एक खूबसूरत उम्मीद और सुकून देता है। गाँव की तो बहुत सारी यादें होती हैं। श्रोताओं, आपको अपना गांव क्यों अच्छा लगता है और इसकी क्या खासियत है? क्या कुछ है जो आप अपने गांव में अब भी याद करते हैं और क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं? तो ये हमें ज़रूर लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं बहुत सारे गीतों के बारे में, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, ढूंढो ढूंढो रे साजना, तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी कोई चीज़ गांव में कहीं खो गई हो या फिर पनघट पे कहीं रह गई हो, तो आप ज़रूर बताइए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं जाते हैं तो कुछ खास गीत एक अकेलेपन में बैठकर सुनते हैं। गांव में क्या कुछ आपके साथ ऐसा हुआ तो हमें लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं, शहर और गांव हमेशा से एक नियमित प्रसंग के रूप में किसी भी वाद विवाद की चर्चित विषय के रूप में उभर कर आते हैं। अधिकांश शहरवासी शहर छोड़कर गांव में रहने की कल्पना भी नहीं करते, चाहे कितनी भी दुश्वारियां हों शहर में, वही गांव में रहने वाले मजबूरी में ही शहर का रुख करते हैं और बाद में वहीं के होकर रह जाते हैं। भारत में शहर और गाँव दो अलग अलग संस्कृतियों और जीवन शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहाँ शहर आधुनिकता, गति और सुविधाओं का केंद्र है, वहीं गाँव सादगी, परंपरा और प्रकृति के करीब होते हैं। तो आप बताइए कि आपके गांव में क्या कुछ ऐसा था जो आप भी आज भी आपकी यादों में बसा है और क्या कुछ ऐसी चीज है जो आपके गांव की यादगार चीज है।

तो अगर आपने फिल्म देखी है गंगा जमुना तो आप जरूर बताइए, और आपको याद ही होगा तो इनका बाला कहाँ है, कहाँ गुमा है, आप क्या ढूंढ सकते हैं, तो हमें जरूर बताइए अगर आपको मिला हो। वैसे गांव में भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जब आप पनघट पर गए होंगे, कोई चीज या कहीं गए होंगे, कुछ खो गई होगी, तो कुछ यादें अगर इसे मिली जुली आप साझा करना चाहते हैं तो जरूर करें। और गाँव की बहुत सारी खासियत होती है श्रोताओं कि गाँव में जो यादें हैं, रहट का पानी है, या अगर आपको याद हो कहीं दूर रेडियो में कोई गीत बजता हो जो आपको अपनी तरफ खींचता हो, या कोई फिल्म ऐसी जो आपने गांव के थिएटर में देखी, क्योंकि गांव में पहले थिएटर कम हुआ करते थे। एक और श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दूं कि गंगा जमुना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। इस गीत से पहले सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गीत आपने सुना जो जीना तमान पर फिल्माया गया, और सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार आपको बताने हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, यादें अजीब होती हैं, एक तो बिन बुलाए आ जाती हैं और आ जाए तो सांस थमने सी लगती है। किसी पुरानी फोटो को देखो जो धुंधली पड़ गई, लेकिन उसके पीछे उससे जुड़ी याद हमेशा ताजी मिलेगी। कुछ यादें शब्द मांगती हैं तो कुछ यादें खामोशी, कुछ आवाजें अब भी दुनिया में नहीं, पर कभी कभी लगता है कि कंधे पर हाथ रखकर कह रही हूं अपना ध्यान रखना, वो हाथ जो अब कंधे पर नहीं पर थकान में सहारा बन जाते हैं। यादें हमें एक ही समय में दो जगह रख देती हैं, शरीर को वर्तमान में और दिल को किसी सुनहरे अतीत में। दुख इस बात का नहीं कि वक्त बदल गया, दुख इस बात का कि वो लम्हे अब दोबारा नहीं जी सकते। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज एक बार फिर काफी लंबा गद्यांश सामने आया है और साथ मिलाया है वो बचपन की यादें जो कभी मन को सुकून देती, जब पनघट पगडंडी खेत खलिहान नदी झरने रेत पर उकेरी तस्वीरें सब अपने से लगते थे और हम खुशियों के से पल भरे पल जीते थे, लेकिन जब ये छोड़ शहर की ओर चले तो वक्त की लाठी ने धीरे से सब कुछ छीन लिया और दे दिया खालीपन, बस बाकी रह गया तो सुनहरी यादों का गांव मन के भीतर एक कोने में। तो जादूगर की भी बहुत सारी यादें होंगी श्रोताओं, आप बांट सकते हैं, क्योंकि ऐसी यादें तो मेरे पास भी बहुत सारी हैं कि जादूगर आया करते थे गांव में।

प्रदीप कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म नागिन से, और एक गीत के हमने संगीतकार आपसे पूछे थे सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि भोर भय पनघट पर अब वो दौर कहाँ जब पनघट पर गांव की गोरियां इकट्ठे होकर दिनचर्या की बातें किया करती थी, अब हर घर पर नल से जल हो गया है, पगडंडी थी अब वो पक्की सड़क बन गई है, मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया है, डाकिये की साइकिल की घंटी मूक हो गई है, डाक का स्थान अब मोबाइल मैसेज और ईमेल ने ले लिया है, गाँव के हरे भरे जंगल जैसे माहौल को शहर के कॉन्क्रीट के जंगलों ने उजाड़ दिए, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, इस गीत को इन्होंने याद किया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस चिलचिलाती धूप में विविध भारती के गानों की बौछार हो रही है, ये कहीं न कहीं हमारे मन को सुकून और दिल को ठंडक पहुंचा रही है, सचमुच ही विविध भारती का ये सुरीला सफर हम श्रोताओं को एक साथ जोड़ता है और जो कि इस कार्यक्रम को रंगारंग दिलचस्प बनाता है, और इन्होंने विविध भारती का शुक्रिया किया है, तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और श्रोताओं कार्यक्रम तो आपके शामिल होने से ही बनता है। एक श्रोता और लिखती है कि गांव की अनमोल यादें ताज़ा हो रही हैं, इस इबारत में गाँव का प्राकृतिक सौंदर्य, नदी का किनारा, नैया की सफर, सूंधी मिट्टी की खुशबू, शुद्ध हवा की शीतल लहरें, अनुपम सौंदर्य, सूर्यास्त, गांव का मेला, खेल खिलौने, मौज मस्ती, गांव में गुजरे बचपन की सभी यादें दिखाई देने लगी हैं, उसी की तस्वीर लेकर आ रहा है ये सुरीला सफर, और कुछ गीत भी इन्होंने बताए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्द हो सकते हैं रात दस तक यादें, भोर पनघट, सौंधी रोटी, खिलौने, रेत की नाव, जी हाँ, और गीत भी बताएं।

सिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार आप बताना चाहें तो बता दें श्रोताओ। गांव तो अपने आप में बड़ा खूबसूरत होता है, यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं। बगीचे से आम चुरा कर चोरी चोरी दोपहर में खाना, रहट का पानी, गांव की क्या खासियत है आपके गांव की। रेडियो की यादें, कुछ थिएटर की यादें, बाइस्कोप की यादें, दिनचर्या, पत्र जो आपके पास आया करते थे, तो क्या नहीं है गांव में। ऐसी बहुत सारी बातें हैं श्रोताओं। क्या कभी आपने बैलगाड़ी का सफर किया या साइकिल से स्कूल जाते थे, ये भी आप हमें जरूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है संगीतमय होगा, हमें इबारत पढ़ ली है, हम गांव और शहरों में तुलना करें तो हमें गांव ही अच्छा लगेगा। गांव में अपनापन होता है, वहीं शहरों में भीड़ तो बहुत है पर अपना कहने वाला कोई नहीं। और एक बात, इन दिनों शहरों में शाम के वक्त कुल्फी चाट के ठेलों और अन्य दुकानों में सुंदर लाइट से सजी दुकानें शाम होते ही जगमगा उठती हैं, और वहीं गांव में शांत सुकून के साथ अपने घर के छत पर शाम को लेटे हुए चांद तारों को तकना किसी अद्भुत दुनिया की ओर हमें ले जाता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मर्म को छू लेने वाली है हमारी आज की इबारत, हमारी पीढ़ी वालों को झकझोर देती है। बचपन गांव में या छोटे शहरों में बीता, आज बस आडंबर की भीड़ में मात्र एक इकाई बनकर रह गए हैं। अभी भी दिल के कोने में वो मंजर, हरियाली, बाग बगीचे, कुआं तालाब, बरगद की छांव में चारपाई पर लेटना आदि दिल के कोने में छुपी हुई इन्हें शहरी भीड़ में तलाशते हैं, मगर सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन याद करके दिल को सहला लेते हैं। मिट्टी की सोंधी खुशबू वाली सफर का इंतजार है। तो जी हाँ, ये सफर जो है वो तो जारी है। आप भी अपनी बातें कहिए गांव को लेकर, गांव की यादों को लेकर, और गांव आपको क्यों याद आते हैं ये जरूर बताइए।

ये प्यारा सा संगीत था नौशाद का, और आप कलाकार बता दें। एक कलाकार हम आपको बता देते हैं, राजेंद्र कुमार। जी हाँ, ये गीत था फिल्म गंवार से। बाकी आप बताइए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का सफर सुरीला बड़ा प्यारा है, गांव की सभी यादें ताजा हो गईं, और हमें भी याद आता है कुएं से पानी भरना, बैलों को पानी पिलाना, गाय का दूध निकालना, बकरियां, वो आंगन में सब कुछ समेटना, और रोजगार के लिए हमेशा काम करते रहना। जी हाँ, जब रोजगार की बात आती है तो नैया, जिसका गीत हमने आपको सुनवाया, नाव भी बड़ी साधन है रोजगार का, और हम ऐसी नैया को प्रणाम करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो गांव में बड़ी ज्यादा खुशियां या प्यार या लोग बड़े अच्छे होते हैं, शायद इस वजह से कि वहां संतोष बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा न पाने की इच्छा होती है, शायद इसीलिए गांव और गांव के लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। इन्होंने और भी थोड़ी बड़ी इबारत लिखी है। वैसे एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत भावुक है, गांव की यादें, बचपन, बिछड़न, शहर का अकेलापन, ये सारी बातें इन्होंने लिखी है, और बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल के दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, वो दिन याद करो, भोर भये पनघट पे, ढूंढो ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला, बहुत सारे गीत इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की यादें जब दस्तक देती हैं, तब हम मन के बंद दरवाजे खोलते हैं, भूली बिसरी शक्लें, पनघट की यादें, खिलौने, रेत के घर, कागज की नाव, सब याद आता है। तो इनमें से आपको क्या पसंद था? रेत पे घर बनाना, खिलौने, कौन से खिलौने आपको अच्छे लगते थे, या अपने स्कूल की कोई याद? खासकर जब हम लोग स्कूल में थे तो चटपटी चीजें बहुत खाते थे श्रोताओं, और अब तो जंक फूड आ गए हैं। आप बताएं ये कलाकार कौन है।

बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म ठोकर से। सजन दिलवी के बोल थे और श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि जो कभी गांव में गया ही ना हो और वो लोग गांव के बारे में क्या जानेंगे, गांव का मिलनसार जीवन, लड़ते झगड़ते दोस्तों का गांव की जिंदगी।

क्या होती है वो बातें याद आती हैं तो दिल में एक कसक सी उठ जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जादूगर एक बार हमारे मिडिल स्कूल में शो करने आया था। खेल की घंटी में स्कूल के प्रांगण में एक घंटे तक ये शो हुआ। बात 1976 के सितंबर की है। हमने घर से 75 पैसे लेकर उसे दिए थे। बहुत मजा आया था। जी हाँ, तब पैसे भी बहुत कम हुआ करते थे और थोड़े से पैसे में बहुत सारी चीजें हम खरीद लिया करते थे। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मेरे गांव के चारों तरफ पहाड़ है, जैसे एक टोकरी होती है, जिसके कारण मेरे गांव का नाम टोकर है। मेरे गांव की लोकेशन बहुत अच्छी है। गांव उत्तर दिशा की पहाड़ी की तलहटी में बसा है। दक्षिण की तरफ तालाब है जिसका नाम कायरा तालाब है। गांव तो हमारा जीवन है, इसकी हर चीज हर स्थान हमारे रग रग में बसा हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच अपने गांव में बचपन की यादें और पुराने दोस्तों के साथ बिताए गए पल आज भी बहुत सताते हैं। गांव की भोर की बेला में पक्षियों की चहचहाट और बचपन के दोस्तों की यादें किसी मरहम से कम नहीं। ये अनमोल पल में बिताए गए बचपन से जोड़े रखते हैं, जिसमें हमारे मन को असीम सुकून और शांति देते हैं। और भी इन्होंने अपनी बातें बहुत सारी लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का जो ये सुरीला सफर है, अक्सर लोग गाँव छोड़कर शहर में रहने लगे हैं, लेकिन गांव में जो आपसी प्रेम और भाईचारा देखने को मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता। शहर में तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता। मनुष्य अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए शहर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जो गांव में थी। तो खिलौने वालों की जो यादें हैं वो आप हमसे साझा कर सकते हैं।

संध्या पर फिल्माया गया दो आंखें बारह हाथ फिल्म का ये गीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है इस गीत के बारे में, तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद इस गीत को पहचानने के लिए। और भी हमारे कुछ नगमे हैं, देखते हैं कि कौन से शामिल हो पाते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, अरे वाह, तीन गीत मेरे शामिल हो गए, आज सुहाना सफर में पुरानी यादें ताजा हो गई। मेरे गाँव की पैदाइश है, बहुत सुंदर था बचपन, हमारे गाँव में रामलीला होती थी और इन्होंने निम्बाड़ी लोकगीत गणगौर उत्सव में बड़ा आनंद आता था, बहुत याद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल में शुभकामनाएं, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं, आपने रुला दिया वो बहुत यादों को, जगा दिया। तो जी हाँ, यादें तो होती ही ऐसी हैं, समय समय पर इन्हें जगाना भी चाहिए श्रोताओं। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये हकीकत है कि गुजरे वक्त यानी पास्ट में हम जा नहीं सकते, इसलिए अपना अक्स अपने बच्चों और आसपास के बच्चों में देखा करते हैं। बचपन में मैं स्कूल और कॉलेज जाया करता था, उनकी सभी गतिविधियों को देखकर मैं ये सोचता हूँ और महसूस करता हूँ जैसे उनकी शक्ल में मैं स्वयं हूँ, उनमें स्वयं को देखकर अपने गुजरे वक्त को याद करके बहुत खुश होता हूँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी मैंने आठ गीतों को लिखा और पहला गीत शामिल हुआ जो भोर भय पनघट में, जी हाँ, तो यही तो आपको पहचानना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की भारत पढ़कर आपने बचपन और बचपन के साथी याद आ गए, हमारे मन बहुत बेचैन हो रहा है, कौन कौन से साथी बिछड़ गए पता नहीं।

0: ये तो बैलगाड़ी है जिसमें ये दुल्हनिया जा रही है, ये कौन सी दुल्हनिया है वो आपको बताना है, फिल्म पहचाननी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको बताऊं, मेरे गांव से एक नदी बहती है, बचपन में हमने इस नदी के पाट करीब 100 फीट के आसपास देखा है जो कि बरसात में 1 किलोमीटर दूर तक हो जाता था, किंतु अब बहुत दुख होता है वो केवल एक नाले में परिवर्तित हो गया है। इस नदी के पास आम के बगीचे होते थे जो आज नहीं है। जी हाँ, यही सारी चीजें हैं जो हमें बचानी है। श्रोताओं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, अगर कुछ खास करते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, जैसे पेड़ वगैरह लगाने को लेकर जो बातें हैं। और आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है तो आजकल खेतों में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो गांव में भी हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, विविध भारती सुनते हैं। एक और श्रोता ने बचपन के जो चटपटी चीज़ें थी उसके बारे में लिखा है कि बेर जो गुड़ और नमक मिर्च के साथ पके रहते थे, वो कागज़ की पुड़िया के समान बांध के देना, वो न्यूज़पेपर के लिफाफे जो घर में आटे की लोई बनाकर बनाए जाते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गांव में कहीं शादी होती थी तो लाउड स्पीकर बजता था, उस समय राजा और रंग का मेरा नाम है चमेली ये गीत लोकप्रिय था, आवाज सुनते ही सभी साथी दौड़कर वहां पहुंचकर गाना सुना करते थे।
1: यार

ये गीत आप सुन रहे थे हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। श्रोता पलकों की छाव में इस फिल्म का गीत था, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, वो भी क्या दिन थे जब पंखट पर हम सब इकट्ठे भोर की किरणों को ताका करते थे। बड़े खुशनुमा दिन थे, यादें अजीब चीज होती हैं, वे कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, बस अचानक से किसी गीत में किसी रास्ते से दस्तक देती हैं और हम घंटों बैठे रहते हैं उस याद में उसकी तस्वीर के साथ। मन ने इन सब यादों को बातों को बड़े सीधे तरीके से आत्मसात कर लिया है। हर चीज को स्वीकार करना यही सुख की निशानी है, इसी में बड़ी समझदारी है। फिल्म आपको पहचाननी है श्रोताओं और कलाकार।

पहली फिल्म का ये गीत आपने सुना, सत्यजीत और नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया। हमारे श्रोताओं ने इस गीत को भी पहचाना बिल्कुल ठीक, और अगले गीत को आपको पहचानना है, कलाकार पहचानना है। एक श्रोता ने लिखा है, मैं कल ही अधिक मास के चलते मेरे शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर चांदूद, जो नर्मदा नदी पर बसा है, वहां दर्शन करने गई थी। वहां नाव में बैठकर सामने वाले दूसरे किनारे पर स्नान किया, मतलब कल ही नाव में बैठकर आई।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वो दादी के हाथ की मक्के और ज्वार के चूल्हे पर बनी रोटी काश एक बार ही सही खाने को मिल जाए, बस फिर और कुछ नहीं मांगेंगे अपने इस मालिक

एक शोधा ने लिखा है, मेरा गांव बहुत सुंदर है जो पहाड़ों की तलहटी में बसा है। एक नदी बहती है जिसके तट पर बहुत से मंदिर हैं। शाम के समय जब घाट पर बैठते हैं तो मंदिर से आरती की स्वर लहरियां गूंजती हैं, बस मन खुश हो जाता है।

अरुण गोविल और जरीना बहा पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म से। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोताओ तो अब चलते हैं गांव से शहर की ओर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी गांव जरूर जाना चाहिए और वहां की सारी चीज़ों को देखना चाहिए, निहारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए।

0: work, the Supreme Court today said that homemakers deserve to be recognized as nation builders for their role in shaping families and future generations. The apex court ruled that unpaid domestic work must be monetized at a minimum of 30,000 rupees per month while calculating compensation for their deaths in road mishaps. The court said that women who manage households should not be referred to merely as homemakers, as the term undervalues their contribution to society. A bench of justices, Sanjay Karol and N. Koteshwar Singh, emphasized that unpaid domestic work, including caregiving and household management, carries significant economic value. The court noted that such work is essential for the functioning of families and the development of human capital. All three Indian seafarers who were initially reported missing after the tragic incident aboard the commercial vessel Palau-flagged MT Sotobelo have now been confirmed dead. The tanker was hit off the coast of Oman in a suspected U.S. missile strike. In a social media post, Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal, said bodies of three seafarers have been located and identified. The United States has carried out a second consecutive night of what it described as self-defense strikes against Iranian military infrastructure near the Strait of Hormuz, further escalating tensions in West Asia. Explosions were reported in and around Bandar Abbas and on Keshma Island as the confrontation entered a more dangerous phase. In response, Iran launched missile and drone attacks on several U.S. military facilities across the region, calling them retaliation for the latest American action. Iranian military authorities also declared the Strait of Hormuz closed to commercial shipping and warned that vessels attempting to pass through could be targeted. However, the United States rejected the claim. More from our West Asia correspondent.
1: The military confrontation is now spreading beyond Iran's borders. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claimed it launched missiles and drone attacks against United States military facilities in Bahrain, Kuwait and Jordan in retaliation for the latest American strikes. Iranian state media reported that 12 ballistic missiles were fired at Jordan's Muwaffaq Salty Air Base, with Tehran claiming damage to military facilities and aircraft shelters. However, neither Jordan nor the United States has confirmed those claims. Reports indicate that air defense systems were activated and interceptions were carried out. Kuwait temporarily suspended air traffic as a precaution after reporting hostile air targets in its airspace, while Bahrain issued security alerts and reported interceptions of incoming drones.
0: Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City.
2: This edition of the World Cup will be the biggest in history, with an expansion from 32 to 48 teams. A record 104 matches will be played, with 72 in the group stage and 32 in the knockout rounds across host nations, United States, Canada and Mexico. The three host nations qualified automatically, while 45 teams earned their places through a demanding two-year qualification journey. The competition features 12 groups of four teams each. The top two teams from every group, along with the eight best third-place teams, will advance to the round of 32. This expands the knockout stage to 32 teams for the first time in tournament history. The grand final is scheduled for 19th of July, promising a thrilling conclusion to football's greatest celebration. This World Cup is also expected to be one of the most challenging in history, with teams facing demanding conditions across three countries, including long travel distances, varying climates, different altitudes, and shifting time zones. Over the decades, only eight nations have lifted the FIFA World Cup trophy: Brazil, Italy, Germany, Spain, Argentina, England, France and Uruguay, the inaugural champions. Among the most unfortunate sides in World Cup history remain the Netherlands, who have reached three finals but are yet to win the title despite producing generations of world-class talent. From history to high stakes, from legends to new challengers, the stage is set for football's ultimate battle. Shagun Chopra from Sports Desk.
0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of centre and states key to realising Vikasit Bharat vision, chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Center waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. First Made in India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया
4: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है अपना खुद का वेब्स OTT है उस प्लेटफॉर्म को यूज करें लोकल आर्ट लोकल संस्कृति लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें आपको पूरा फ्रीडम है जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी पॉलिसी बनाने वाले आप इंप्लीमेंट करने वाले आप
3: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है
4: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
3: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
5: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
3: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
5: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट ना आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
3: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
1: मिलिट्री कॉन्फ्रेंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में US मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट है। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज

0: में हैंडल कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधा कृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
3: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़क।

0: कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी, एम जी हर्षमत के बोल थे। किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित को आप सुन रहे थे फिल्म उलझन में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म पूर्णिमा में आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर को, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने। विविध भारती से श्रोताओं इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मामा रफी की आवाज में फिल्म पालकी का ये गीत आपने सुना। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: शारदा की आवाज में अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की तर्ज है, और श्रोताओ यही है सदाबहार नगमे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार, और आप सुनिए ये नगमा।

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सहेलियों को और आरती आपको नमस्कार।
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज हम आ चुके हैं और बहुत सारे विषय लेकर आए हैं, बहुत सारी मस्ती, कुछ अच्छे अच्छे गीत
2: जी,
1: सब लेकर आए हैं।
2: तो
1: आज देखिए खेल खेल में सारी बातें हो जाएंगी क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस।
2: बिल्कुल, और ये खेल दिवस किन का है?
1: छोटे बच्चों का।
2: बच्चों का खेल दिवस है तो आज बच्चों के लिए भी है ना।
1: तो बचपन के जो खेल होते हैं, आपने कौन कौन से खेल खेले या जो खेल माता पिता ने खेले वही खेलना आपको पसंद है? इंडोर ज्यादा गेम खेलते हैं या आउटडोर ज्यादा करते हैं, मतलब घर में रहकर घर से बाहर?
2: जी बिल्कुल।
1: या माता पिता है किस तरह से बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इस बारे में अपनी बातें वो जरूर बताएं।
2: आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बाहर खेलने में जरा कम ध्यान देते हैं, मोबाइल वगैरह में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या आप भी मतलब बच्चों को कहते हैं कि आप बाहर जाके खेलिए या फिर आप भी उनके साथ मोबाइल में लग जाते हैं?
1: इस बारे में बहुत सारी बातें और होंगी और आज होगी कहानी पद्मश्री की। इसमें किस सखी की बात होगी बताइए?
2: भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्या थारा, जो कि पारंपरिक छाया कठपुतली कलाकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल, और कठपुतली का खेल देखना भी बच्चों को बड़ा पसंद होता है,
2: बड़ों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
1: और मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे खुश रहना या खुश रहने का दिखावा करना, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम खुश हैं या नहीं, लेकिन सामने आते ही जब कोई फोटो खींचना होता है तो हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, या फेसबुक पर, मीडिया पर हम कोई भी पोस्ट जब हम अपलोड करते हैं तो वहां जब डालते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम कितना अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या कितने खुश हैं। तो खुश रहने से ज्यादा खुशी का दिखावा करना, ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं।
2: तो आपके इस पे क्या विचार है कि मतलब खुश रहना जरूरी है, चाहे वो कम में ही क्यों ना हो
1: जी,
2: या फिर दिखावा ज्यादा जरूरी लगता है आपको कि लोगों के इसमें ध्यान में आपकी कैसी इमेज बन रही है
1: जी?
2: तो इस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही हम बताएंगे कुछ टिप्स आपको कान की किस तरह से सुरक्षा करके रखें आप, ध्यान रखें आप,
1: क्योंकि भाई आपको अगर रेडियो सुनते रहना है तो आपके कानों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, तभी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मनोरंजक जानकारी या फिर अच्छे अच्छे गीत आप सुन पाएंगे।
2: जी हाँ, जैसे कि अभी हम सुनने जा रहे हैं प्यारा सा गीत।

0: आरती गीत तो तुमने बहुत अच्छा सुनवाया, और अब हम पद्मश्री जिन्हें मिला है और कठपुतली कलाकार हैं वो, उनके बारे में बात करेंगे।
1: बिल्कुल, तो वर्ष 1929 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मोरनाला गांव में जन्मी भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्यथारा कर्नाटक की पारंपरिक छाया कठपुतली यानी कि तोगलू गोम्बेता की दुनिया में एक दिग्गज हस्ती रही हैं। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो इस प्राचीन कला का संरक्षक रहा है।
0: यानी कि हम जिसे कठपुतली के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में वहाँ की भाषा में उसे भी कुछ अलग नाम दिया गया है। और कन्नड़ में चमड़े की गुड़ियों का खेल, इसका अर्थ होता है तोगलू गोम्बेता, जो आपने भी बताया, जो कर्नाटक की एक पारंपरिक छाया कठपुतली कला भी है। और इस प्रदर्शन शैली में चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग पौराणिक कथाओं से लेकर और अभी लोक कथाओं तक सुनाने के लिए किया जाता है कि कहानी जब हम सुना रहे हैं तो उनको पात्र बनाया जाता है, उस माध्यम से उन कहानी को अच्छे से समझाया जा सके।
1: बिल्कुल, जैसे कि कुछ कला का जैसे मंचन किया जाता है ना,
0: हाँ,
1: उस तरीके से उस कठपुतली के जरिए मंचन किया जाता है। तो एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपने सफर की शुरुआत करते हुए उन्होंने चमड़े की कठपुतली कला में पूरा ध्यान लगाया और रामायण महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं को सुनाने के लिए कठपुतलियों को बनाने और उन्हें चलाने की कला में महारत हासिल की।
0: जैसे राजस्थान में भी कठपुतलियां बहुत बनती हैं, तो वहाँ लकड़ी की कठपुतलियां बनाई जाती हैं, और जब हम आज जिनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने चमड़े की कठपुतलियों के साथ में वो प्रयोग किए।
1: बिल्कुल, और दशकों तक उन्होंने अपनी कला को कस्बों और गांवों तक पहुंचाया, जहां उन्होंने कहानी, संगीत और जटिल शिल्प कौशल को मिलाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लगभग 8 दशकों से भीमव्वा का नाम तोगलू गोम्बेता के पर्याय के रूप में जाना जाता है,
0: और उनके जो प्रदर्शन होते हैं वो पौराणिक कथाओं, संगीत और

0: भावपूर्ण कठपुतली आंदोलनों के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं आरती, और बहुत दर्शकों जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ जो वहाँ के लोक परंपराएं हैं उसके साथ में एक जुड़ाव भी महसूस करवाते हैं।
1: बिल्कुल, और सीमित संसाधनों और घटती लोकप्रियता के बावजूद भीमव्वा ने गांव और कस्बों में व्यापक यात्राएं की और पारंपरिक कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी।
0: पारंपरिक कठपुतली कला जो विलुप्त हो रही थी और खतरे में जा रही थी, क्योंकि ऐसी कला है ना जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, तो जब उन्होंने इस खतरे को भांपा तो युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया कि भाई जो चीज़ उन्होंने खुद सीखी है वो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सकें, ताकि जो तोगलू गुम्बे याता की जो कला है इसके अस्तित्व के लिए जो भी ज़रूरी ज्ञान है, कौशल है, वो उन तक भी उसे पहुंचा सकें।
1: बिल्कुल, और उनकी कार्यशालाओं और मार्गदर्शन ने कठपुतली कलाकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की है जिससे ये कला आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। उनके मार्गदर्शन में उनका परिवार प्रमुख महाकाव्यों और लोक कथाओं का मंचन करता चला आ रहा है,
0: और ये जो मंचन वो करते आ रहे हैं इससे कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखिए ना आज भी संरक्षित है। और उनके प्रदर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं देते हैं लोगों को, बल्कि उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है या जो भी वहाँ के उत्सव हैं, त्यौहार हैं, जो भी परंपरा है उनसे जुड़े हुए होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: भीमव्वा की जो जीवन यात्रा है वो केवल एक कठपुतली कलाकार की कहानी हमें नहीं बताती, बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से किया जाता है ये पूरी कहानी बयान करती है।
1: बिल्कुल, उनका जीवन भर का मिशन कर्नाटक के पर्दे पर कला की जीवंतता को बनाए रखना रहा, ताकि तोगलू गुम्बेता की प्राचीन आवाजें आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करें और उनको शिक्षित करती रहें। और पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला तोगलू गुम्बेता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भीमव्वा डोडा बलप्पा शिले कैथारा को भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया।
0: वो आगे इसी तरह नई पीढ़ियों को ये काम सिखाती रहें और इसके क्या क्या फायदे हैं समझाती रहें, लोगों को इससे जोड़ती रहें, यही शुभकामनाएं हम देते हैं।
1: जी,
0: और एक गीत सुन लें अभी।
1: जी बिल्कुल।

0: देखिए ना, इस गीत में भी कठपुतली का जिक्र था, और ऐसे जो खेल होते हैं ना, ये बच्चों को बड़े लुभाते हैं, और हम सब ने भी बचपन में जरूर कठपुतली का खेल देखा होगा, और खास तौर पे स्कूल में जब कठपुतली वाला आता था तो एक बच्चों में बड़ा कौतूहल सा होता था कि किस तरह के खेल दिखाए जाएंगे, और उसमें कुछ कठपुतलियां होती है ना जिनकी कमर बड़ी लचकती है, और उनका जो डांस है वो देखने में बड़ा मजा आता था,
1: और ये अजीब सी आवाजें भी निकालते हैं। हाँ, तो हमारे एक जो श्रोता है वो लिखती हैं कि कठपुतली का खेल डांस जो डांस होता है प्रायः विलुप्त सा हो रहा है, गांव और शहर में मोहल्लों में ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं, सोसाइटीज़ और बड़े बड़े बंगला जो एरिया है उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। हम लोग के स्कूल में कठपुतली का खेल दिखाया जाता था, जैसा आपने बोला
0: वो बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि कहीं भी बच्चों के स्कूल में या आसपास के क्षेत्र में अगर कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है तो बच्चों को ज़रूर वहाँ लेकर जाएँ, ताकि कल बच्चे भूल ना जाए कि कठपुतली नाम की कोई चीज़ होती है, कठपुतली का खेल कैसा होता है। और इसीलिए जागरूकता के लिए भी इस तरह के दिन भी मनाए जाते हैं, और जब ऐसे किसी कलाकार को पुरस्कार मिलता है तो उन्हें भी इस चीज़ के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: तो बात हम कर रहे थे खेलों के बारे में, आज जो खेल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो 11 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है हमें।
1: बहुत। और खेलना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी भी है, इसलिए खेल की रक्षा करने की खेल को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा बचपन जो है बच्चों का वो बचा रहता है।
0: बिल्कुल। और खेल की रक्षा करने का मतलब होता है बचपन की सुरक्षा करना, ताकि हर जगह हर बच्चा खेलने का जो अधिकार है उसे पूरा कर सके, और परिवार में जिस सदस्य की खेल की तरफ रुचि ज़्यादा होती है, मतलब सबकी तो नहीं होती ना, तो जिसकी रुचि ज़्यादा है वो खेल के लिए प्रेरणा या खेल का समर्थक बन सकता है उन बच्चों के लिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े अंतर्मुखी होते हैं, ना तो वो लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं ना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेरित करना बहुत जरूरी है।
1: वो जिस तरीके के खेल में उनको रुचि हो उस तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए। और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की बधाई दे रहे हैं, और कहते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के आदि हो गए हैं, और खेलकूद से रक्त का संचार होता है, शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है, स्वस्थ रहता है। पुराने खेलकूद, छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांधकर झूलना, सब लुप्त हो गए हैं। आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है और मोबाइल चलाना। खैर, हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है,
0: लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक क्षमता है, टीम में खेलने का जो एक स्पिरिट है, ये सब चीज़ें बच्चों में आ सकें। और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं आरती, इसका उद्देश्य भी यही है कि खेल की क्या शक्ति है इसे हम सब जानें, पहचानें और समझें। ये हर व्यक्ति को समझना है कि हर बच्चे के विकास के लिए और कल्याण के लिए खेलना कितना ज़रूरी है, और खेल दिवस जैसे आयोजन ये बातें समझने का हमें मौका देते हैं। और यही वो समय होता है आरती, जब हम सब मिलकर ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर बच्चा खेलने के अधिकार का पूरा लाभ उठा सकता है।
1: बिल्कुल। और बहुत ज़रूरी भी है खेल के को महत्व देना। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हम जो बच्चे आजकल दिख रहे हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे भी जिम जा रहे हैं, तो उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर वो खेलेंगे तो जो प्राकृतिक रूप से उनका विकास होगा।
0: और खेलने के लिए आपके पास बहुत सारी सामग्री हो ये भी ज़रूरी नहीं है, जैसे बचपन में जो हमने खेल खेले हैं या हमारे बहुत सारे सुनने वालों ने भी खेले होंगे,
1: दौड़ भाग है, साइकिल चलाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम खेल के अपने को स्वस्थ रख सकते हैं।
0: लुका छिपी भी खेलते थे और बस पत्थरों से कुछ टुकड़े जमा के सतोलिया बना के खेला, और कपड़े की, पुराने कपड़े की गेंद बना ली, उससे मार कर खेल रहे हैं।
1: बिल्कुल। बहुत से ऐसे खेल हैं और जिनको खेल के मतलब मन तो खुश रहता ही है ना, हम स्वस्थ भी रहते हैं। और जबकि मोबाइल हम लेके एक जगह बैठे हैं तो बस हम उसी जगह बैठे हुए पूरा दिन निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई दिन दुनिया की खबर नहीं रहती है। तो इससे क्या होता है ना, हम एक ही जगह बैठे रहते हैं तो रक्त संचार भी हमारा सही से हो नहीं पाता पूरे शरीर के अंदर, तो उसकी वजह से ना बच्चों का विकास बहुत ज़्यादा अवरुद्ध भी होता है और

0: पूरे समय वो स्क्रीन पे लगे रहते हैं, उसे आंखों में हर तरह से उनको नुकसान नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है बाहर निकलना, बाहर निकलकर खेलना।
1: तो इस दिन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्थापित किया, ताकि इस अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनिसेफ और यूनेस्को खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इस दिन का आयोजन करते हैं, ताकि ये जो खेल की जो प्रक्रिया है बच्चों में चलती रहे। और हम एक गीत सुन लें फिर।

0: बच्चों के साथ मिलकर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जब खेल का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो बच्चों को खेलने में बड़ी रुचि होती है। तो देखिए हमारे एक श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, कि ये जो दिन है ये बताता है कि हमारे जीवन में खेल कितना ज़रूरी है। और हमारी ये श्रोता जो है वो कहना चाहती हैं कि अगर कोई बच्चा खेल की तरफ रुचि रहता है लेता है तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि खेल में कोई करियर है या नहीं है, बस खेलने के लिए उसको प्रेरित करना है। और आगे लिख रही हैं कि खेल हर चीज़ में हमें जीने का तरीका सिखाता है, इसीलिए सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। और खेल हार जीत में कैसे उभरना है इसका तरीका भी हमें सिखाता है, और इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि मेरे विचार से खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खेलों से शारीरिक मानसिक विकास होता है और हम सोशल मीडिया और मोबाइल से कुछ समय के लिए दूर रह पाते हैं। और मेरा मानना है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए यदि हमें अपने व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त निकालना पड़े तो ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ

0: मिलते खेलते हम भी अपना बचपन फिर से जी लेते हैं। बहुत सही कहा इन्होंने,
1: बिल्कुल सही बात है। और इस साल जब ये खेल दिवस हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इसका विषय है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। और ये विषय हम सभी को और मतलब जो भी स्कूल हैं, परिवार हैं, व्यवसाय हैं, उनको ये याद दिलाता है कि खुशहाल और स्वस्थ बचपन खेल पर ही आधारित होते हैं। और खेल खेल में बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दिखाई समझाई भी जा सकती हैं ना।
0: बिल्कुल, खेलते खेलते आप उनको पढ़ा भी सकते हैं
1: जी।
0: बहुत सी ऐसी तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि आप उनको खेलने, अगर थोड़े समय भी वो मोबाइल से दूर रहेंगे ना तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे वो सीखेंगे।
1: बिल्कुल, रचनात्मकता, लचीलापन, सामाजिक कौशल, ये सारी चीज़ें बच्चों में विकसित करते हैं खेल। और जीवन भर सीखने की जो खुशहाल जीवन की नींव है इसे भी वो रखते हैं। और बहुत सारी जगहों पर बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनौपचारिक खेल के जो अवसर हैं वो कम हो रहे हैं क्योंकि सार्वजनिक स्थान है वो कम है, अगर कहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है। हर बार बच्चे के साथ कोई जाएगी जरूरी नहीं हो पाता, तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा घर पर ही खेले। तो ये सुरक्षा भी अगर बच्चों के लिए दी जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड हर बगीचे में वहां होना चाहिए जो बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे। माता पिता में से कोई एक सदस्य तो जाता ही है लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हो, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, और बच्चे सीखते हैं कि किस तरह हमें साथ मिलकर काम करना है, साथ मिलकर खेलना है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीजें खेल के जरिए ही आती हैं। जब वो साथ मिलकर खेलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनसे सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, है ना, ध्यान रखना सीखते हैं, बहुत।
1: अभी जैसे बारिश का जब मौसम आएगा, पेड़ों पर झूले पड़ेंगे तो सब बच्चे एक साथ मिलकर झूलते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं अपने आप लंबी पेंग नहीं ले पाते हैं झूले की, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा सिखाते हैं झूला कैसे जाता है, उनके साथ बैठ कर, उनके साथ खड़े होकर, तो झूलना भी एक खेल हो गया। तो इस तरह से आप साथ लेकर कैसे चलेंगे ये भावना विकसित होती है।
0: बिल्कुल, और एक श्रोता जी लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर यही कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है। खेल से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। जब हम खेलते हैं तो सोशल मीडिया से हमारी दूरी बनी रहती है और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है।
1: और जब बात खेलने की आती है तो हमें किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का इंतजार ही क्यों करना है।
0: बिल्कुल,
1: हम जो भी हमारे मस्ती भरे पल हैं उन अवसरों की तलाश करें और हल्की फुल्की जो गतिविधियां होती हैं हमारी, हम उन्हें भी खेल में बदल सकते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: और हमें रोज ही कम से कम इतना समय निकालना चाहिए और बच्चों के लिए भी इतना समय निकालना चाहिए कि उनके साथ हम खेल सकें, ना कि हम मोबाइल पे या उनके साथ में कुछ इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, बैठे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं या हम टीवी में लगे हुए हैं या मूवी देख रहे हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन एक इतना समय जरूर होना चाहिए हर दिन कि बच्चों के साथ बाहर खेला जाए। जो बाहर आप खेलते हैं ना उससे वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिव होता है, तो वो उससे उनके उनका विकास होता है, उनका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है।
1: बिल्कुल, जब बच्चों को धूप में जाने से रोकना है, बारिश में भीगने से रोकना है, ऐसा कोई मौसम की अगर समस्या है जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उस वक्त आप उन्हें चाहे कार्टून देखने में व्यस्त करिए या घर में कोई इंडोर गेम खिलवा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बच्चों के विकास की हम बात कर रहे हैं वो बाहर खेलने से ही होता है।
0: बिल्कुल, और थोड़ा बहुत भीग जाना भी जरूरी होता है कभी कभी।
1: भाई बारिश में नाव चलाना एक बड़ा अच्छा खेल होता है।
0: बिल्कुल,
1: तो जल्दी गाना सुने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और देखिए, हम बात कर रहे थे बच्चों के खेल की। बच्चे खेलकर कितने खुश हो जाते हैं और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते।
1: नहीं,
0: अगर
1: नहीं।
0: वो खुश हैं तो खुशी दिखाई देगी, अगर वो किसी से नाराज हैं, गुस्सा है, तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती हैं आरती, कि खुश हैं या नहीं, कई बार सिर्फ दूसरे को हमारी तकलीफ का अंदाजा ना हो इसलिए हम खुश रहने का दिखावा भी करते हैं।
1: बिल्कुल, अक्सर ही होता है ऐसा कि दिखावा ज्यादा होता है, खुशी उतनी नहीं होती है।
0: खास तौर पर जब सोशल मीडिया की बात आती है तब ये दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज का दौर ऐसा है जहाँ बहुत से लोग वास्तव में खुश रहने से ज्यादा खुश दिखाने पर ध्यान देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराती तस्वीरें होती हैं, शानदार यात्राएं, महंगे सामान, चमकदार जीवन शैली को देखकर कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो सामने वाला है ना, ये सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति यही है और हमारे जीवन में कोई खुशी पता नहीं है भी कि नहीं। लेकिन अक्सर इन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है
1: उसको खुश देखने के बारे में हम समझ नहीं साथ में आ जाते हैं कि वो इतना खुश है हमसे। कहते हैं ना कि हमारे मतलब तुम्हारे उसके कपड़े हमारे कपड़े सफेद कैसे हो सकते हैं, तो वही चीज है, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है।
0: हाँ, तो उन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और जब जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है तब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं से थोड़ा दूर होने लग जाता है।
1: बिल्कुल, और हर कोई ये सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में सोचेंगे क्या, बजाय इसके कि उसे वास्तव में क्या अच्छा लगता है, कि उसे सचमुच उसे पसंद क्या है, वो क्या करता है, वो ये करने लगता है कि वो दूसरे क्या पसंद करेंगे, मुझे उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। तो परिणाम क्या होता है उसका, तुलना और तनाव। तुलना से क्या होता है, तनाव और असंतोष, क्योंकि उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है कि मैं सही लग रहा हूँ या मैं सही हूँ। वो सिर्फ दूसरों की नजर से खुद को देखने लगता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए अगर सच्ची खुशी आप चाहते हैं अपने जीवन में तो क्या करना है, जो लाइक्स और फॉलोअर्स हैं ये दिखावे से नहीं आती। आजकल इसी के पीछे बस सब भाग रहे हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट डाली है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जिसमें हम नजर आ रहे होते हैं तो वहां हमें बहुत सारे एक लाइक मिले।
1: बस आप क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं कितने लाइक्स हो गए,
0: वो लाइक कितने बढ़ गए,
1: वो उसी में लगे रहते हैं।
0: और बस इसी से हम है ना, तो ये अच्छे रिश्ते और आत्मसंतोष, स्वस्थ जीवन शैली और अपने काम में आनंद खोजने से मिलती है, इन चीज़ों से नहीं मिलती। ये चीज़ हमें समझनी है आरती। और व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है, अपनी खुशी का प्रमाण दुनिया को दिखाने की हमें ज़रूरत ही नहीं। क्यों हम सबूत दिखाएं कि हम खुश हैं, इस बात की हमें दिखावा करना ही क्यों है, बल्कि हमें ये समझना है कि कोई जीवन में प्रदर्शन नहीं चाहिए, बस जो वो अंदर हमारी खुशी है वो सबसे जरूरी है।
1: बिल्कुल, और सच्ची खुशी किसी भी दिखावे की तो मोहताज होती नहीं है कि हमें दिखाना पड़े कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कि कब हम हंस रहे हैं, कब हम रो रहे हैं, एक एक चीज़ को उस पर डालने की जरूरत भी नहीं है। तो वो चीज़ें होती हैं जो खुशी होती है ना, वो होती है छोटे छोटे पलों में। हम बहुत बड़े पलों का इंतजार करते रहते हैं ना कि चलो ये त्यौहार आएगा तो हम बहुत खुशी से ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो हम अभी क्यों नहीं खुश हो जाते।
0: बिल्कुल,
1: तो हर जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना, वो खो जाती है उसे इंतजार में कि बहुत बड़ा पल हमारे पास में आए।
0: और जो लोग खुशियों के लिए बहाने ढूंढते हैं ना, इस तरह से उनकी खुशियां जिंदगी में पूरी कभी नहीं होती। ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे मिलेंगे तब खुश, यहाँ जाएंगे तब खुश होंगे, इसके ये आएगा तब खुश होंगे, ये तो सिर्फ एक बहाने हैं। लेकिन वो खुशी छोटे छोटे पलों में, जैसा आप बता रही हैं,
1: जीवन है कोई ऐसा मंच नहीं है कि हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए। भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नज़र से नहीं जीना, हमें अपनी नज़र से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं। जब हम असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और संतुष्टि होती है, लेकिन जब खुश होने का हम दिखावा करते हैं तो चेहरा तो मुस्कुराता है पर कंधे थके हुए होते हैं। दिन भर लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है पर रात को हम तकिया भी खोते हैं। कभी कभी गिरकर संभलने में थोड़ा दिखावा ही सहारा बनता है, पर दिखावा ही अगर जिंदगी बन जाए तो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है, जो सच में हंसता था। लेकिन दिखावा वहीं तक सही है जहां तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े। ये इतना प्यारा संदेश है और हम श्रोता ने जिसने भी लिखकर भेजा उसे बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है। ऐसा ही कुछ हम सब के साथ में होता है, क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी ना कभी दिखावा करना ही पड़ता है, क्या करें। लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज़्यादा ही दिखावा करते हैं खुश रहने का, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। खुश रहने का एक उपाय है, वो बताते हैं वो, कि सबकी करो, और मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की, क्योंकि मन से किए गए काम खुश करते हैं।
0: तो चलिए अभी हमें खुश करेगा और हमारे सभी सुनने वालों को खुश करेगा ये प्यारा सा गाना।

0: बहुत मीठा बहुत सुरीला गीत हमने सुना और इसके बाद हम लौटते हैं अपने विषय पर। हम बात कर रहे थे खुश रहना और खुशी का दिखावा करना। जी
1: बिल्कुल। और वैसे भी चंचल, अपनी खुशियों को महसूस करना, उन्हें जीना और उनके लिए आभारी होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम उन्हें केवल प्रदर्शित करते रहें, क्योंकि खुश रहने और खुश दिखने में बहुत अंतर होता है। खुश दिखने के लिए मुखौटा लगा सकते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें मन का संतुलन बहुत जरूरी होता है और हमारे अंदर संतोष होना चाहिए। मैं जैसे कि हाँ, हमें जो भी चीज़ है हम खुश हैं इसमें, वो चीज़ होनी चाहिए।
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सामने वाला व्यक्ति है, वो बात बात पर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को और खुशी को आप ज़्यादा उजागर करके लेकर आइए, अपने सकारात्मक भाव को लेकर आइए, तो सामने वाले के जो भी

0: हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना या खुशी का दिखावा करना, दोनों पहलू शामिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर अपनी परफेक्ट तस्वीरों को और स्टेटस के जरिए अपनी खुशियों का दिखावा करने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, जबकि असल जिंदगी उनकी कुछ और ही होती है। जो अलग अलग सोशल मीडिया के साइट्स हैं वहाँ पर अपने स्टेटस, अपना घर, अपने कपड़े, आउटिंग की फ़ोटो डालकर बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं और कितने कामयाब हैं, और इस बेहतरीन दिखने की वहाँ पर होड़ सी मची हुई है। खुशी मांगे जो हो और मांगे सामानों से महंगे पलों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है, शांति में होती है, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में छिपी होती है। बहुत सही बात लिखी है,
1: बहुत सही बात। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना और खुश रहने का दिखावा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। असल में खुशी आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है, जबकि जो दिखावा होता है वो सिर्फ एक मुखौटे की तरह होता है, जिसमें सामने वाले को प्रभावित करते हुए अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाना होता है और कुछ नहीं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। कुछ लाइन्स उन्होंने भेजी है गाने की,
0: और इस गाने के माध्यम से इस बात को बहुत सटीक तरीके से समझा जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: एक आगे के संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि आज के समय में लोग अपनी खुशी से ज्यादा उसकी नुमाइश करने में व्यस्त दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शन है उसके बारे में इन्होंने भी लिखा है, और आगे लिखते हैं कि दिखावा कुछ समय के लिए ही प्रभावित कर सकता है, लेकिन मन का संतोष, मन की शांति कभी नहीं दे सकता। रिश्तों में अपनापन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर है तो चेहरे पर मुस्कान खुली रहती है, और यही सच्ची खुशी है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश दिखना नहीं है बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वास्तविक खुशी मन को संतोष और जीवन को अर्थ देती है। जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीना सीख जाता है, तब उसे खुशी का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, उसका जीवन ही खुशी का प्रमाण बन जाता है। बहुत सही बात कही उन्होंने।
0: एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा संदेश है कि जीवन में दिखावे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि खुश दिखना अब खुश रहने से ज्यादा आवश्यक हो गया है। जहां वास्तविक खुशी मन की शांति और संतुष्टि देती है, वहीं दिखावा ऊर्जा को खत्म करता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है।
1: बिल्कुल
0: सही बात है।
1: बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि खुश रहना और खुश दिखना ये दो अलग यात्राएं हैं। खुश रहना भीतर का अनुभव है, ये सस्ता है क्योंकि इसका लेन देन बाहर की दुनिया से नहीं भीतर से होता है, लेकिन खुश दिखना दिखावे की दुनिया का खेल है। ये सब महंगा है, जेब से, दिल से, शांति से भी। असल में कठिनाई खुश रहने की नहीं, खुश दिखने की मजबूरी छोड़ने में है। सुख हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहरी चमक सिर्फ एक नकली रोशनी है। बहुत बहुत गहरी बात कही है इन्होंने।
0: और भी संदेश है।
1: तो एक और जमाइश होता है जो कहते हैं कि भाई दुनिया तो दिखावटी तो है ही, अभी तो उसके पोषक भी है, फिर खुश रहना चाहते तो सभी हैं क्योंकि वो आनंद के सच्चित स्वरूपांश हैं, किंतु खुद में खुश रहना एक कला है, और खुशी का दिखावा करते रहने वालों में अक्सर इसका अभाव ही देखा जाता है, क्योंकि वस्तुतः वो खुशी प्राप्त करने की कला को अपने दिखावेपन के माध्यम से सीख रहे होते हैं।
0: ऐसी बहुत से मिलती जुलती बातें हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी हैं। कुछ संदेश जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं, और सुनते हैं ये वाला गीत।

0: आरती, हम बात कर रहे थे ना खुशी रहने की, खुश रहने के बारे में और उसका दिखावा करने के बारे में. एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है, खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को. जो सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है. दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है, लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक रोशन रखती है. इसीलिए खुश दिखने से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए. एक और छोटी सी बात ये आगे लिखते हैं, जिंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारा मन सचमुच खुश हो.
1: बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने. और इसी के साथ एक और हमारे श्रोता है, वो लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुशी रहना चाहिए. खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते. दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता. और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई की श्रोता, जिसे मैं स्वयं भी हूँ, अगर कभी किसी कारण से दुखी भी हूँ तो आप सभी की शानदार जो सदाबहार प्रस्तुति होती है और लाजवाब गीत होते हैं उनको सुनकर हमारे श्रोताओं, हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है, तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता.
0: बिल्कुल सही बात है. और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे. और जब बात सुनने की आ रही है तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है.
1: बहुत जरूरी
0: है. और इसी बारे में हम बात करने वाले हैं. कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है और ना केवल सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है. इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है.
1: बहुत जरूरी है. और कानों में इसलिए क्या करना है, हमें कभी भी कोई नुकीली चीज या माचिस की तीरी, जैसे अक्सर हम ना कुछ नहीं तो अरे कान में कुछ नहीं हो रही तो बस माचिस की तीरी लेके करने लगे तो वो बहुत खतरनाक.
0: और महिलाएं हेयर पिन घुमाती हैं.
1: हाँ, हेयर पिन, चाबी लेता कोई कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी कभी बने हुए होते हैं तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो, तो कभी इस तरीके की चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुँचा सकता है. और लंबे समय तक हमें तेज संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना बहुत समय तक, ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही हो जहाँ पे, उसमें भी रहने से, क्योंकि एक वो एक अलग फ्रिक्वेंसी पे रहता है ना जो हमारे कानों की होती है, वो एक लिमिटेड होती है, उससे ज़्यादा हम अगर शोर में रहेंगे तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुँचाएगा.
0: देखो जिस तरह से आँखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आँखों में जो नमी है वो अपने आप आँख उसे निकाल कर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है, और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं. इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है, जो मोम जैसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है. कई बार उसे ज़बरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं. तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें. जो चाबी नुकीली चीज़ें, हेयर पिन, इनका तो कभी ना करें.
1: इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करें, बल्कि अपने आप जितना आपका ये कहते हैं ना, जितनी आपकी उंगली जो आपके हो सके जा सके उस हिसाब से आप करिए, वो सब चीज़ें प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि पुराने जो होते हैं वो बड्स, उसमें वो फंगस

0: भी होती है तो वो अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है, इसलिए ये सब चीजें आप ना प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज ये है कि अपने कानों का बहुत ध्यान रखिए, और जो ईयरफोन वगैरह रहता है ना उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए, क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कि कानों में तेज आवाज सुनाई दे रही है, मतलब हर समय 24 घंटे एक आवाज सी आती रहती है, तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं। तो आप बहुत ज्यादा घंटों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुंचाएगा ही,
1: क्योंकि जब इस चीज का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान पर मोबाइल लगा के रखने से, बात करने से मोबाइल के जो गर्म होता है वो हीट हमें नुकसान करती है, तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फोन नहीं लगाना है तो बहुत देर तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज आवाज में तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही। एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज या अन्य कोई आपको आवाज भी दे रहा है तो आपका जरूरी काम छूट सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है, तो ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम करना है।
0: सबसे बड़ी चीज है आप अगर आपको सुन ही रहे हैं, उसको बहुत जरूरी है आपको कान में लगाना, तो आप 50 उसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 से ऊपर मत करिए, बहुत ज्यादा फुल साउंड में मत सुनिए उस चीज को कि आपको बाकी आवाजें ना आए। और दूसरी चीज अपने एक कान में ही लगाइए, अगर आप बाहर जा रहे हैं उसको लगाएं, एक कान में लगाइए, आप ये करिए ना एक कान में लगा लिया, थोड़ी देर बाद आपने दूसरे कान में लगाया, इससे क्या होता है ना कान आपका ऐसे पर्दे पे उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो खराब नहीं होगा। और साथ ही अगर आपकी बहुत ज्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए कृपया करके, अपने आप कोई दवाई मत करिए। कई लोग होते ना कि कुछ हम ये चलो ये डाल लें, ये वाला तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें, तो वो चीज़ आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए, आप विशेषज्ञ से के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए, उन्हें बताइए जो भी चीज़ें, तो वो उसका पूरा एग्जामिन करें, उस चीज़ से उसकी जांच करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जांच होती है वो भी जरूर करवाइए।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं, साफ तौलिए से कोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें, और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है आरती। आगे लिखते हैं कि तैरते समय पानी को अंदर जाने से रोकें, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाएं, डॉक्टरी सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज़ ना डालें, पानी को झुकाकर अगर चला गया है तो उसे बाहर निकाल दें, और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुकाकर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: एक महान देश हमारा, हम अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार में मिट्टी से तिलक लगाते हैं, अपने बदन पर तिरंगा ओढ़ने की चाह रखते हैं। इस तिरंगे को मान सम्मान मिले वो इरादा रखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक बारी कहा था कि भारत में हर एक जीव, मनुष्य हो पशु पक्षी हो, वो भारत की तरक्की के लिए योगदान दे रहा है। और आज संदेश टू सोल्जर्स में हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसने भारत के लिए योगदान से भी ज्यादा अपना समर्पण दिया है। आज हम सशस्त्र सीमा बल, जो भारत की एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह, प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री उनको ये सम्मान दिया गया। आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित ललित शाह जी आते हैं पहाड़ों की उन वादियों से जहां बचपन में ही उनका एक जज्बा उनको भारत की सेना में, भारत के सशस्त्र बल में कहीं ना कहीं किसी रूप में योगदान देने के लिए प्रेरित कर गया। आज हम उनके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल से जुड़ी तमाम बातों की यहां चर्चा करेंगे। एसएसबी जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में, और वर्तमान में भारत नेपाल सीमा जो लगभग 1751 किलोमीटर की है, और भारत भूटान सीमा जो लगभग 700 किलोमीटर की है, उस सेना, उस कार्यरत जवानों की, अफसरों की जहां बाज योगदान, उस कंट्रीब्यूशन की बात हम यहां करेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। आइए पूरे भारत के साथ स्वागत करते हैं सेकंड इन कमांड ललित शाह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, और एक प्यारी सी उस यूनिफॉर्म का, उस फोर्स का हिस्सा हैं। आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, जज्बा आता है, जोश आता है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल बहुत खास फोर्स है हिंदुस्तान की।
1: जी बिल्कुल। हमारी जो फोर्स है ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। सारी ही फोर्सेस का बॉर्डर जो है वो अपने आप में विशेष होता है, परंतु हमारी फोर्स का जो बॉर्डर है उसकी अपनी विशेषता है। ये एक पोरस बॉर्डर है और सीमा के पार जो लोग हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इस बॉर्डर को मैन करना, इस बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को एसएसबी के सारे जवान, सारे अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी अपने पूरे ईमान से, पूरी मेहनत से 24/7 365 डेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये फोर्स भारत की सेवा में हमेशा तत्पर है। जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, हम उस पर कार्य करते हैं। और लगातार जो है हमारा पूरा फोर्स इस ध्येय वाक्य को साधने पे लगा हुआ है।
0: तो शाह साहब, आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आपने हिस्सा लिया, आपने की अपॉइंटमेंट्स में से मैं कहूँगा कि फिलहाल आप एसएसबी एकेडमी में, जो श्रीनगर है उत्तराखंड, वहाँ पर आप ट्रेनिंग का जो भार है वो संभाल रहे हैं। 9 बटालियन के साथ आप थे बिहार में, सीतामणि में, बलरामपुर में, और ढेर सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे, लेकिन इस फोर्स में आना आपके लिए कब तय हुआ? कब आपने ये डिसाइड किया कि ये फोर्स कुछ खास है और मुझे इसके साथ जुड़ना है?
1: ये स्कूल के दिनों की बात है। मैंने अपनी स्कूलिंग पिथौरागढ़ से की है और पिथौरागढ़ में भी जो मेरा स्कूल रहा है केंद्रीय विद्यालय, वो छावनी क्षेत्र में रहा है। मेरे क्लासमेट्स भी अधिकतर फौजी बैकग्राउंड से, सीएपीएफ बैकग्राउंड से ही रहे हैं।
2: जी जी,
1: जब भी हम स्कूल जाते थे तो हमेशा ही फौज की वर्दी, फौज का डिसिप्लिन, फौज के कार्यकलाप हमेशा बचपन से ही देखते आए हैं। तो एक छोटे बालक से जब हम बड़े होते गए तो फौज को देखते देखते ये फोर्स यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा तो तभी आ गया था। उसके बाद जब मौका मिला तो हमने फौज फोर्स में ज्वाइन कर लिया।
2: तो मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 का जो दशक था, 80 का दशक था, तब सशस्त्र सीमा बल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे हमारे देश में, लेकिन उस समय आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है। अगर मैं कहूँ कि उस 80 के दशक में भी बहुत सारी डेवलपमेंट शायद नहीं हुई होगी पिथौरागढ़ में, तो क्या सिचुएशन वहां थी आपके गांव की, और फौज में आना कितना प्रेरणादायक था और किसने आपको प्रेरित किया?
1: उस समय पे पहले सशस्त्र सीमा बल का जो नाम था वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था।
2: जी जी,
1: तो कैपसेक के अंडर आती थी, तो एक कोवर्ट फोर्स की तरह से ही काम करती थी। बॉर्डर गार्डिंग में सशस्त्र सीमा बल सन 2001 से आई है। 2001 में पहली बार भारत नेपाल की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सीमा बल को कार्य सौंपा गया। 2004 में भारत भूटान सीमा के लिए। अगर मैं अपने समय की बात करता हूं तो तब हम सशस्त्र सीमा बल को इस तरीके से नहीं जानते थे, तब ये फोर्स का उद्भव इस तरीके से नहीं हुआ था।
2: जी, जी।
1: तब हम ITBP को देखते थे, हमें CRPF की जानकारी थी, BSF की जानकारी थी, आर्मी के बारे में हम जानते थे। पर कालांतर में जैसे ही फोर्स के बारे में फिर पता चलने लगा तो फिर हमें भी पता चला कि इस तरीके से एक फोर्स है जो भारत नेपाल और भारत भूटान की रक्षा करती है, तो उस पे आने का रुझान बन गया।
2: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन होती होंगी उस बॉर्डर पे। आपने कहा पूरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?
1: अगर आप बॉर्डर को देखेंगे तो दोनों तरफ एक से ही लोग रहते हैं, खासतौर पे भारत नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ एक ही हाइट के, एक ही कॉम्प्लेक्शन के, एक से ही लोग दोनों तरफ रहते हैं, और आवाजाही दोनों तरफ से आना जाना फ्री है, आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते। परंतु सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग गतिविधियों में भी लगे होते हैं, तस्करी है, मानव तस्करी है, बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए हमें मैंडेट मिला है। तो उस मैंडेट को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है, और उसी टास्क को जो हम हैं ह्यूमन इंट कहेंगे या दूसरी तरीके से इंट हासिल करके, उसके अलावा लगातार नाका पेट्रोलिंग गश्त कर रहे हैं, 24 घंटे उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं, और ये एक चैलेंजिंग टास्क है, और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं बॉर्डर पे।
2: और आपकी जो फोर्स है वो फेस है भारत का
1: जी,
2: इन कंट्रीज के। तो यानी अगर कोई इंटेलिजेंस की भी फीडबैक आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी।
1: बिल्कुल।
2: या कोई आप अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को या आर्मी को या जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, आपकी एक रिपोर्ट उन तक पहुंचती होगी।
1: बिल्कुल।
2: बट जैसा आपने कहा कि ठीक है दोनों देश अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग भेस बदल के भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, हो सकते हैं इन देश के ना हो किसी और देश के हों, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग कितना होता है कि ये पहचानना कि ये लग तो रहे हैं नेपाल के या भूटान के लेकिन शायद किसी और देश के हो सकते हैं?
1: ये हमने अपने एक्सपीरियंस से। दूसरा, अब जो तकनीकी गैजेट्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हम CCTVs को यूज़ कर रहे हैं, हम कैमराज जो है अच्छी क्वालिटी के, हमने बहुत जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम लगाया है, हम

0: रिकॉग्निशन सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा जवान वहां पे खड़ा है वो उस चीज में पारंगत हो चुका है, वो देख रहा है लोगों को आते जाते हुए, उनसे वो पहचान रहा है, वो लगातार नोटिस कर रहा है। उसके अलावा हमारे अपने मैकेनिज्म रहते हैं जिससे हम लोग पता करते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन मैनेजमेंट भी करते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है इस तरह की गतिविधियों के बारे में।
1: राइट देन, तो आप अभी सीटीसी में हैं, श्रीनगर। श्रीनगर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं शायद कश्मीर की वादियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वादी तो है लेकिन कश्मीर की नहीं, उत्तराखंड की वादी है श्रीनगर, और वहाँ पे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल।
1: और किस तरह की ट्रेनिंग आप?
0: बेसिकली जो हमारा सीटीसी है वो सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है, और यहाँ पे हम जो है हमारे जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं। उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशनल कोर्सेज हम वहाँ पे कराते हैं। उसके अलावा भी कुछ एलाइड कोर्सेज हैं हम वहाँ पे कराते हैं, राफ्टिंग का कोर्स कराते हैं, और भी बहुत गतिविधियों को हम वहाँ पे करते हैं
1: जी। जो सारी डिटेल आप नहीं देना चाहेंगे मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि पहाड़ी इलाका है और नेपाल और भूटान भी एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, शायद ये वजह है कि आप लोग उत्तराखंड में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल, ये सही बात है कि एक्चुअली जब ये फोर्स का जब जन्म हुआ है तो ये बेसिकली जो इसके शुरुआती रोल रहे हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था तो वहाँ पे ही डिप्लॉयमेंट रही है। तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा सके और बॉर्डर पॉपुलेशन तक आसानी से पहुँचा जा सके, इसलिए उत्तराखंड का चुनाव।
1: और आप ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है आप सीटीसी में, ये कितने समय से है?
0: मेरे को अभी एक साल हुआ है लगभग।
1: और उससे पहले आपने ढेर सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, और एक खास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, अ वेरी स्मार्ट लुकिंग यंग ऑफिसर, ही इज सेकंड इन कमांड ललित शाह ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम कहते हैं SSB। यहाँ पे एक क्योंकि ये प्रथा है हमारे यहाँ और प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम यहाँ आपके पसंद के गीत चलाते हैं, तो कौन सा गीत आप पेश करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए?
0: ऐ मेरे वतन के लोगो।
1: ओके, ये आपको बहुत प्रिय है?
0: बहुत प्रिय है।
1: और कोई खास वजह?
0: पहले से सुनते आ रहे हैं, जब भी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो ये गाना इनवेरिएबली रहता ही था।
1: जी जी,
0: तो दिल को छूता है ये।
1: एंड इट्स संग बाय वन ऑफ द ग्रेट सिंगर्स जिसको हम कहते हैं द नाइटिंगेल as far as the playback singing is concerned, the late, the legendary Lata Mangeshkar.
2: Yeah!

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह। और आज हम इस भारत की खास फोर्स के बारे में उनकी जुबानी सुन रहे हैं। इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को ये एक मैत्रीपूर्ण भाव के साथ देखते हैं, वहां तैनात रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत योगदान देते हैं भारत की तरक्की में। लेकिन यहां सेकंड इन कमांड ललित शाह जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तब आपको कैसा लगा और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कहाँ पोस्टिंग हुई?
1: मेरी अपनी बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारी अकादमी में जब पूरी की, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 9th बटालियन में हुई। बिहार में सीतामढ़ी एक जगह है, वहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई और उसके बाद मुझे जो है बॉर्डर पोस्ट के लिए भेजा गया बटालियन से। तो वहाँ पे मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले तो जब मैं वहाँ जवानों से मिला तो एक कंपनी है तो उसमें जो जवान है वो एक कुटुंब हो जाता है। फिर मैंने वहाँ अपनी ड्यूटीज़ को समझा
0: जी,
1: हमको दिए गए दायित्वों के बारे में जाना, हमारे जवान किस प्रकार से वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो जाना
0: जी,
1: और मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जाना। और उसके बाद जो हमारा मैंडेट है, जो हमको मैंडेट दिया गया है उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है उसका कार्यान्वयन करवाया मैंने। और एक अच्छा मेरा टेन्योर वहाँ पे निकला अपने जवानों के साथ
0: जी,
1: और हमने एक अच्छा समय वहाँ पे व्यतीत किया। और बॉर्डर गार्डिंग के जो गुण हैं, बहुत एक्टिव बॉर्डर रहा है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे से, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके के कार्य करते हैं उस तरीके का कार्य भी वहाँ पे रहता है। तो वो सब भी जानने का मुझे मौका मिला और किस तरीके से रोकना है अपने।
0: तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का एक बॉर्डर है जो नेपाल से टच करता है, वैसे ही उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो नेपाल से टच करता है
1: जी।
0: और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी एक ऐसा राज्य है, तो यहाँ पे आपकी जो सेना है वो तैनात है
1: जी।
0: और उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए नया था लेकिन था बड़ा इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा ऑपरेशन?
1: अगर ऑपरेशंस की बात करें तो जो मेरा नक्सल का टेन्योर रहा है, एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग के अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज, इसके लिए भी चुना गया है। तो मेरी एक पोस्टिंग रही है नक्सल ऑपरेशंस में, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और हम लोगों ने उस जिस जिले में हम लोगों को दिया गया था उस जिले को नक्सल फ्री कराने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है।
0: कौन सा एरिया है और ये क्या ऑपरेशन था, कुछ बताना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि संथाल परगना जो है झारखंड में, जो उत्तर पूर्वी झारखंड है, उसके 6 जिलों को मिला के संथाल परगना बोला जाता है, जिसमें गोड्डा पाकुड़ दुमका साहिबगंज जामतारा और देवघर जिले आते हैं। इसमें से जो 3 जिले हैं दुमका पाकुड़ और गोड्डा, ये नक्सल इन्फेस्टेड जिले हैं 1990 के समय से ही। और जब मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ 2018 में, उससे पहले पीक नक्सल टाइम वहाँ पे रहा है। और इवन एक ऐसा समय था वहाँ पे 2013 के आसपास कि वहाँ पे नक्सलियों द्वारा एसपी पाकुड़ की हत्या कर दी एक आईपीएस ऑफिसर की। अमरजीत बलिहार सर करके वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो जो हम लोगों का कार्य था इस क्षेत्र में गोड्डा पाकुड़ और दुमका, इस क्षेत्र में हमारी कंपनियां थी, तो यहाँ पे हम लोगों को नक्सल ऑपरेशंस करने थे। तो इसलिए हमको डिप्लॉय किया गया था। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हमारे सीनियर्स के द्वारा प्लानिंग की गई और उसके बाद हम लोगों के द्वारा टीम बनाई गई वहाँ पे, और उस टीम की मदद से जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस वहाँ पे किए हैं। और उस ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि आज दुमका नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट है और नक्सलवाद लगभग वहाँ से खत्म हो गया।
0: अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूंगा, ये नक्सलवाद वहां पर है तो आप लोगों की कभी भी कोई ऐसी कोशिश रही तो होगी कि हम बातों से थोड़ा सा बिफोर कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी घटना हो तो हम बातों से बातों का जो सिलसिला उसे रखकर कोई चीज सॉल्व कर सकें?
1: बिल्कुल, कोई भी ऑपरेशन की जो ये ऑपरेशंस हैं उससे पहले सारी तैयारी जो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है, और उसके अलावा जो आपका जो लोकल पॉपुलेस है उसका आपको विश्वास जीतना है, उसमें आपने एक विश्वास बनाना है अपने लिए, तभी इंफॉर्मेशन फ्लो भी होती है। हम लोगों ने बहुत कार्य किया अंदरूनी इलाकों में जाके, हम लोग वहां पे जाके सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करते थे, मेडिकल सिविक एक्शंस करते थे, हमारे डॉक्टर्स वहां पे बिल्कुल दूर दराज के गांव में जाके ओपीडीज लगाते थे। उसके अलावा हम लोगों ने वहां पे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के लिए बहुत,
0: ये सब एसएसबी कर रही है?
1: बिल्कुल एसएसबी कर रही है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहां के लोगों को ट्रेनिंग के कोर्सेज कराए, जो बच्चे होते हैं उनको हमने ड्राइविंग के कोर्स कराए, उसके अलावा मैकेनिक के कोर्स करवाए, प्लंबिंग के कोर्स करवाए, उनको जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए।
0: मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं, नक्सलवाद हो या टेररिज्म हो, आपकी जो फोर्स है वो टेररिज्म से भी काउंटर टेररिज्म में अपना रोल अदा करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक एस्टैब्लिश फोर्स हो गए या आर्मी के अगेंस्ट या हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई टक्कर ले रहा है तो वो जस्ट एनी अदर ह्यूमन बींग नहीं होगा, वो एक युवा होगा जिसको मिसगाइड किया गया होगा और आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया होगा, तो उस युवा को थोड़ा सा काउंसलिंग करने का भी श्रेय आपकी फोर्स लेती है?
1: बिल्कुल, हमने बहुत बहुत बार, हम लोगों का ये फ्रीक्वेंट, जब भी हम जाते थे अंदरूनी इलाकों की तरफ
0: जी,
1: वहाँ के युवाओं से बातचीत करने का प्रयास, उनको स्कूलों के प्रति जागरूक करने का प्रयास। नक्सलियों की एक टैक्टिस रही है कि वो लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनको कभी भी सरकार के द्वारा मिली हुई चीजों को लेने नहीं देना चाहते हैं, कभी रोड नहीं बनना देना चाहते हैं, उनकी टैक्टिस को रोकना, रोड बनने देना, विद्यालयों को अंदर तक का पहुंचाना, हॉस्पिटल्स की सुविधा उनको अंदर तक पहुंचाना, गांव वालों को विकास के नजदीक लेके जाना, ये कार्य हम लोगों ने उस क्षेत्र में बखूबी तौर से किया। और हमारे ही वहां पे तो इवन मैंने ये देखा कि जो रोड बन रहा है
0: जी,
1: उस रोड को बनाने का प्रोटेक्शन भी हम दे रहे हैं कि आप बनाइए, जो वो ठेकेदार है वो भी तब बना पाता है जब उसको लगे विश्वास हो कि भाई मुझे नक्सली हमला नहीं करेगा, ये सुरक्षा भी हमने प्रदान करी। अब मुझे लगता है कि बहुत अंदर अंदर तक का रोडे पहुंच गई, विकास जैसे ही पहुंचता है नक्सलवाद अपने आप ही भाग जाता है।
0: पर आपको क्या लगता था कि किस पॉइंट को लेकर नक्सलवाद वहां पे इतने सालों तक रहा, कुछ आपको आइडिया क्यों वो विकास नहीं चाहते?
1: मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का ना होना, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार क्या चीज है। 90 का दशक है, वहां पे लोक अदालतें लगती थी, ये लोग अपने आप फैसले देते थे, ये लोग किसी को भी मुखबिर घोषित कर देते थे, उसको मार देते थे,
0: पनिशमेंट,
1: कोई भी बिजनेस कर रहा है उससे लेवी वसूलते थे। तो एक जो इन्होंने खौफ भी बनाया लोगों के मन में, तो लोग सीधे साधे हैं, झारखंड में जिस इलाके में मैं रहा हूं संथाल परगना में, बहुत सीधे साधे लोग हैं, जानकारी का अभाव है, पढ़ाई की नहीं गई है, स्कूल तक पहुंचने नहीं देते थे, पिछड़ा हुआ रखा उन्हें और दबा दिया गया, और यही इसी से नक्सलवाद वहां पे बढ़ा शुरू में। फिर इन्होंने कोई भी चीज के उसमें बैरियर लगा दिया, आप और जवान लड़कों को अपने संग ले जाके उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे, तो डर भी एक चीज थी जिसकी वजह से ये लोग नक्सलवाद की तरफ बढ़ गए, लोग डर की वजह से।
0: तो आपका जब ऑपरेशन हुआ, आपने बताया कि एक बहुत प्रमुख ऑपरेशन था, तो वो कुछ उसमें हम अभी यहाँ इस प्रोग्राम में जान सकते हैं कि कितने मैं कहूंगा कि अपोनेंट या नक्सल आपके अगेंस्ट थे या सामने थे, या आपकी फोर्स में कितना वो था और कितनी देर ये ऑपरेशन चला और क्या था?
1: हाँ, मैं जरूर बताता हूँ, थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा।

0: कि किस तरीके से ये हम लोगों की टीम डेवलप हुई। तो कुछ व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिन लोगों की वजह से हम लोग इतना अच्छा ऑपरेशंस कर पाए। नाम लेना चाहूँगा मैं उनका, हमारे आईजी सर थे श्री संजय कुमार, हमारे डीआईजी सर श्री सुमित जोशी, हमारे कमांडेंट सर परिचित सर, मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर सतीश सर थे। बहुत अच्छा साथ ही हमें साथ मिला अपने जवानों का, और मेरे साथी नरपत, गुलशन, विनायक, ये हम लोगों की एक बड़ी अच्छी टीम डेवलप हुई। इसी के साथ एक चीज बहुत अच्छी ये रही कि उसी समय जो जिले के एसपी थे श्री वाई एस रमेश, उसके अलावा सीआरपीएफ के जो एएसपी ऑफिस थे इमानुल बास्की और आरसी मिश्रा सर, हम लोगों की टीम जो एक डेवलप हुई और हमारे आईजी सर के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने एक टीम बनाई, जिसको हमने अपने ही बटालियन के अंदर से अपने ही लोगों से एक स्मॉल एक्शन टीम करके बनाई। और उस टीम को हमने जो है उसमें हमने ऐसे लोग लिए, एक छोटी टुकड़ी बनाई, क्योंकि बहुत लोग जाके ऑपरेशंस नहीं हो सकते, तो एक छोटी टुकड़ी बनाई जिसको एक ऑफिसर लीड करता था, उसके संग 20 जवान करीब। तो वो जवानों का सिलेक्शन, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, उनके बाद उसको जो उसके टैक्टिकल वेपन्स, एक फिर उसके बाद आया हमारा इंट, जो टैक्टिकल इंट थी। तो इसमें एक नरपत सिंह जो अभी डिप्टी कमांडेंट है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो लोगों के बीच में पैड बनाई और जो इन्फॉर्मेशन एक फ्लो होने लगी, उससे हमें बहुत फायदा हुआ। और हमारी टीम ने, आप मानेंगे कि ऑपरेशन तो एक दिन है, पर उससे पहले की जो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हम लगातार जंगलों को डोमिनेट करते रहे, हमें हर जगह जाके कि हम कहाँ पे किस तरीके से पोजीशन लेंगे, रिहर्सल्स जो हम लोगों ने बहुत सारी की, उसी का ये नतीजा रहा कि हम लोगों ने वहाँ बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए। और उन ऑपरेशंस की ही वजह से जो है हमारी बटालियन जो है एक टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री मेडलिस्ट की बटालियन रही है।
1: वाह, वंडरफुल। तो ये तो बात हम ऑपरेशंस की कर रहे हैं, और उसके बाद जब एक कंप्लीशन होता है, ठीक है, गौरवान्वित इंसान फील करता ही है, लेकिन आपको लगता है कि आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली, दे वर वेरी हैप्पी। शायद वो भी दबा के रखा होगा उन्होंने कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो झारखंड जैसे एरिया में, थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन हो। तो उनका भाव आपके जो भी आप कार्यरत थे जितने टाइम के बाद, कुछ सेटिस्फैक्शन उनके भी चेहरों पर दिखी?
0: बिल्कुल। आतंक का पर्याय थे ये नक्सली, ये नक्सलियों लोग डरते थे इनसे, इनके पास हथियार थे, इनके पास AK-47 इंसास, इस तरीके के वेपन्स थे जो इन्होंने पहले से लूट लिए थे। इस तरीके के वेपन्स लेके ये जब लोगों के घरों में रात को घुसते थे, उनसे जबरदस्ती खाना बनवाते थे, उनके घर में रहते थे, तो जब ये नक्सली मारे गए या इनका सफाया हो गया, तो डेफिनेटली लोगों ने जश्न मनाया है, लोग खुश हैं, आज तरक्की की राह पे आगे बढ़ गए हैं लोग, और उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज पहुंचने लगी हैं। ये बैरियर थे उस अपॉर्चुनिटीज के, और वो बैरियर तोड़ दिया एसएसबी ने, वहां जाके इस बैरियर को तोड़ दिया।
1: आपके फोर्स के अंदर फिर क्या माहौल हुआ? मैं समझ सकता हूँ आप ऑपरेशन में थे, आपकी एक टीम थी, लेकिन आपकी फोर्स बहुत बड़ी है, तो ये खबर जब पूरी फोर्स में फैली होगी, तो उत्साह के साथ साथ मेरे ख्याल से एक मोटिवेशनल भी एक स्टेप हो गया होगा सबके लिए।
0: बिल्कुल। ये हमारी जो टीम थी, इसी तरीके से हमारे जो बिहार और झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशंस में जो टीम्स थी
1: जी,
0: वो टीम्स ने भी हमारी टीम्स के इस जो कार्य करने की शैली थी, इसके बाद जो है उनका भी कार्य शैली में बड़ा परिवर्तन हुआ, और मतलब बेहतर रिजल्ट्स आने लगे। और मोटिवेशन तो होता ही है, फोर्स में जब देख रहा है दूसरा कि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो एक कॉम्पिटिशन है, और एक पॉजिटिव कॉम्पिटिशन है, और सब सारी ही यूनिट्स ने फिर वहाँ पे झारखंड और बिहार में बहुत अच्छा काम किया है। और
1: वो मेरे ख्याल से ऐसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन के बाद आप एक रिसर्च पेपर भी तैयार करते होंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हम उनको कैसे ग्रूम करें आगे जाके।
0: बिल्कुल।
1: और शायद वही आप कर रहे हैं अपनी सीटीजी में जो ट्रेनिंग आप।
0: बिल्कुल। हम हमेशा बताते हैं उन्हें कि किस तरीके से ये ऑपरेशन रहे हैं, ये केस स्टडीज जो है ये लगातार भागों में हर जगह हर ट्रेनिंग सेंटर्स पे चलती रहती है।
1: तो भारत के किन किन प्रांतों से आपके फोर्स के अंदर आप रिक्रूटमेंट करते हैं?
0: ऑल इंडिया, हमारे उसमें सभी जगह से लोग आते हैं, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह के लोग हैं हमारे वहाँ पे। बहुत ही भरा पूरा परिवार रहता है
1: जी।
0: और हम हर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, हमेशा कोई ना कोई किसी प्रांत का फेस्टिवल होता है तो बहुत अच्छा।
1: तो मेरे ख्याल से आप ट्रेनर हैं तो आपका भी सबसे पहला सवाल होता होगा किसी नए रिक्रूट से जवाब मिलते होंगे कि आप क्यों आए हो एसएसबी में, क्या खींच कर लाया आपको एसएस, कुछ ऐसे ही मेरे अंदाज में तो नहीं, आपके अपने अंदाज में?
0: बिल्कुल, हम पूछते हैं उसके कहां से वो आया है, उसकी क्या मोटिवेशन था, किस वजह से उसने फोर्स ज्वाइन करी है
1: जी।
0: हमें जानना होता है कि वो ट्रेनिंग में कितना एक्सेल करेगा, उसको हमने किस लेवल तक लेके आना है, उसमें कितना मोटिवेशन हमें डालने की जरूरत है कि या सेल्फ मोटिवेटेड है, तो हम उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज तो करते ही हैं अपने ट्रेनिंग्स को।
1: राइट देन, मैं थोड़ा सा यहाँ रुख मोड़ रहा हूँ इस प्रोग्राम का। दोस्तों, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर, और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, सेकंड इन कमांड हैं एसएसबी के ललित शाह जी। कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने।
0: बिल्कुल,
1: स्मार्ट लुकिंग एक ऑफिसर मेरे सामने बैठे हैं, तो कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, आपकी बेटर हाफ के बारे में?
0: बिल्कुल, मेरी वाइफ है, मेरी दो बेटियां हैं
1: जी,
0: और अरेंज मैरिज करी हम लोगों ने 2012 में। और
1: पिथौरागढ़ में अरेंज ही होती है?
0: बिल्कुल,
1: हमारे दिल्ली जैसे शहरों में आके लोग कहते हैं पापा आई एम इन लव, बट यू वर ऑलरेडी इन लव विद द नेशन, आप तो कंट्री के साथ प्यार हो गया था। तो आपकी वाइफ जब आपसे मिली, आप लोग में क्या होता है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से शादी होती है, एक दूसरे से मिल सकते हैं शादी?
0: बिल्कुल, हमारे उसमें जो है पहले घर वाले बात करते हैं
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: उसके बाद एक परंपरा है पाता जाने की, जब बात हो जाती है तो पाता चले जाता है, तो जब पाता लड़की का पाता आता है, मतलब पतरा जो आपको कहिए, तो वो आता है, तो उसके बाद उसका मिलान किया जाता है, और वो मिल जाता है तो उसके बाद शादी फिक्स हो जाती है। तो इसी प्रकार से मेरी भी शादी हुई है।
1: बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ कि कितना आसान था आपको अपनी वाइफ को समझाना कि मैं सशस्त्र सीमा बल पे हूँ और भारत की एक प्रमुख फोर्स है और तुम फौजी की वाइफ बनने वाली हो।
0: शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है जानने की जरूरत है, पर मेरी वाइफ ने जितनी जल्दी इस चीज को समझा, जितना जल्दी मेरे प्रोफेशन को वो समझ गई, तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। मैं नक्सल क्षेत्र में भी रहा, अलग अलग जगह ड्यूटीज की मैंने, पर मेरे को मेरे परिवार का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा, और मेरी वाइफ हमेशा मेरे इस काम के लिए मेरे साथ खड़ी रही।
1: अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दो बच्चियां भी हैं, तो अभी जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रही हैं, पढ़ाई में भी बहुत फर्क आ गया है
0: जी,
1: मॉडर्न पढ़ाइयां हो रही हैं, गैजेट्स आ गए हैं जो शायद आपके टाइम में उतने नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं, तो उनका रुझान कैसा है, वो क्या कहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में किसी का मन कर रहा है अभी जाने का? या
0: वो मुझे वर्दी में देख के बहुत खुश होती हैं, बहुत छोटी हैं, तो अभी तक हमने उनसे इस तरीके से
1: जी,
0: वो
1: जी।
0: उनकी अभिलाषा जानने का प्रयास किया नहीं है, बट मैंने जरूर देखा है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं फोर्स के, और जब मुझे वर्दी में देखती हैं या बाहर किसी को भी वर्दी में देखती हैं, तो वो प्राइड भी फील करती हैं और वो लाइक भी करती हैं, तो हो सकता है भविष्य में उनका बने रुझान और प्रबल हो जाए।
1: आपकी एसएसबी में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है।
0: बिल्कुल,
1: आपकी फोर्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूनिफॉर्म पहन के दे स्मार्ट कंट्रीब्यूटर्स।
0: बिल्कुल, हमारी फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं, और हमारी फोर्स भी जो है महिलाओं की संख्या बढ़ाने पे जो है लगातार प्रयास कर रही है और उसका लेवल बनाने जा रही है, और मैंने देखा है कि महिलाएं भी बहुत जगहों पे, मैंने माउंटेनियरिंग की तो मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत सक्षम हैं हर चीज के लिए, वो वक्त की बात है, वो बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत ही बेहतरीन उनका कार्य है, और कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे कर देती हैं, उनकी सोचना समझना उनका तरीका बहुत अलग रहता है
1: जी। ये गाना आप ही की पसंद का मैं चला रहा
0: हूं,
1: पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसके लिए गाना चला रहे हैं। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ललित शाह मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड सशस्त्र सीमा बल।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष जौली। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ सेकंड इन कमांड एसएसबी के ललित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं या उनको अपना सैल्यूट करना चाहते हैं और उनको अपना एक भाव एक मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप की जो मशीन है इसका मैं अभी यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। नंबर है 9868107070, 9868107070। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप अपना मैसेज यहाँ भेज सकते हैं। कुछ लोगों को मुंह जुबानी हमारे जो नंबर है ना वो याद है ललित शाह जी, तो एक जनाब है दिल्ली से ही, द्वारका से लिख रहे हैं, शंकर लोड उनका नाम है, और वो आपको ग्रीट करते हुए कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी को भी, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी, एसएसबी को भी हम देते हैं। आप कितने फेयरलेस और डेडिकेशन के साथ हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनका नाम है शंकर लोड।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और एक और मैसेज अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहूँ, वीरू बख्शी हमें मेरठ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, ये चंद्र कुमार चक्रवर्ती हैं देहरादून से लिख रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इनका जो मैसेज है कि क्या ये जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेकंड इन कमांड आप अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं सीटीसी में।
1: अभी जो मैं सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो मेरा दायित्व तो ट्रेनिंग देना है, तो मैं एज ट्रेनर वहाँ पे पोस्टेड हूँ, तो ट्रेनर हूँ। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं, बेसिकली डीडीओ का कार्य रहता है सेकंड इन कमांड के पास
0: जी,
1: ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, तो उसका कार्य पे अलाउंसेस ये जितने भी वित्त रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें अपने हेड ऑफ द ऑफिस को असिस्ट करना रहता है।
0: ओके।
1: हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको डीआईजी लेवल के ऑफिसर वो करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, तो उसमें से एक मैं भी हूँ सेकंड इन कमांड वहाँ पे
0: जी,
1: और ट्रेनिंग और कुछ डीडीओ वाला वर्क जो है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ।
0: मैंने मशीन खोली है, तो देखिए आपने कहा था ना कि हर प्रांत से आपकी रिक्रूटमेंट होती है, तो देहरादून से, अब राजस्थान से एक मैसेज आया नरेंद्र सुधार का, साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना जो भावुक होके हम लिखते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सुना जा रहा, थाईलैंड से अमोल अंबावणे, अगर मैं आपका सरनेम सही ले रहा हूँ, तो वो मैसेज हमें भेज रहे हैं कि न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से हमें देश और विदेशों में सुना जाता है। न्यूज ऑन एआईआर ये एक ऐप है, और पृथ्वी पर कहीं पर भी आप हैं जहाँ पे आपके पास मोबाइल डेटा है और आपको एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप हमें सुन सकते हैं। एक और है, सल्यूट सर कर रहे हैं, रंजीत इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं सीटीसी एसएसबी श्रीनगर से हूँ, सर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और सुन के आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, आशा करता हूँ ये आपके परिचित होंगे शायद कोई।
1: थैंक यू।
0: ऑल राइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं। महेश सिंह जी कहाँ से लिख रहे हैं ये मुझे बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। 29th SI/DE चेतन लिख रहे हैं, आप पहचान गए होंगे
1: जी।
0: हमारी वीर सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद, विजय कुमार जी हैं वहां से लिख रहे हैं। एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आवर ट्रेनिंग सेंटर, यश गुप्ता लिख रहे हैं, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस। आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें, क्यों?
1: धन्यवाद है यश का।
0: नागेश गडाडे हमें पोलैंड से सुन रहे हैं
1: जी।
0: अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे। चंद्रशेखर तिवारी हमें मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूं ललित सर का, सही कह रहे हैं सर
1: जी।
0: ऑलराइट, यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा, एंड ऑफ कोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है। दिल से जय हिंद लिख रहे हैं बाबूलाल यादव
1: जी, जय हिंद बाबूलाल।
0: ऑलराइट, को मैसेज सब भेज रहे हैं। एक और इंटरनेशनल मैसेज यहाँ पे आया है, एंड ऑफ कोर्स ये भी पोलैंड से ही आया है। एंड आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग आपने बताया कि ट्रेनिंग का दारोमदार जो होता है उसमें मेन वेमेन दोनों आपके बीच आते हैं यहाँ पे,
1: बिल्कुल
0: कॉम्बैट की सिचुएशन की भी ट्रेनिंग आप देते हैं,
1: बिल्कुल
0: आपने एंटी इंसर्जेंसी एंटी टेरर ट्रेनिंग भी आप लोग वहाँ पे देते हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है दोनों महिला और पुरुष को एक जैसी ट्रेनिंग देना, या आप कहीं सोचते हैं कि नहीं एक सॉफ्ट ट्रेनिंग रखते हैं एक हार्ड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होता है?
1: ट्रेनिंग दोनों के लिए ही बराबर है, सेम शेड्यूल है दोनों का, और दोनों ही मैंने जो देखा है कि दोनों ही चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ढलने में कुछ समय लगता है पर एक बार जैसे ही ढल जाते हैं तो वो रोल ऑन करते हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं। महिलाओं को मैंने देखा है कि जो उनका एक्सीलेंट टाइम है या उनका वेरी गुड टाइम है या वो है, वो अपने बेंचमार्क्स को अचीव करती हैं।
0: ओके,
1: कुछ समय लगता है, हर किसी के लिए लगता है, अभी तो जो पुरुष भी आते हैं उनको भी समय लगता है, बट एक बार वो ट्रेनिंग में ढलते हैं तो जो उनकी 48 वीक्स की ट्रेनिंग है, जाते जाते सब लोग अपना बेंचमार्क्स अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं उस ट्रेनिंग को। और इवन फील्ड्स में भी अभी हर जगह पे कोई भी हमारी ट्रांजिट रूट्स हैं या पेट्रोलिंग चल रही है या नाका चल रहा है, तो महिलाएं बराबर का योगदान दे रही हैं।
0: ऑलराइट जी, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, लगभग 9 मिनट बचे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा और किसी का मैसेज छूट ना जाए मैं ऐसी कामना कर रहा हूँ। क्रांति चौधरी पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिक भी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपके थ्रू SSB के थ्रू ले सकती है डिफेंस एकेडमी में?
1: अभी तक का तो जो हमने देखा है कि सिविलियंस को इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है,
0: बट सुझाव अच्छा है,
1: बहुत अच्छा सुझाव है, और मुझे लगता है कि इस सुझाव को मैं अभी जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर्स के सामने रखूंगा, और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है और इस तरीके की ट्रेनिंग हमने देनी चाहिए।
0: कृष्ण कुमार साहू हैं, 52 वर्षीय हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और वो आपको जय हिंद कह रहे हैं। शैलेंद्र वर्मा ने हमें मैसेज भेजा दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ कि फोर्स की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में, जो आम पुलिस की ट्रेनिंग होती है, उसमें आप लोगों में आप वो जानना चाह रहे हैं कि कोई फर्क होता है?
1: कुछ जो वेपन्स के हैं या कुछ उसके अलावा कुछ टैक्टिस है जो पुलिस की टैक्टिस है, जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है, उनके लिए क्यूरिकुलम थोड़ा अलग है, और हमारा जो पाठ्यक्रम है हमको ANO नक्सल ऑपरेशंस भी करने हैं, उसके अलावा उनमें GNK हुए, तो उस एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे भी हम लोग अपने बेसिक ट्रेनिंग में जोड़ देते हैं, जो शायद पुलिस में रह जाता होगा, वो स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते होंगे।
0: ऑलराइट, TPT सेल FHQ से जय हिंद बोल रहे हैं कि हमारा ये सेल आपका प्रोग्राम सुन रहा है।
1: जी मैं इस सेल में रह चुका हूँ यहाँ पे।
0: ओके जी, सनातन कुमार नई दिल्ली से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही SSB में है और आज मैं अपने ऑफिसर का काम छोड़कर आपका प्रोग्राम सुन रहा। नहीं भाई, ऑफिस का काम मत छोड़िए, प्रोग्राम करते रहिए और सुनते रहिए, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है।
1: बिल्कुल।
0: दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमें सुन रहे हैं
1: जी,
0: और वो कह रहे हैं कि लाइव सुन पा रहे हैं और सुनकर उनको आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। रोहन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मैसेजेस आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स धर्म जी हमारे साथ हैं, वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, धर्म भाटिया रोहतक से। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपसे कि अब आगे के जो जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी एक डोमिनेट कर रही है वॉरफेयर में, मैं ये नहीं कह रहा कि SSP सिर्फ वॉरफेयर ही करेगी, लेकिन सर्वेलेंस, वो आपने बताया कि बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं आपके बीच में, तो उसमें भी आप लोग फ्यूचर विजन रख के कुछ विस्तार करने की सोचते हैं?
1: बिल्कुल, जितनी मेरी लिमिटेड जानकारी है उसके अनुसार जो है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरीके से भारत सरकार जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है, और जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगा उसमें जो गैजेट्स हैं, जो नए गैजेट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हमारी बॉर्डर गार्डिंग यूनिट्स के संग, और जो हम अपने पोरस बॉर्डर को जो सर्वलांस करते थे मैंड होके, उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी उसको सर्वलांस करेंगे और उस पे आने जाने वाले मूवमेंट पे हम लोग नजर रख पाएंगे।
0: तो यानी मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि कंप्लीटली, लोगों को लगता है कि यार आपने कंप्लीटली मशीन पर तो कुछ नहीं छोड़ दिया, AI का जमाना आ गया, आप लोग AI को अडॉप्ट कर रहे हैं SSB में?
1: कुछ जगहों पे अभी उस रफ्तार से तो नहीं, बट यह है कि AI के अपने भी कॉन्स हैं, उसमें भी बहुत सारे गैप्स हैं, तो उसको देखते हुए अभी तो बहुत कम स्तर पे ही।
0: तो ललित शाह जी, एक सवाल आ रहा मन में, ठीक है आप इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर पे स्थित हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं वो भी आपकी मूवमेंट पे आपकी तकनीक पे नजर तो जरूर रखते होंगे।
1: बिल्कुल नजर रखते होंगे और उन पे हम भी नजर रखते हैं, नज़र दोनों ही तरफ से रखी जा रही है और मुझे यकीन है कि हमारी भी एजेंसीज, हम लोग खुद जो है उन पे नज़र रखते हैं और उनके किसी भी मूवमेंट पे और किसी भी पैतरे पे हमारी पूरी निगरानी बनी हुई है।
0: हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि
1: हम भी तैयार हैं, बिल्कुल
0: चौकन्ने हैं।
1: बिल्कुल।
0: सीटीसी श्रीनगर से ही सोनू चौधरी हमें मैसेज लिख रहे हैं, साथ ही साथ धन सिंह का एक मैसेज आया है, रोशनी रावत हमें मैसेज लिख रही हैं, ग्राम व पोस्ट भमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव और चंडीगढ़ में भी उनके जानकार हैं, वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आपको पूरे देश में और काफी जगह ये प्रोग्राम सुना जा रहा है,
1: सब आपका धन्यवाद है, आकाशवाणी का धन्यवाद।
0: महिपाल सिंह हैं, ट्रेनिंग आप ही के जहां आप स्थित हैं श्रीनगर, वहीं से हमें मैसेज लिख रहे हैं। एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया बाबूलाल यादव का, आसमान में हजारों सितारों से बेहतर हमारे कंधों पर चमकते सितारे हैं जो देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं, मेरी तरफ से सर को सुनाओ अच्छा लगेगा,
1: धन्यवाद।
0: ऑलराइट, 29th SID से एक और मैसेज है, जयपुर राजस्थान से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम जरूर लिखें। अमरावती से नीता लिख रही हैं, सलाम कर रही हैं और वो कह रही हैं, हम सबकी तरफ से हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि आप जैसे कमांडर आगे मिलते रहें, भारत माता की रक्षा करते रहें। समय बीतता जा रहा है क्योंकि अब बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊंगा, नाम मैंने लगभग सबके ले लिए हैं, और आप अगर हमारे युवाओं को जो आपकी आवाज सुन रहे हैं, सेकंड इन कमांड ललित शाह सशस्त्र सीमा बल, आप अपनी तरफ से और अपनी फोर्स की तरफ से भारतवासियों को अगर मैं कहूं

अभी आप सुन रहे थे संदेश टू सोल्जर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया गया। FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

युवाणी कार्यक्रम में शाम 5:30 बजे आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता। विषय रहेगा युवाओं का ललित कलाओं में रुझान। इस विषय पर डॉक्टर गगनदीप कौर से बातचीत करेंगे महेंद्र मोहन शर्मा। इसके अलावा इस कार्यक्रम में जानकारी दी जाएगी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जयंती विषय पर।

गीता संदेश कार्यक्रम होगा शाम 6:20 पर। आज इस कार्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 26-29 तक की व्याख्या करेंगे श्री सोमनाथ शर्मा। किसान वाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:30। ग्राम संसार कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 7 बजे से।

सैनिक भाइयों के लिए कार्यक्रम जय जवान सुनिएगा शाम 7:30 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया आप सुनेंगे शाम 7:45 पर।

विविध भारती के कार्यक्रम हम रिले करेंगे रात 9:15 पर। कार्यक्रम आपके लिए छायांकित होगा रात 9:30 बजे। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने विविध भारती केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम चांदनी रातें हम प्रस्तुत करेंगे रात 10 बजे। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा हमारे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर। आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले होंगे शाम 6 बजे 6:05 पर, रात्रि 8:45 पर, रात्रि 9 बजे, रात्रि 11 बजे और 11:05 पर। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे शाम 6:10 पर। ये थी हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 5:05 हुए, आइए सुने कार्यक्रम गाने नहीं पुराने।

गाने नए पुराने कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को प्रदीप की ओर से प्यार भरे नमस्कार। दोस्तों, जहां यादों के पन्नों से निकलते हैं सुर और धड़कनों में बस जाते हैं गीत, जी हां, ये कार्यक्रम है गाने नए पुराने। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपका साथी प्रदीप, और अगले कुछ पलों तक हम साथ रहेंगे संगीत, शायरी और एहसासों का सफर लेकर। किसी ने कहा है कि सुरों की महफिल सजी है, मौसम भी मेहरबान है, दिल की हर धड़कन कह रही है आज फिर संगीत का नाम है। तो शुरुआत करते हैं इस प्यारे गीत से।

दोस्तों, कुछ रास्ते मंजिल नहीं एहसास बन जाते हैं, कुछ गीत बस सुनाई नहीं देते, दिल में उतर जाते हैं। ज़िंदगी की रफ्तार चाहे जितनी तेज हो, कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो कदमों को रोक लेती हैं। ऐसा ही एक गीत हमने सुना, कोई रोको ना भाई। हम

वापस आ गए हैं संगीत की इस प्यारी महफिल में। कुछ आवाज़ें कानों से नहीं दिल से सुनी जाती हैं, कुछ यादें तस्वीर से नहीं धुन बनकर लौट आती हैं। अब बारी है अगले गाने की, जिसमें प्यार की बात भी है, शरारत भी और दिल की धड़कनों की आवाज़ भी। तो सुनिए ये गाना और मुस्कुराइए, और लगता है आप थिरकने भी लगेंगे। आवाज नीरज श्रीधर, नितिन मोहन की, समीर का लिखा गाना है, हिमेश श्री शमिया का संगीत, हम शक्ल फिल्म का गाना।

जी हाँ दोस्तों, संगीत वही जो दिल को छू जाए, और इंतज़ार की शाम हो या उम्मीदों की सुबह, कुछ लोग नहीं आते मगर उनके गीत आ जाते हैं। अब पेश है अगला गाना, और ये कुछ ऐसे ही एहसासों को लेकर आया है। इस गाने में दोस्तों लता मंगेशकर की आवाज़ है, कर्तव्य फिल्म का गाना है, वर्मा मलिक का लिखा हुआ, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

दोस्तों, कार्यक्रम है गाने नए पुराने, और अब इस कार्यक्रम में एक ऐसा गीत जो उम्मीद और इंतज़ार दोनों को खूबसूरती से सजाता है। किसी ने कहा है कि मोहब्बत अगर अल्फाज होती तो लिख देते, मगर वो एहसास है इसलिए गीतों में मिलते हैं। अब वक्त है उस गीत का जिसने दिलों में अपनी अलग जगह बनाई, और ये आज की दौर का गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है किसी का भाई किसी की जान, कमाल खान और पलक मुछाल की आवाज़ में। शब्बीर अहमद ने ये गीत लिखा, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया।

दोस्तों, जब कोई अपना दूर हो और हर धड़कन उसी का नाम ले, तो ये जो गीत अब हम सुनाने वाले हैं, ऐसा गीत हमें अपने दिल के बहुत करीब लगता है। कार्यक्रम के आखिर में ये गाना हम सुनेंगे। और कोई ये कहता है कि रंग चेहरे का नहीं, दिल की सादगी का होता है।

जो अपने पन से जीत ले वही सबसे खास होता है। आइए अब कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है रामपुर का लक्ष्मण। आशा भोंसले की आवाज़ है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीतकार आर डी बर्मन।

अपने रंग, अपने अंदाज और अपनी पहचान पर गर्व करने वाला ये प्यारा गीत। भाई गीत खत्म हुए हैं, सुर नहीं, महफिल थमी है, सफर नहीं, फिर मिलेंगे नए एहसासों और पुराने नए गीतों के साथ इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गाने नए पुराने। और अब अपने दोस्त प्रदीप को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए पुराने FM 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 5:30 बजे हैं। आइए सुनते हैं युववाणी कार्यक्रम।

युवाणी कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को प्रदीप का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं भेंटवार्ता, जिसका विषय रहेगा युवाओं का ललित कलाओं में रुझान। इस विषय पर आज हमें जानकारी देंगी डॉक्टर गगनदीप कौर, और इनसे जानकारी हासिल करेंगे हमारे इस कार्यक्रम के जो प्रमुख हैं, वो महेंद्र मोहन शर्मा जी। तो ये भेंटवार्ता हम आपको सुनाएंगे, साथ ही जानकारी देंगे आपको खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय पर। इसके अलावा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जयंती विषय पर भी जानकारी होगी, और फिल्म संगीत तो हम सुनवाएंगे ही। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर। श्रोताओ, आज जो हमने आपके लिए विषय चुना है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ये एक ऐसा विषय है जो केवल खेल तक सीमित नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हमें प्रेरणा देता है। खेल केवल जीत और हार का नाम नहीं होता, खेल अनुशासन है, समर्पण है, स्वास्थ्य है, और सबसे बढ़कर आपसी भाईचारे का प्रतीक होता है खेल। इसी भावना को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, और विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आयोजित होता है। इस दिवस की शुरुआत यूएन द्वारा की गई थी, ताकि खेलों के माध्यम से दुनिया में शांति, समानता और विकास का संदेश फैलाया जा सके। दोस्तों, खेल हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हम खेलों में हारते हैं, और हार के बाद जीत भी होती है। खेल हमें सिखाते हैं कि हार कर भी हमें मुस्कुराना चाहिए, गिर कर फिर उठना, टीम के साथ आगे बढ़ना और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास करना, ये सब खेल की देन होते हैं। आज के समय में जब मोबाइल और डिजिटल जीवन शैली ने लोगों की शारीरिक गतिविधियां कम कर दी हैं, तो ऐसे में खेलों का महत्व और बढ़ जाता है। खेल जहां हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, हमारे मन को प्रसन्न रखते हैं, हमारे अंदर आत्मविश्वास को भी मजबूत करते हैं। हमारे देश भारत ने खेलों की दुनिया में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। दुनिया में खेल, चाहे हॉकी हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती या एथलेटिक्स, भारतीय खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर अपने देश का यानी भारत का नाम रोशन किया है। प्रिय श्रोताओं, खेल का मैदान केवल खिलाड़ियों के लिए नहीं होता, हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में खेल को अपनाकर बेहतर जीवन की ओर कदम बढ़ा सकता है। जैसे कि सुबह की सैर करके, योग करके, साइकिल चलाकर, दौड़कर, या कोई भी पसंदीदा खेल खेलकर, ये सब स्वस्थ जीवन की और छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हैं। आइए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि हम खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। अपने बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को खेलों के लिए प्रेरित करेंगे और स्वस्थ, एक्टिव यानी सक्रिय और सकारात्मक समाज के निर्माण में योगदान देंगे, क्योंकि खेल महत्वपूर्ण है। और खेलों के साथ साथ हमें समय जब मिले तो हम संगीत भी सुने, वो भी हमारे मन को जागरूक करता है, हमारी इंद्रियों को एक्टिव करता है। आप सुनते हैं ये बहुत प्यारा गीत।

सुरक्षा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मंगल भवन मंगल हारी,
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
5: दोस्तों, आज के दौर में युवा केवल किताबों और तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनी रचनात्मक सोच को भी नई उड़ान दे रहे हैं। चित्रकला, संगीत, नृत्य, नाट्यकला, मूर्तिकला और अन्य ललित कलाओं के प्रति युवाओं को बढ़ता रुझान इस बात का संकेत है कि नई पीढ़ी अपनी अभिव्यक्ति को नया आयाम देना चाहती है। दोस्तों, ललित कलाएं केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि संवेदनाओं, विचारों और व्यक्तित्व को निखारने का सशक्त माध्यम भी है। आज के युवा सोशल मीडिया, डिजिटल मंचों और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से अपनी कला को पहचान दिला रहे हैं और अपने सपनों को नया रंग दे रहे हैं। तो दोस्तों, इन्हीं विचारों को लेकर के आज हम अपने युवाणी कार्यक्रम में एक भेंट वार्ता आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका विषय है युवाओं का ललित कलाओं में रुझान। इस विषय पर हमें जानकारी दे रही हैं डॉक्टर गगनदीप कौर और इनसे बातचीत कर रहे हैं महेंद्र मोहन शर्मा। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
6: श्रोताओं नमस्कार, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि ललित कलाएं क्या होती हैं, किस तरह से कला मानव के जीवन में उसका एक महत्व है, उसका अहम रोल है, कैसे मनुष्य जो है अपनी कल्पनाओं से, अपने विचारों से दूसरे को आकर्षित कर सकता है और संदेश देता है। तो ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गगनदीप कौर जी। आप प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पलवल कुरुक्षेत्र में, साथ ही बबैन का जो कॉलेज है उसकी भी प्रिंसिपल आप ही हैं। तो मैडम गगनदीप जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत। सबसे पहले ये बताइए कि ये ललित कलाएं क्या होती।
7: ललित कला, जिसको हम फाइन आर्ट्स कहते हैं, अगर हम अपने पुराने ग्रंथों में देखें तो भारत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 64 कलाओं का उल्लेख किया है। वात्स्यायन के कामसूत्र में भी इसका वर्णन आता है
6: जी।
7: ललित कला में हमारे म्यूजिक आ जाता है, डांस आ जाता है, हमारा स्थापत्य कला आ जाती है, मूर्ति कला आ जाती है, हमारा चित्र कला आ जाती है
6: जी।
7: आर्ट एंड पेंटिंग मेरा भी फील्ड है, मैं भी स्टूडेंट ऑफ फाइन आर्ट कह लो,
6: बिल्कुल
7: मैं अपने आप को आर्टिस्ट तो क्या कहूँ, आर्टिस्ट तो एक जिसको कहते हैं जिसने दुनिया बनाई वो ग्रेट आर्टिस्ट है, मैं सिर्फ अपना ये कहना चाहूंगी आई एम स्टूडेंट ऑफ फाइन आर्ट
6: जी। ये फाइन आर्ट में जो आप बता रहे हैं, ललित कलाओं के अंदर ही फाइन आर्ट आता है,
7: ये फाइन आर्ट्स को ही ललित कला कहते हैं। और इसमें आगे उसका अगर हम बाइफरकेट करें तो मेन जो है चित्रकला, मूर्तिकला, ये सारी जो है ये हम इसको ललित कला में गिनते हैं।
6: अच्छा जी।
7: एक मूर्ति कला जो बनाने वाला है, मूर्तिकार है, वो भी एक ललित कला का सृजन करने वाला है। और चित्रकार है, जो चित्र बनाता है, वो भी एक ललित कला का सृजन करने वाला है
6: जी। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे आपने बताया कि एक तो मूर्ति का हो गया, मूर्ति कला का हुआ, दूसरा चित्रकला का हुआ, तीसरा जो है कुछ चीजें जो हम आजकल जैसे वेस्ट से बनाते हैं या कुछ अन्य चीजों से भी, अभी जैसे इसकी बात करें चंडीगढ़ में जो हमारा बना हुआ एक गार्डन, रॉक गार्डन, तो ये भी एक इसी का ही उदाहरण है,
7: ये भी इसी का ही उदाहरण है।
6: तो और ये किस तरह से होता है, इसमें और क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है
7: इसमें, इसका जैसे हम इसका क्षेत्र देखें बहुत ही व्यापक है। कुछ भी क्रिएट करना, व्हाट इज आर्ट, आर्ट क्या है, अरेंजमेंट और सिलेक्शन है। कुछ मटेरियल है हमने सिलेक्ट किया और उसको अरेंज कर दिया और उससे एक डिजाइन बना
6: जी,
7: जो कि एक आर्ट पीस है।
6: बिल्कुल,
7: अरेंजमेंट और सिलेक्शन को ही हम डिजाइन कहते हैं, यही आर्ट है और यही आर्ट हमारे दैनिक जीवन में जहां देखे वहीं विद्यमान है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताती हूँ आपको कि डिजाइन अगर आर्किटेक्चरल डिजाइन ना होता तो हम कहाँ रह रहे होते?
6: बिल्कुल,
7: हम लॉग कैबिन्स में रह रहे होते। पिक्टोरियल डिजाइन है, हर चीज पे है पिक्टोरियल डिजाइन, यहाँ तक कि हमारा जो न्यूज़पेपर में जो पिक्चर्स हैं, हमारे मैगजीन्स हैं, उसमें भी ये सारी की सारी पिक्टोरियल जो हमारा डिजाइन है उसके एग्जाम्पल है। यहाँ तक कि हमारी जो करेंसी है, नोट है, उसके ऊपर भी डिजाइन
6: है, बिल्कुल।
7: और अगर वो ना हो तो देखो ये प्लेन पीस ऑफ पेपर है।
6: बिल्कुल, और देखने में ठीक भी नहीं लगता हो।
7: और जो स्कल्पचरल हमारा जो स्कल्पचर है, स्कल्पचरल डिजाइन का एग्जांपल मैं बताती हूँ कि जैसे हमारे मान लो क्ले बाउल्स हैं या जो भी हमारे बर्तन बनते हैं या जो भी फ्लावर वेसेस हैं, ये सारे के सारे पहले तो इसका डिजाइन बनता है, उसके बाद फिर ये बनके इसकी जो जो फॉर्म है वो निकल के आती है। फिर है कॉस्ट्यूम डिजाइन
6: जी।
7: कॉस्ट्यूम डिजाइन भी हम लेते हैं कि जो आर्टिस्ट है वो उसको तैयार करता है कॉस्ट्यूम को भी। आप देखिए आपने बहुत सुंदर शर्ट पहना है जिसपे ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, ये तो ये भी आर्टिस्ट ने ही तैयार किया हुआ है। और मान लो हम अगर ये कॉस्ट्यूम डिजाइन भी ना हो तो हम तो बिल्कुल एडम और ईव की जो हमारे उसमें ही एज में चले जाएं और कैसे लगे हम उसके। तो ये भी ये सारा का सारा जो है डिजाइन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम आम देखने को मिलता है और यही आर्टिस्ट क्रिएट करता है अपनी सूझबूझ से
6: जी। तो आपने बहुत अच्छा बताया कि जो क्रिएटिविटी है वो ही एक ललित कला है और आदमी जो है व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति को उसमें प्रदर्शित करता है, अपने हुनर को दर्शाता है, चाहे वो मूर्तिकार है या चाहे वो कोई पेंटर है। तो पेंटिंग की अगर हम बात करें, आप इस क्षेत्र से जुड़ी हैं, कितने तरह की पेंटिंग होती है और क्या उसमें फर्क होता है?
7: पेंटिंग तो सर पेंटिंग है
6: जी,
7: चाहे कैसे भी की जाए। पुराने जमाने में प्राकृतिक रंगों से होती थी, जैसे हम अपने अजंता की पेंटिंग्स देखते हैं तो जो चित्रकार था, इतनी टेक्निक तब नहीं थी जो कलर्स में, जो आज हमें बने बनाए कलर्स मिलते हैं, फैसिलिटी है। तो आर्टिस्ट जो है वेजिटेबल से जो कलर्स हैं, जो पेड़ पौधों से प्राप्त रंग थे, कोयला है उससे काला रंग, या इस तरह से हिरोंजी से, इस तरह के वो जो वेजिटेबल प्लांट्स है उससे रंग लेता था और पेंट करता था। धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई, नई टेक्निक्स आती गई, ऑयल पेंट्स आए और वाटर कलर आए, पेस्टल्स आए, पोस्टर कलर आ गए, तो जिसमें भी एक्रेलिक आ गए। आजकल फास्ट जो एक्रेलिक मीडियम है वो बहुत जल्दी सूखता है, तो आर्टिस्ट कंफर्टेबल फील करता है कि जल्दी से पेंटिंग तैयार हो जाए और सूख भी जाए, तो एक्रेलिक मीडियम जो है आजकल उस प्रचलन में है। और पेंटिंग की जब मैं बात करती हूँ तो ये तो होगी रंगों की चॉइस कि आर्टिस्ट ने किस में बनाना, एक तरह से मीडियम है वो, तो आपके भावों को कैनवस पे उतारने का
6: माध्यम है, बस एक तो
7: एक माध्यम है
6: जी।
7: जो आर्टिस्ट सोचता है, देखता है, महसूस करता है, वही वो अपने कैनवस पे उतारता है, उसकी सोच कैनवस पे उतरती है, मीडियम चाहे कोई भी हो
6: जी।
7: अब मान लो जैसे हम कला के तत्वों की बात करते हैं, लाइन, फॉर्म, कलर, टेक्सचर और स्पेस, जैसे हम कहते हैं कि ये हमारे कला के तत्व हैं जिससे हम क्रिएट करते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा, उसमें जो आर्ट से रिलेटेड पार्ट है, चित्रकला से रिलेटेड है, पंडित यशोधर हुए हैं हमारे हिस्ट्री में, जो राजा जयसिंह की उनकी सभा में राजपुरोहित थे, उन्होंने षडांग के नाम से उन तत्वों को उन्होंने उसको एक्सप्लोर किया है।
6: अच्छा जी।
7: उसका जैसे श्लोक है संस्कृत में, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्यम योजनम सदस्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगम। रूप भेदा, रूप और भेद, यानी कि जो भी आपने बनाया है उसमें भेद कर पाने की क्षमता।
6: ठीक।
7: फॉर एग्जाम्पल आपका पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो लगे कि आप ही का पोर्ट्रेट है
6: जी,
7: उसमें हम भेद कर पाए, दो आदमी बैठे हैं, सिमिलर हैं, शक्ल देखने में मान लो दो भाई हैं, चाहे जुड़वा हो, शक्ल बिल्कुल मिलती है जिनकी, लेकिन फिर भी भेद कर पाना,
6: बिल्कुल
7: ये जो है, ये आर्टिस्ट जो है उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो इस तरह का रूप बनाए
6: सके, उसको
7: रूप बनाए कि पहचाना जा सके कि
6: ये वो है,
7: ये
6: वो
7: है, ये वो है।
6: बिल्कुल बिल्कुल।
7: प्रमाण है, प्रमाण में हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं
6: जी,
7: जैसे कि किस प्रोपोर्शन में ह्यूमन बीइंग बनाए जाएंगे, तो हमारा एक हेड का क्या प्रोपोर्शन है और
6: जी बॉडी का क्या स्ट्रक्चर है, पैरों का क्या, हाथों का क्या,
7: ये सारा प्रमाण,
6: पेट कितना बड़ा दिखाना है या कुछ और दिखाना है।
7: बिल्कुल बिल्कुल, प्रमाण
6: जी।
7: फिर है भाव।
6: अच्छा,
7: भाव भी आने चाहिए पेंटिंग में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मदर एंड चाइल्ड की पेंटिंग बनाई है तो वो ममता का भाव उसमें आना चाहिए
6: जी जी जी,
7: कि ये मदर एंड चाइल्ड की ही पेंटिंग है।
6: बिल्कुल।
7: फिर है सादृश्य। सादृश्य की जो जैसा है वैसा बनाया जाए, मतलब वो करेक्टर उसमें आना चाहिए। लवण्य जो है वो एक मोती में जैसे चमक होती है, वो
6: उसमें
7: है
6: ग्रेसफुल होना चाहिए,
7: उसमें ग्रेस होनी चाहिए। यानी कि हम उसमें कहते हैं कि एक ब्यूटी को हम सीमा में बांधते हैं
6: जी,
7: कि ब्यूटी की भी एक लिमिट है, उससे पार जाएगा तो वो कोई चीज जो है वो अच्छी नहीं लगेगी।
6: अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल बिल्कुल।
7: तो उसकी भी एक लिमिट होती है।
6: ठीक बात है। तो वो उसमें मतलब इन चीजों का ध्यान रखना हमने।
7: हाँ, और वर्णिका भंग।
6: अच्छा,
7: वर्णिका भंग मतलब ब्रश से विभिन्न रंगों द्वारा उसका प्रयोग, तूलिका का प्रयोग, ब्रश का यूज। और कि अगर हम कलर और ब्रश से हम पेंटिंग नहीं बनाते तो वो तो हमारे सिर्फ यही माइंड में रह जाएगी, वो ना तो कैनवस पे उतरेगी
6: जी,
7: ना ही लोग उसको देख पाएंगे।
6: देख पाएंगे।
7: तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एलिमेंट है
6: जी, इसका जो आपने बताया। हाँ, अब बात करते हैं इस क्षेत्र की, बात करते हैं इस क्षेत्र में जो युवा आ रहे हैं, जो आइन एंड आर्ट्स के हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आजकल देखा जाता है कि वो गूगल से कॉपी कर लिया या कहीं से देख के कर लिया, वो बड़ा फास्ट चलता है, या फिर अब तो AI का जमाना आ गया, बिल्कुल टेक्चर उसमें डालो बना के निकाल देता है। आप क्या कहना चाहेंगे?
7: मैं ये कहना चाहूंगी आज के युवाओं को, कला जो है वो हमारी सभ्यता संस्कृति को संजो के रखती है। आर्ट किसी भी इरा का हो, आज भी अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें हम पहचान सकते हैं, चाहे एंशियंट आर्ट है, मिडिवियल आर्ट है, हमारा मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी आर्ट है, उसको देख के हमें पता लगता है कि जीवन शैली कैसी थी लोगों की
6: जी,
7: किस तरह के रीति रिवाज थे, लोगों का रहन सहन कैसा था। ये उस टाइम का आर्ट कला और साहित्य ही बता पाता है।
6: मतलब कहने का ये कि एक जो सभ्यता है उसको अगली पीढ़ी पे ले जाने में इसका सबसे बड़ा योगदान,
7: सबसे बड़ा योगदान,
6: तभी लोग जान पाते हैं कि देखो अब जैसे हम बात करते हैं कि अच्छा हड़प्पा की बात करते हैं तो वो वहाँ की जो आर्ट थी उसने ही जीवित रखा, वो चीज हमारे मन में वही रहा।
7: बिल्कुल। आज भी देखिए जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरह का आर्ट जैसे प्रयोग होता था, हमारी जो सीगल्स मिली हैं उसमें भी हमें जो चित्र, जो एक तरह से हमारा जो सील्स मिली हैं उसमें एनग्रेव्ड जो किया हुआ है वो एक तरह से मूर्ति कला का ही हमारा नमूना है वो
6: जी।
7: उसके बाद हम जब सीधा मॉडर्न में आते हैं तो आप देखेंगे कि लायोन कैपिटल ऑफ सारनाथ, राजा अशोक जो है उसका झुकाव बुद्धिज्म की तरफ हो गया था, बुद्ध की मूर्ति वहां नहीं बनी अभी
6: जी।
7: बुद्ध की मूर्ति बहुत बाद में आके बनी है, लेकिन उसने जो लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ है आज भी देखो हमारा नेशनल एम्बलम है।
6: बिल्कुल।
7: मतलब चार शेर हैं जो पीठ से पीठ जोड़े हुए, मैसेज वही था कि ये जो बौद्ध भिक्षुओं के प्रतीक है और चारों दिशाओं में इनकी जो टीचिंग्स को पहुंचाएंगे, और इस तरह से बहुत ही खूबसूरत वो मूर्ति कला का नमूना है। मॉडर्न के आगे हम आते हैं सुंघाज पे, जिसको हम शुंग काल कहते हैं, भारूत और सांची हमारे स्तूपाज हैं।
6: बिल्कुल, बिल्कुल।
7: जो उस टाइम के हमारे लोगों की सोच को दिखाते हैं, वहां की संस्कृति को डिपिक्ट करते हैं। आगे चले तो हमारा जो है आ जाता है कुशाणास। कुशाणास में आके सर हम गंधार कला आती है और मथुरा, गंधार और मथुरा हमारे दो केंद्र आ जाते हैं कुशाणास के। गंधार कला में ऐसा है कि सारा जो बुद्ध को बनाया गया है, जो उनकी मूर्तियां हैं, वो एक तरह से यूनान के राजकुमारों की तरह बनाई गई हैं। आर्टिस्ट यहाँ आ चुके थे यूनान से, वो करते थे काम। और दूसरा जो हमारा है जो मथुरा, मथुरा का बुद्ध आप देखेंगे बिल्कुल शांत है, अध्यात्म
6: जी।
7: यहाँ से फिर जब हम कुशाणा से आके हमारी कुशाणा गुप्ता, जहाँ से बुद्ध की मूर्ति शुरू होती है, उससे पहले बुद्ध को दिखाया नहीं गया, सिर्फ एक तरह से सिंबल्स
6: दिखाए गए बुद्धिज्म के।
7: बुद्धिज्म के आगे चलता है, हम जैसे ही अपनी हिस्ट्री से आगे चलते हैं, ये उस एरिया को उसकी उस पर्टिकुलर इरा को दर्शाते हैं
6: जी,
7: ये चीजें कि उस टाइम लोग कैसी मान्यताओं में विश्वास रखते थे,
6: किस तरह से जीवन जीते थे, किस तरह की उनकी शैली थी।
7: आगे जाके सर हम चलता है, हमें अजंता चलता है, अलोरा चलता है
6: आगे हमारा
7: आ जाता है सर, जब हम पहुंचते हैं बहुत आगे तक आके, तो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट और आगे मॉडर्न आर्ट के बीच में राजा रवि वर्मा आते हैं एक कड़ी के रूप में
6: जी।
7: बहुत सुंदर उनकी पेंटिंग्स है, बहुत सुंदर राजा रवि वर्मा की
6: जी।
7: उसके बाद हमारी मॉडर्न एरा शुरू हो जाती है, जिसमें हमारे मेन पेंटर्स तीन आ जाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, यामिनी रॉय, ये हमारे पिलर माने जाते हैं मॉडर्न आर्ट।
6: बिल्कुल।
7: उसके बाद फिर हमारा आगे चल के कंटेम्प्रेरी आर्ट शुरू हो
6: जाता है। जी, क्या संदेश आप देना चाहेंगी हमारे युवाओं को?
7: मैं अपने युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि शॉर्टकट रास्ते मत ढूंढें, क्योंकि मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं कि मैडम ये बताइए कि बड़े बड़े कैनवस कैसे पेंट करने हैं, रंग बिखेरना चाहते हैं इस तरह से। मैं उनको कहती हूँ कि पहले बेसिक सीख लीजिए, डिस्टॉर्शन तो बाद की बात है।
6: ठीक।
7: कि हम बहुत बड़े बड़े अगर मॉडर्न आर्टिस्ट जैसे हम पिकासो को भी देखें, तो उसने पहले ओरिजिनल स्केच किए हैं, उसके बाद उसने डिस्टॉर्ट किया है फिगर्स को
6: जी।
7: पहले आप थोड़ा रियलिज्म की तरफ जाएं। मैं बच्चों को कई बार ऐसा कहती हूँ कि अगर कोई सीखना चाहता है ना, पहले मेरे को ये आपके सामने किताब रखी है, इसको ड्रॉ करके बताएं
6: जी।
7: अगर आप इसको सही से ड्रॉ कर सकते हो ना, तो मैं आगे चलूंगी, मैं आपको बड़े बड़े कैनवस बताऊंगी किस तरह से पेंट करने हैं
6: जी।
7: तो मैं अपने युवाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि मेहनत का रास्ता अपनाएं, जो समाज में आपको दिखता है अच्छा बुरा
6: जी,
7: अपनी पेंटिंग्स में वो दर्शाएं, समस्याएं दिखाएं, साथ के साथ सॉल्यूशन भी बताएं, तभी वो हमारा जो है वो पेंटिंग सार्थक है
6: जी,
7: वो अपना पर्पस फुलफिल करेगी,
6: तभी समाज आगे बढ़ेगा।
7: और यही है कि कुछ लोग जो है अब तो रोजगार के रूप में भी इसको देख रहे हैं
6: जी।
7: जो दो मेन एम है सर हमारे आर्ट को आगे लेके जाने के, एक तो ये कि ये हमारे सभ्यता संस्कृति को संजो के रखता है, दूसरा एक रोजगार इसका माध्यम है। तो अच्छा आर्ट वर्क हर जगह अप्रिशिएट होता है सर।
6: बिल्कुल, हर जगह होता है और हर समय में होता है और होता रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर गगनप्रीत जी। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी ललित कलाओं के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में पूरा विस्तार से बताया, कैसे इस क्षेत्र में युवा अपने अवसर तलाश सकते हैं, किस तरह से उसको आगे बढ़ सकते हैं, कि वो बेसिक से सीख करके शॉर्टकट ना अपनाएं, मेहनत करें, इसको सीखें, आगे बढ़ें। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: तो दोस्तों, ये आपने भेंट वार्ता सुनी युवाओं का ललित कलाओं में रुझान विषय पर। इस विषय पर हमें जानकारी दे रही थी डॉक्टर गगनदीप कौर, इनसे बातचीत कर रहे थे महेंद्र भवन शर्मा। तो दोस्तों, आज आपने इस भेंट वार्ता के बाद आपके साथ हम चर्चा करेंगे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जयंती विषय पर, लेकिन उससे पहले ये संदेश।

0: आज है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जयंती। दोस्तों, आज के विशेष कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं उस महान क्रांतिकारी, उस महान कवि और अदम्य देशभक्त का जिक्र हम कर रहे हैं, जिनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। जी हाँ, उनका नाम है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की आज जन्म जयंती है और ये उनकी जयंती हमें देशभक्ति, साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रेरणा देती है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून सन 1897 को शाहजहांपुर में हुआ था। बचपन से ही उनमें देश प्रेम और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस दिखाई देता था। राम प्रसाद बिस्मिल जी वे केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील कवि और लेखक भी रहे। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जीवन उस दौर में बीता जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उस समय तेज हो रहा था। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने युवाओं को जागृत करने और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन और संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राम प्रसाद बिस्मिल जी का यह मानना था कि स्वतंत्रता केवल इच्छा से नहीं बल्कि त्याग, संगठन और साहस से प्राप्त होती है। भारत की आजादी के संघर्ष में राम प्रसाद बिस्मिल जी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां आज भी हर भारतीय के हृदय में जोश भर देती हैं। सरफरोशे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन पंक्तियों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान न जाने कितने ही लोगों को प्रेरित किया। हम आज उनकी जन्म जयंती पर उनको याद कर रहे हैं और उनसे हम प्रेरणा ले रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से देश के लिए अपना जीवन न्योछावर किया। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी खुश रहें, आज का जुबानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ क्षण में हम चलेंगे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार। शाम 6:10 पर प्रादेशिक समाचार होंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
2: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमेरिकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले

0: तुरंत बंद होनी चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
1: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सिट्टेबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को एमटी मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों के आदान प्रदान पर बल दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आकाशवाणी और प्रसार भारती के अधिकारियों से समयानुसार परिवर्तन लाने के लिए योजना बनाने का आह्वान किया। कुरुक्षेत्र में बरसात से पहले अभी तक 80% नालों की सफाई का काम मुकम्मल हुआ। फरीदाबाद पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद एक हिस्ट्री शीटर को एक पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया। और आज हरियाणा के उत्तरी जिलों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश दर्ज की गई। रात को पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा में भी बारिश होने की संभावना है। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। श्री मोदी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति होंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने विकास और निर्यात के नए अवसर पैदा करने के लिए कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इन समझौतों से लघु और मध्यम उद्यमों के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। उन्होंने कहा कि कृषि और स्टार्टअप से लेकर विज्ञान और नवाचार तक नारी शक्ति सभी क्षेत्रों में योगदान दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों को महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। इस वर्ष की बैठक का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास था। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और उपराज्यपालों ने भाग लिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया है। विजयपुर में आकाशवाणी परिसर से राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करने के अवसर पर बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में जयपुर के सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने आकाशवाणी और दूरदर्शन में समयानुसार परिवर्तन लाने के लिए योजना बनाने का आह्वान किया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने आज कुरुक्षेत्र में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर बरसात के मौसम के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षा शुरू होने से पहले सभी नालों और ड्रेनों की सफाई का कार्य पूरा कर लिया जाए ताकि लोगों को जल भराव जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने संबंधित विभागों से साफ सफाई व्यवस्था और चल रहे कार्यों की जानकारी भी ली। श्री सुभाष सुधा ने मीडिया को बताया कि 80% नालों की सफाई अभी तक हो चुकी है।
2: अभी मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट की, संसदीय बोर्ड की, कलम का पब्लिक हेल्थ की, म्यूनिसिपल काउंसिल की और इरिगेशन मामले की सभी डिपार्टमेंट की बैठक को लेकर मीटिंग की थी। तो मीटिंग के अंदर जहां जहां भी हमें प्रॉब्लम आती है जैसे विधानसभा में, मैंने स्टेप टू स्टेप हर बार उसके लिए बात की है। 80% जो हमारा फ्लड के अंदर ड्रेन आती है उसकी सफाई हो चुकी है। 20% और आने वाले 10 दिन तक पाइप कंट्रोल की 100% सफाई हुई, ताकि हमारी अपनी तैयारी होनी चाहिए, लोगों को जान आने की।
0: उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में पहली बार बाढ़ और जल निकासी प्रबंधन की निगरानी के लिए एक विशेष पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर सफाई कार्य से जुड़े सभी विभाग अपनी गतिविधियों और प्रगति की जानकारी अपलोड कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के समक्ष जन स्वास्थ्य विभाग के लिए आधुनिक मशीनरी की मांग रखी गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। जल्द ही कुरुक्षेत्र के लिए लगभग 3 करोड़ रूपये की लागत से सुपर सकर मशीन तथा 40 से 50 लाख रुपए की लागत वाली सीवर जैकिंग मशीन खरीदी जाएगी। फरीदाबाद पुलिस की सेक्टर 85 और केंद्रीय अपराध शाखा की संयुक्त टीम ने आज अल सुबह मुठभेड़ के बाद एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान बिहार में सीतामढ़ी सोनू उर्फ भिखारी शाह के तौर पर हुई है, जो वर्तमान में दिल्ली के संगम विहार में रह रहा है। सहायक पुलिस आयुक्त वरुण कुमार दहिया ने मीडिया को बताया कि अपराध शाखा ने एक सूचना के आधार पर IMT मच्छगर सड़क पर नाकेबंदी कर उसे काबू किया। गिरफ्तारी से पहले आरोपी ने पुलिस पर 4 राउंड गोलीबारी की। आरोपी की एक गोली उपनिरीक्षक दीपक लोहान के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली उसके पैर में लगी और उसे काबू कर लिया गया।
3: एक कुख्यात बदमाश जो एक हिस्ट्री शीटर है, जिसका नाम सोनू है, एक टिप अप हुआ जो फरीदाबाद के अंदर बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दे सकता है, जिसको पकड़ने में मुठभेड़ के दौरान सफलता प्राप्त की। इसके ऊपर नोएडा के अंदर हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, NDPS और इससे संबंधित अन्य ऐसे लगभग 28 मुकदमे पहले से दर्ज है, जिस फरीदाबाद के अंदर भी 4 मुकदमों में वांछित था।
0: श्री दहिया ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 32 बोर का पिस्तौल, मोबाइल फोन, आधार कार्ड, नकदी तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आज हरियाणा के उत्तरी जिलों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश दर्ज की गई है। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने बताया कि पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा में भी आज धूल भरी हवाएं चल रही हैं। रात को पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण बारिश होने की संभावना है।
4: आज रात्रि को पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण हरियाणा के दूसरे हिस्से जो पश्चिमी और दक्षिण हरियाणा में भी बारिश की संभावना है। कल 12 जून और परसों 13 जून को भी हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्रों में गांवों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। 14 तारीख को ज्यादा बारिश की संभावना नहीं, परंतु 15 जून को एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना बन रही है। उससे मौसम फिर से बदलाव आने वाला है। जो भी ये बारिश होगी उसका सभी फसलों में फायदेमंद रहेगा।
0: डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने कहा कि इस बारिश से नमी संचित हो सकती है, जो धान की रोपाई के लिए फायदेमंद रहेगी। मॉनसून को लेकर उन्होंने कहा कि मॉनसून अभी कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पहुंचा है। अभी मॉनसून की गति ठीक है, अगर ऐसे ही रहता है तो 20 जून के आसपास मॉनसून पूर्व वर्षा हो सकती है। हरियाणा में मॉनसून जून के अंतिम दिनों में यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पहुंच सकता है। हरियाणा के विद्यालयों की कक्षा 8वीं के इतिहास पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं व बाबा बंदा सिंह बहादुर से जुड़े इतिहास को शामिल किया गया है। अब स्कूली बच्चे सिख गुरुओं के साथ साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के त्याग, बलिदान और आदर्शों से रूबरू होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में मनाए गए गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम के अवसर पर घोषणा की थी कि आने वाली पीढ़ियों को सिख इतिहास, गुरुओं के आदर्शों और उनके महान बलिदानों से परिचित कराने के लिए इन्हें शिक्षा का हिस्सा बनाया जाएगा। पंचकुला के नगर निगम आयुक्त विनय कुमार ने आज संपत्ति कर संग्रहण में तेजी लाने, बकायेदारों की पहचान कर उन्हें नियमानुसार नोटिस जारी करने तथा बकाया राशि की प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये निर्देश संपत्ति कर वसूली की प्रगति की समीक्षा हेतु अधिकारियों की ली गई बैठक में दिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों के आदान प्रदान पर बल दिया। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आकाशवाणी के अधिकारियों से समयानुसार परिवर्तन लाने के लिए योजना बनाने का आह्वान किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
5: आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। गीता संदेश कार्यक्रम में आज सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 26 से 29 तक की व्याख्या। व्याख्याकार हैं श्री सोमनाथ शर्मा।
6: गीता संदेश कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 26 से लेकर आगे की व्याख्या। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यच्चेतसां अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मानम्। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तात्पर्य यह है कि मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है, वही ही सर्वश्रेष्ठ है। जो भगत कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त कर जाता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है, भगवान में लीन रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण है। कहते हैं, मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से ही अपने संतानों, बच्चों को पालते हैं। हे कौन्तेय,

मैं भी अपने संतति को ऐसे ही पोषण करता हूँ। मैं भी अपने धाम में बैठकर दूर से ही अपने संतानों को देखता रहता हूँ, चिंतन करता रहता हूँ और उनका पालन पोषण करता रहता हूँ। कहते हैं मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुआ चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कहते हैं जो कछुआ है वो अपने अंडे सूखे में ही देता है, लेकिन पानी में रहकर उनका चिंतन करता रहता है। ऐसे ही भगवत भगत भगवत धाम से दूर रहकर भी भगवान का चिंतन करके परम धाम पहुंच सकते हैं, उसे भौतिक कलेशों का अनुभव नहीं होता। भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों से दूर रहता है।

भगवान समझाते हैं, उनको बताते हैं कि समस्त इंद्रियों को बाहर तक एक तरफ रखकर, अर्थात जो हमारे बाह्य इंद्रियों का सुख है, जो इंद्रियों के विषय है, उनको हमने एक तरफ रख देना चाहिए, बाहर निकाल कर रख देना चाहिए और अपनी दृष्टि एवं ध्यान को दोनों बाहों के बीच में रखकर ध्यान मगन होना चाहिए। प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाता है। जो व्यक्ति निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त हो जाता है, अर्थात निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। यदि हमने भगवान का ध्यान कैसे लगाना चाहिए, हमने दोनों भ्रुवों के मध्य में अपनी दृष्टि को रखकर भगवान को देखना चाहिए, भगवान का ध्यान लगाना चाहिए, तभी हमारे को निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। तात्पर्य है, कृष्ण भावना अमृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैंने क्या करना चाहिए। परमेश्वर को पहचान जाता है और दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है। अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने लग जाता है कि हाँ, भगवान मेरे साथ हैं। यही विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। जब मनुष्य को भगवान का अनुभव, भगवान की प्रतीति होने लग जाती है, तो समझो वो मुक्त हो जाता है। आधुनिक समय में जैसे स्वामी रामदेव जी जैसे योगाभ्यास एवं प्राणायाम करवाते हैं, ये वही मोक्ष की ओर जाने वाला मार्ग है, मार्ग ही तो है। जैसे लोम विलोम से प्राण अपान वायु को सम करना, कपाल भाती से भी प्राण अपान वायु को सम अवस्था में करके सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना होता है, जो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार हम अपने आप को इस योग एवं प्राणायाम विधि से समस्त प्रकार से भय तथा क्रोध से रहित कर सकते हैं। यदि हम नित्य इस प्राणायाम योग विधि को करें, हम हमेशा हमेशा के लिए हर तरह के भय और क्रोध से रहित हो जाते हैं और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव अपने आप होने लग जाता है। और अंत में क्या होता है कि हमें परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमें इस प्राणायाम विधि में लगे रहना चाहिए।

0: इच्छति। भगवान कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए बतलाते हैं कि मनुष्य दुखों से निवृत्ति एवं शांति लाभ कैसे प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी, दयालु एवं हितैषी मानकर मेरे भावना मृत में लीन होकर भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है, अर्थात मेरे को ही सर्वस्व मान लेता है। कहते हैं जितने भी यज्ञ तप हैं उनका भोक्ता भगवान ही है। कहते सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों का महेश्वर, सभी देवताओं, सभी लोकों का स्वामी भगवान है। सुहृद है, सुहृद का मतलब है सबके प्रति दयालु है। इस प्रकार जानकर यानी कि वो शांति को प्राप्त हो जाता है, सर्वस्व मान लेता है मेरे को। जब कोई व्यक्ति मेरे को सर्वस्व मान लेता है तो अपने आप ही शांति को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि माया के वशीभूत सभी जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं कि हमारे को शांति कैसे मिले। किंतु भगवत गीता के अंश में वर्णित शांति सूत्र को भी वो नहीं जानते। भगवत गीता में शांति सूत्र दिया है। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। भगवान ही सर्वस्व एवं प्रभु सत्ता है। यह मानकर एवं विश्वास करके भगवान कृष्ण को ही सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त हो जाती है और उसका मार्ग मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। हमने अपने जीवन की सभी जिम्मेवारियां हैं भगवान को सौंप देनी चाहिए। यही शांति प्राप्ति का परम सूत्र है। कृष्ण भावनामृत में आधुनिक योग पद्धति का अभ्यास भी स्वयं होता रहता है। अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास भी स्वयं होता रहता है, क्योंकि इसमें अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये सब कुछ नहीं होता। भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप हैं, क्योंकि इसी कर्म योग से ही पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। श्रोताओं, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आपने गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 26 से 29 तक की व्याख्या सुनी और श्रीमद् भगवद् गीता का 5वां अध्याय जो कि कर्म योग भगवान भावना भावित के नाम से है समापन होता है।
1: गीता संदेश कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय की श्लोक संख्या 26 से 29 तक की व्याख्या। व्याख्या प्रस्तुत कर रहे थे श्री सोमनाथ शर्मा। FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। शाम के 6:30 बजे हैं। आइए सुने किसान वाणी कार्यक्रम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई और
6: सरिता दैया की प्यार भरी
5: राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे वैज्ञानिक विधिता पुदीने की बिजाई पर, और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे पशुओं में प्रसूति बुखार के लक्षण और उसके उपचार पर। साथ ही सुनाऊंगे भाइयों ने एक भेंट वार्ता खेत बचाओ अभियान पर, और इसके अलावा भाइयों करवाऊंगे मनोरंजन, और जो दूसरे समसायिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। सरिता जी, जिस तरह आप जानो कि भाई खेत बचाओ अभियान, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी और ऊपर तक हमारे जो खेत की जोत है वो घटती जान लग रही है, जमीन कम होती जान लग रही है, तो ऐसे में हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो जमीन है, उस पर बहुत ज्यादा दबाव है, और साथ ही साथ हमारे जो खेत की भौतिक दशा है, रासायनिक दशा हमारी मिट्टी की, वो भी खराब होने लग रही है, और जो पानी का चोहा है, लेवल है, वो भी कम होता जान लग रहा है।
6: देखो विनोद जी, भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, उत्तर भारत में सारी खेती बाड़ी पे काम चल रहा है, जितने और भी हमारे उद्योग धंधे हैं वो भी खेती पर निर्भर कर रहे हैं।
5: बिल्कुल।
6: और खेती की तो है खेत में, जब उसमें खेत में उपजाऊपन नहीं होगा, हमारे पास खेत नहीं होगी और उसमें बढ़िया फसल नहीं होगी, तो फिर खेत बिना करेंगे क्या?
5: बिल्कुल।
6: इसके लिए खेत बचाने तो बहुत जरूरी है।
5: बिल्कुल। और सरिता जी, आपने जो जिक्र करा इतना बढ़िया की खेत बचाने इतने जरूरी है, तो क्यों ना भैया ने एक भेंट वार्ता सुनाऊं, और भेंट वार्ता का जो विषय हुआ खेत बचाओ अभियान, और इस विषय में जानकारी दी हमें डॉक्टर सरिता जी ने, जो कि जिला विस्तार विशेषज्ञ हैं सस्य विभाग विज्ञान विभाग कुरुक्षेत्र से। तो सुना भाई ने भेंट वार्ता। आज की बातचीत का विषय है खेत बचाओ अभियान, और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सरिता जी को। आप जिला विस्तार विशेषज्ञ हैं सस्य विज्ञान विभाग केवीके में। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
7: धन्यवाद।
5: डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय है कि खेत बचाओ अभियान, ये अभियान जो है क्या अभियान है, और इस अभियान का जो दायरा है वो कब तक है, किस समय से किस समय तक ये अभियान चलने वाला है?
7: जी, जो ये खेत बचाओ अभियान है, ये हमारे जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार है, इनके निर्देशानुसार 1 जून 2026 से 30 जून 2026 तक किया गया है। यानी कि अब ये जो हमारी कैंपेन है, अभियान है, ये चल रहा है।
5: जी।
7: और इसका जो प्रथम चरण था वो पिछले महीने यानी मई के महीने में किया गया था, जिसमें मेनली फोकस किया गया था, मेन ध्यान रखा गया था कि जो हमारे उर्वरक हैं, खाद हैं, उनका संतुलित रूप से उपयोग किया जा सके, किसान भाई उनको संतुलित तरीके से इस्तेमाल करें और अपनी अच्छी पैदावार लें।
5: जी साहब, बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं ना, क्योंकि ज्यादातर किसान भाई हैं वो हद से ज्यादा या अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं खादों का, तो वो नियंत्रित मात्रा में उसका प्रयोग करें।
7: जी।
5: और डॉक्टर साहब, इसका उद्देश्य क्या है खेत बचाओ अभियान का?
7: उद्देश्य जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, खेत बचाओ, यानी हमें हमारे खेत को, हमारे जो किसानी है, खेती है, हमारी मिट्टी है, जो धरती माता है, उसको बचाना है। और वो बचाने के लिए हमें क्या करना है, हमारे यहाँ जैसे हमारे जो माननीय कुलपति जी हैं प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज जी, उनके मार्गदर्शन में हमारे अलग अलग जो केवीके हैं पूरे हरियाणा में, सब जगह पे ये अभियान चलाया जा रहा है, और इसमें हम किसान भाइयों को जागरूक कर रहे हैं। वो जागरूक करने का उद्देश्य यही है कि किसान भाइयों को ये समझाया जा सके कि आप संतुलित रूप से खादों का उपयोग करें, जो वैज्ञानिक तरीके से तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल करें, ताकि आप अपनी अच्छी पैदावार भी लें, लागत कम रखें, उर्वरकों का सही संतुलित उपयोग करें, मिट्टी की गुणवत्ता और उपजाऊ शक्ति को बनाएं, और आगे चल के जो हमारे उत्पाद हैं जो निर्यात होते हैं बाहर विदेशों में, उनकी गुणवत्ता ऐसी हो कि हर जगह हमारे उत्पादों की डिमांड हो।
5: जी। डॉक्टर साहब जो है कि हमें खेत अपने बचाने हैं, तो खेत बचाने में जो सरकार का एक अभियान है कि कम से कम हमें खादों का इस्तेमाल करना है
7: जी।
5: तो कौन कौन सी तकनीक है, किसानों को किस तरह हम जागरूक करें कि कम से कम खाद का इस्तेमाल हमें किस तरह करना है, उसका अल्टरनेटिव क्या है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं?
7: ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। शुरू में मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो खादों का इस्तेमाल शुरू किया गया था उसका प्रयोजन क्या था। जब हरित क्रांति आई थी उस समय पे उन्नत किस्म के जो किस्में थी
5: जी
7: उनको आगे लाया गया था, क्योंकि उस समय हमारे देश की जनसंख्या के हिसाब से हमें अपने उत्पाद है उनकी मात्रा को बढ़ाने की जरूरत थी, यानी हमारा उत्पाद बढ़े ताकि सबका पेट भर सके अनाज से
5: जी।
7: लेकिन आज हम कहीं ना कहीं उस मात्रा तक पहुंच चुके हैं, हम सक्षम हैं उतना उत्पाद करने में,
5: आज हम आत्मनिर्भर
7: हो गए हैं। लेकिन अब हमें मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है, यानी क्वालिटी पर ध्यान देने की जरूरत है। और हमारी गुणवत्ता जो है उत्पाद की, या हम कहीं क्वालिटी अगर अच्छी बनानी है तो उसमें कम से कम रसायन अगर उत्पाद में होंगे उनके अंश, तो हमारा क्वालिटी प्रोड्यूस होगा, चाहे वो हमारे अनाज हो, चाहे वो हमारे दालें हो, चाहे वो हमारे फल हो, सब्जियां हो, उनको हम इस तरह से उत्पादन करें कि हमारी जो फसलें, जो हमारी चीजें आ रही हैं, जिन्हें हम खा रहे हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। साथ ही साथ आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे किसान भाई आजकल हर खेत में यूरिया डीएपी का अंधाधुंध मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं।
5: बिल्कुल डॉक्टर साहब,
7: जैसे अगर मैं छोटा सा उदाहरण दूं कि कहीं किसी खेत के लिए बताया गया किसी फसल के लिए कि आपको 3 कट्टे यूरिया इस्तेमाल करना है
5: जी।
7: तो एक किसान भाई जो चाह रहे थे कि मैं 3 कट्टे इस्तेमाल करूं, लेकिन क्योंकि पड़ोसी ने 4 कट्टे डाल दिए तो वो 5 कट्टे डालने की सोचते हैं।
5: बिल्कुल,
7: जबकि ये चीज गलत है,
5: प्रतिस्पर्धा है।
7: प्रतिस्पर्धा है, हालांकि जब यूरिया ज्यादा डलता है एक बार के लिए खेत हरा ज्यादा अच्छा दिखेगा, किसान भाई को लगता है कि मेरी फसल ज्यादा अच्छी है, परंतु उसके नकारात्मक प्रभाव जो है वो हमारी मिट्टी पे, हमारे पर्यावरण पे और हमारे स्वास्थ्य पर पड़ते हैं।
5: बिल्कुल डॉक्टर साहब,
7: तो इन सब चीजों को देखते हुए हम किसान भाइयों से अपील करते हैं कि यूरिया और डीएपी का कम मात्रा में प्रयोग करें, ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल, क्योंकि उर्वरकों की, पोषक तत्वों की पूर्ति हमें करनी है मिट्टी के लिए, तो उसके लिए आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं
5: जी।
7: या आप हरी खाद है जिसमें ढेंचा लगा सकते हैं, मूंग लगा सकते हैं, दलहनी फसलें लगा सकते हैं, या गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इस तरह की जो जैविक उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल करें ताकि हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरे
5: जी। डॉक्टर सरिता जी, इसके अलावा जो आपने बताया कि हरी खाद का इस्तेमाल करें, क्या फसल विविधीकरण भी इसमें कोई मदद करेगी?
7: बिल्कुल मदद करेगा। अगर हम अपने कुरुक्षेत्र जिले की बात करते हैं
5: जी,
7: तो इसमें हम देख के चलते हैं कि हमारे यहाँ जो फसल चक्र चलता है धान और गेहूं का चलता है, क्योंकि ये दोनों यहाँ की मुख्य फसलें हैं
5: जी।
7: अगर मैं ये कहूँ कि हमारा जो कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, लंबाला का जो एरिया है ये धान का कटोरा है, तो ये गलत नहीं होगा।
5: बिल्कुल डॉक्टर साहब,
7: लेकिन धान गेहूं लगाने से मिट्टी में बार बार जो सेम पोषक तत्व है उनकी कमी होती जाती है। इस बात को हम इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, हमें हर रोज यही कहा जाए कि आप एक ही तरह की सब्जी खाइए, या सिर्फ रोटी खाइए, या सिर्फ चावल खाइए, तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बाकी पोषक तत्वों की कमी
5: कर दे।
7: यही सेम चीज जो है मिट्टी के साथ हो रही है
5: जी।
7: जो पोषक तत्व किसी एक या दो फसल को उगाने के लिए चाहिए होते हैं, बार बार मिट्टी से उन्हीं का दोहन हो रहा है
5: जी।
7: और हमारे जो किसान भाई हैं, जो उम्र में काफी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो इस बात से सहमत होंगे कि उनके बचपन में जो उन्होंने मिट्टी का स्वास्थ्य देखा था, जो पैदावार होती थी, आज वो नहीं हो रही है। आज हर जगह हम जैसे किसान भाइयों से मिलते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो लगभग सभी किसान भाई ये बोलते हैं कि अब मिट्टी वैसी नहीं रह गई, पैदावार उतनी नहीं होती है। तो इसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि हम बार बार सेम फसल ले रहे हैं। अगर हम धान गेहूं के बीच में अन्य फसलें लें, जैसे किसान भाई अगर दलहनी फसल लेते हैं, मूंग लगा लिया, जुलाई में उड़द लगा सकते हैं, बीच में मटर लगा लिया, या फिर मक्का लगा दी, चारे वाले कोई और फसल लगा दी, सब्जियां लगा दी, तो इनसे जो एक बैलेंस होता है, जिसे हम संतुलन बोलते हैं, कि उर्वरकों के प्रयोग के बाद मिट्टी से पोषक तत्वों का दोहन होने के बाद जो मिट्टी में एक संतुलित मात्रा में पोषक तत्व होने थे वो रहेंगे
5: जी,
7: तो हमारी मिट्टी की यानी उपजाऊ शक्ति बनी
5: रहेगी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा क्या सिंचाई, जो हम खेत में पानी दे रहे हैं, उसका भी कोई इसमें
8: रोल है कि उससे भी हमारे खेतों के बचाव हो?
7: जी देखिए, जैसे बोलते हैं कि अति हर चीज की बुरी है,
8: हाँ।
7: यानी संतुलन हमें हर चीज में चाहिए, चाहे वो पर्यावरण में हो, चाहे वो मिट्टी में हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य में हो, खान पान में। तो इसी तरह से पानी के लिए भी, अगर हम पानी की बात करें, जो हमारा भूमिगत जल है वो जल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है।
8: बिल्कुल डॉक्टर साहब,
7: अभी हम बात करते हैं कि पानी का, जैसे देसी भाषा में किसान भाई समझते हैं कि चोआ कहाँ पे है, तो आज जब हम बात करते हैं किसी गांव में, बताते हैं जी 125 फुट तक गया, कहीं कह रहे 150 फुट तक चला गया, एक दो किसानों ने कहा कि 180 फुट तक भी चला गया। तो यानी हम पानी जो है उसको इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं कि वो पानी नीचे जा रहा है।
8: जी डॉक्टर साहब,
7: अब अगर हम बात करें कि पहले हमें नदियों से पानी मिल रहा था, कुओं से पानी मिल रहा था, अब उनमें भी पानी कम हो गया। उसका कारण यही है कि भूमिगत जल का स्तर जो है नीचे जा चुका है। हम अपने बचपन की बात करें, हमने हैंडपंप से पानी देखा।
8: बिल्कुल,
7: आज के समय में हम देखते हैं कि मार्केट में पानी मिल रहा है, बोतल में पानी आ रहा है।
8: बिल्कुल,
7: तो अगली आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए पानी कहाँ से आएगा?
8: जी।
7: इसलिए हमें जल को भी सही तरीके से इस्तेमाल करना है। जो तकनीकें हैं जिनमें जल संरक्षण हो सकता है, हम पानी को बचा सकते हैं, उनका इस्तेमाल करें। जैसे ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, मेड़ सही तरीके से बनाना, खेतों को अपने समतल बना के रखना। मान लीजिए अगर किसान भाई लेजर लैंड लेवलिंग कराते हैं, जिसे भाषा में बोलते कंप्यूटर कराना है, तो अगर किसान भाई अपने खेत में लगभग लगभग हर फसल में, हर साल नहीं तो दो तीन साल में अगर समतल

0: करवाने वाला काम करते हैं
1: जी।
0: तो मान के चलिए उनके पानी की इतनी अच्छी बचत हो सकती है कि जो खेत जो किला 5 से 6 घंटे में भरना था पानी से
1: जी।
0: वो 3 से 4 घंटे में भर जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो यानी पानी की बचत हो रही है
1: जी।
0: अब पानी हमारा जो एक ऐसी चीज है जिसे हम बना नहीं सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम बचा सकते हैं। इसी में ही एक हम बताते हैं कि जो धान की सीधी बिजाई है, इस चीज को भी हम बोलते हैं किसान भाइयों की आप धान की सीधी बिजाई की तरफ बढ़ें। इसमें आप पानी भी बचा सकते हैं, साथ ही साथ जो लेबर है मजदूरों की जरूरत वो इसमें नहीं होती, आप वो कॉस्ट भी बचा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हरियाणा सरकार की तरफ से जो किसान भाइयों को एक सब्सिडी दी जाती है, जब किसान भाई पनीरी वाला धान छोड़कर सीधी बिजाई के धान पे जाते हैं तो उनको प्रति एकड़ 4500 रुपए का जो है सहायता दी जाती है
1: जी।
0: तो ये भी एक अच्छी चीज है। साथ ही साथ जैसे अगर कोई किसान भाई पनीरी वाला धान छोड़ के उस खेत में कोई और फसल लगाते हैं, फसल विविधीकरण पे जाते हैं
1: जी।
0: तो उसमें भी उनको कुछ अनुदान दिया जाता है। तो ये चीजें जो है ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो किसान भाइयों को फायदा करती है। अब हम बोलते हैं कि किसान भाई की जो शुद्ध आय है वो कैसे बढ़े
1: जी।
0: एक तो हम कहते हैं कि उत्पादन बढ़े, तो उत्पादन बढ़ रहा है मतलब किसान भाई का मुनाफा बढ़ रहा है। पर अगर साथ के साथ हम उनकी लागत भी कम कर सकें तो इसमें दोहरा फायदा यानी शुद्ध लाभ वो बढ़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: और सारी चीजें जो हैं चाहे वो जल का संचयन करने के हिसाब से हो, जल संरक्षण के हिसाब से हो, खेत का ध्यान रखने के लिए हो, चाहे वो प्राकृतिक खेती की तरफ जाके हो, मेड़ ठीक से बनाएं, सही समय पे सही जो चाहे दवा इस्तेमाल करनी संतुलित रूप से करें, खाद इस्तेमाल करनी उसको संतुलित रूप से करें, तो ओवरऑल हम बात करते हैं शुद्ध लाभ किसान भाई का बढ़ता है।
1: यानी कि सही समय पे सही मात्रा में और सही खाद का हम प्रयोग करेंगे तो बचाव होगा। डॉक्टर सरिता जी, जो खेत बचाओ अभियान है इस पे आप अंत में क्या संदेश दोगे हमारे किसान भाइयों को?
0: मैं किसान भाइयों को संदेश ये देना चाहूंगी कि हम जो वैज्ञानिक हैं लगभग हर जिले में कोशिश कर रहे हैं किसान भाइयों तक पहुंचने की। कृषि विभाग की तरफ से भी इसमें काम किया जा रहा है। हमारे जो विस्तार शिक्षा निदेशक हैं डॉक्टर नरेश कौशिक जी, उनके दिशा निर्देश ये हम काम कर रहे हैं और किसान भाइयों तक हम पहुंचते हैं। उनको हम सारी जो सलाह है जो हमारी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की सिफारिश की गई बातें हैं वो उनको बताते हैं। तो हम किसान भाइयों से निवेदन करें कि आप इन तकनीकों को इन सलाह को अपनाएं, इनके हिसाब से अपनी खेती किसानी को सुधारें और निश्चित रूप से आप ये मानेंगे अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, इन चीजों को मान के चलते हैं, आप अपनी अच्छी पैदावार कर पाएंगे, अपने खेत को बचा पाएंगे, अपनी मिट्टी को बचा पाएंगे। और हम अगर ये कहें कि खेत अगर बचता है तो हमारा देश बचता है, किसान बचता है
1: जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सरिता जी, आपने खेत बचाओ अभियान पे हमारे किसान भाइयों को बड़ी बारीकी से सब बातें बताई हैं। उम्मीद है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो इससे लाभ उठाएंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: सरिता दहिया जी, ये तो हमने सुनी भेंट वार्ता और डॉक्टर सरिता जी ने बड़ी बारीकी से जो है किसान भाइयों को जानकारी दी कि हमने अपना खेत किस तरह बचाने हैं। तो उम्मीद है हमारे जो किसान भाई है जो कार्यक्रम सुन रहे हैं वो भी इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। और खेती बाड़ी में मौसम का भी बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका है और इसलिए भाई मौसम की जानकारी भी किसान भाइयों ने समय समय पर देना जरूरी है। तो आज का अधिकतम तापमान रहा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 24 डिग्री सेल्सियस और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 24 डिग्री सेल्सियस।
2: विनोद जी, देखो आपने श्रोता है जो कार्यक्रम सुने हैं
1: जी,
2: तो उन्हें कल की भी जानकारी दे दो ताकि वो कल भी तैयार रहे, भी उनके काम की बात बताई जाएगी।
1: बिल्कुल सरिता जी, और कल के जो कार्यक्रम के विषय है वो है हम चर्चा करेंगे कल अन्नदाता कार्यक्रम में फलदार वृक्षों में सूत्रकृमि रोग पहचान और रोकथाम के उपाय पर, और साथ ही भाइयों नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे मिर्च की बिजाई में सावधानी पर और जानकारी लेंगे प्राकृतिक खेती शुरू करने में सावधानियों पर।
2: तो विनोद जी देखो जी, आज जो चर्चा का विषय है हम उस पर चर्चा कर ले हैं कि भी पुदेने की वैज्ञानिक विधि से बिजाई।
1: हाँ,
2: तो पहले मेरी बात सुनो विनोद
1: जी,
2: देखो पुदीना एक औषधीय पौधा तो है ही है,
1: हाँ, वो
2: हमारे पेट खातर तो है ही, और स्वाद भी उसका निराला है, हर चीज में स्वाद आवे उसका।
1: हाँ,
2: उसके साथ साथ जो अपने सौंदर्य प्रसाधन है भाई, जैसे सेविंग क्रीम है, दंत मंजन है,
1: हाँ,
2: अपनी स्किन क्रीम है, इनमें बहुत जगह प्रयोग हुए है।
1: हाँ,
2: और एक अच्छा माउथ फ्रेशनर भी है पुदीना।
1: बिल्कुल जी,
2: तो उपयोग तो इसके हैं। हाँ। एक मतलब व्यवसायिक खेती कर सके हम पुदीने की।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो आप हमने बताओ भी इसकी खेती करण खातर सबसे पहले तो हमने भी कौन सी किस्म लगावे, इसकी किस्म भी होवे हैं और कौन सी बढ़िया होवे, कौन सी लानी चाहिए, थोड़ी सी जानकारी दो।
1: जी सरिता जी, आपने जो जिक्र करा कि पुदीने की खेती का, तो उन्नत किस्म तो अपनी जो हरियाणा की ज्यादातर जो स्थानीय किस्म है, जो अपने किसान भाई लगान ध्यान लगा रहे हैं, वही सारी जो किस्म बढ़िया किस्म मानी गई हैं। और किसान भाई ने जो खेत की तैयारी करनी है, तो खेत की तैयारी करने खातर जो है एक अच्छे जल निकास वाली जो जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मिट्टी है, वो इसमें सबसे बढ़िया रहो है।
2: यानी बालू रेत वाली थोड़ी सी बालू मिट्टी है वह जरूरी है।
1: और साथ में जो हम जुताई करें, तो मिट्टी जो पलटन वाला हल है उससे 2-3 बार जो खेत की बड़ी डाल जुताई कर दें, ताकि जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाए, और फिर भाईपाटा लगा के खेत ने छोटी छोटी क्यारिया में बांट लें।
2: जी।
1: और बात करें बिजाई की तरीके की, तो पुदीने की जो जड़ है, क्योंकि जड़ के माध्यम तक लग गए हैं, तो
2: यानी पुदीने की जड़ लाई जाए।
1: जी जी बिल्कुल
2: जी।
1: और इसमें 4-5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े ने जमीन के अंदर 3-4 सेंटीमीटर की गहराई पर 40-50 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियां हम लगा दें।
2: यानी हमने 4-5 सेंटीमीटर का टुकड़ा लेना है और वो 3-4 सेंटीमीटर जमीन में दबाना
1: बिल्कुल,
2: है बाहर, मतलब 1 सेंटीमीटर रहेगा।
1: हाँ बिल्कुल। और जो हमने दूरी रखनी वो 40-50 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है पंक्तियां के बीच
2: जी।
1: और जो ये कटी हुई जड़ है, उनके जो टुकड़े हैं वो गन्ने की तरह सीधे जो है वो सिरा मिलाकर जो है बिजाई करी जा सके हैं। और 1 एकड़ खातर हमने लगभग 100 किलो पुदीने की जो गांठ है वो हमने जरूरत पड़ेगी,
2: जरूरत पड़ेगी।
1: साथ ही जो पुदीने की जड़ है उसमें 7-8 दिन में जमाव होना शुरू हो जाए, और लगभग 1 महीने के बाद जो है इसमें पत्ती आनी शुरू हो जाए।
2: यानी वो 7-8 दिन में अपना पत्ती उगनी दिखने लग जाए।
1: जी बिल्कुल।
2: तो फिर इसमें पानी किस तरह सिंचाई करी जाएगी, पानी पूर्ण क्यों कर दिया जाएगा?
1: अगर पानी की बात करें तो पुदीने में पहली सिंचाई जो है बोने के तुरंत बाद किसान भाई जरूर कर दें, और उसके बाद लगभग 8-10 दिन के अंतराल पर सिंचाई इसमें कर दे रहे हैं।
2: अच्छा।
1: साथ ही ध्यान रखें कि फसल ना सूखा ना रखें, क्योंकि इसका जो है फसल पे बुरा असर पड़ेगा।
2: यानी नमी बनी रहनी जरूरी है,
1: खेत में नमी बनाकर रखनी जरूरी है इसमें।
2: अब देखो विनोद जी, आपने सिंचाई की बात करी, तो उसकी गेला कुछ खरपतवार भी उग जाएंगी, तो उन पर नियंत्रण भी तो जरूरी है।
1: सरिता जी आपने बढ़िया बात कही की हाँ बिल्कुल, सिंचाई जब हम खेत में कर रहे हैं तो साथ में खरपतवार की समस्या भी खेत में आवा है। तो पुदीने में शुरू के दिनों में तो खेत ने खरपतवार नियंत्रित करके रखा है, और साथ में करें निराई गुड़ाई समय समय पे काम कर दे रहा हूं, और पहली कटाई होने पर जो है खेत ने खरपतवार से मुक्त करके उसमें जो है उसका बात का खास ध्यान रखें।
2: विनोद जी देखो, हमने टाइम पर बो दी और अच्छी तरीके से बोई हुआ, पानी भी दे दिया और फिर उसमें खरपतवार वगैरह भी हटा दी है
1: जी।
2: तो फसल तो बढ़िया होएगी।
1: हाँ।
2: तो उस फसल ने काटने का क्या टाइम है, क्यों कर काटनी चाहिए, थोड़ा सा वो भी बता दो।
1: सरिता जी, जो हमारे किसान भाई जो पुदीने की फसल ले रहे हैं, तो पुदीने की जो पत्ती है उन्हें कच्ची अवस्था में काट लें और उनमें फूल नाण दे, साथ ही
2: हरी पत्तियां काटनी,
1: हरी पत्ती काटनी है। और पुदीने की जो कटाई है वो दिन के समय में किसान भाई जरूर करें, और अच्छे ढंग से खेती करने पर जो है 120-150 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से पुदीने की जो है हरी गुच्छियां किसान भाई ले सके हैं।
2: यानी खूब अच्छी इसमें
1: पैदावार हो जाएगी। और सरिता जी, हमारे जो श्रोता भाई हैं, किसान भाई हैं, बड़ी बात देख रहे हैं कि कोई लोकगीत तो सुनाया नहीं आज इनने।
2: बिल्कुल विनोद जी, देखो जानकारी तो जरूरी है।
1: हाँ।
2: उसके साथ साथ मनोरंजन भी उतना ही महत्व रखे हैं, तो आप मनोरंजन में भी एक गीत सुना दो।
1: और भाई सुनाऊंगे एक लोकगीत, लेकिन एक अंतराल के बाद।
3: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
4: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: ये तो सुना भाइयों ने फिल्मी लोकगीत और फिल्म थी चहल गिल्ला जागी। और इब करो भाइयों चर्चा आज की नसीहत के तहत पशुओं में प्रसूति बुखार के लक्षण और इसके उपचार पे।
1: जी विनोद जी, देखो जो नई ब्याई हुई गाय भैंस हुए हैं उनमें एक बीमारी देखने न मिले है कि उनका बुखार हो जाए।
0: बिल्कुल सही।
1: और वो कई बार उनका जानलेवा भी हो जाए। तो एक बार आप थोड़ा सा अच्छे से बता दो भी ये बुखार क्या हुआ है, किस में हुआ है।
0: सरिता जी, जो आपने बात करी भाई, जो नए ब्याह जो पशु है हमारे गाय भैंस है, तो उनमें ये रोग जो है खून में कैल्शियम की मात्रा कम होने के कारण हो जाए। और खास तौर पर जब यह कमी है वो दूध में कैल्शियम की मात्रा जब ज्यादा निकल जाए तो उस कारण जो है दुग्ध जवर के प्रति जो है या जो दुग्ध जवर की जो समस्या है या हमारे जानवरों में देखी जावे है। और यो रोग जो है ज्यादातर जो कतिपय नस्ल की जो पशुधन है हमारा उसमें ज्यादा देखी जावे है और पहले ब्यात में या बहुत कम ही पशुओं में आवे है समस्या। लेकिन जब दूसरा ब्यात आ जाए तो यह प्रकोप थोड़ा सा बढ़ जाए है और तीसरे और चौथे ब्यात में तो जब दूध की मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये रोग ज्यादा हो जाए।
1: यानी आपके कहने का मतलब यो है कि भी जो पहली बार ब्याह है उसमें यो रोग कम मिलेगा या ना भी हो।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आपने इसका कारण बताया कैल्शियम की कमी।
0: कैल्शियम की।
1: अब जैसे जैसे वो ब्याह बढ़ेंगे, उम्र बढ़ेगी, तो उसमें कैल्शियम की कमी तो अप होती चली जाएगी और उसकी कमी से यो बुखार हो है।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके थोड़े से आपने भी कारण भी बता दिया कैल्शियम की कमी से। भी लक्षण कैसे पता चलेगा भाई अब नहीं इस बीमारी का शिकार है, के लक्षण दिखाई देंगे
0: सरिता जी? जो

0: जो ऊपर नीचे होना चाहिए,
1: यानी जो आप सबसे जो श्यामी लक्षण दिखेगा वो कोख ऊपर नीचे होगी
0: बिल्कुल। और साथ ही साथ जो है दूध की मात्रा हमारे जो पशु है उसमें कम हो जाएगी और पशु जो है जुगाड़ी करना बंद कर जाएगा,
1: यानी कि सुस्त पड़ जाएगा, जुगाड़ी जुगाड़ी बंद कर देगा। आपने न्यू नहीं कहा अगर गोड्डे ढीले छोड़ दिए तो पशुआ में दिखना नहीं लगेगा,
0: आंख जो है बंद रहेंगी, आंख नहीं खुलेगी इसकी, और जो पशु है वो जो है उसमें जो उसका मुंह है वो भी शुष्क हो जाएगा। और खास तौर पर जो है पशु जब है वो बैठा रहेगा उठने की हिम्मत उसमें होगी नहीं, तो ये जो है खास तौर पर लक्षण है जो इसमें हमने देखने मिलेंगे।
1: देखो आपने ये लक्षण तो बता दिए, इनका इलाज भी जरूरी है
0: बिल्कुल,
1: तो भी इसका इलाज रोकथाम क्यों कर करी जा सके?
0: सरिता जी जो हमारे जगह पशुधन में ये लक्षण दिखे तो जो ब्याणत है पहला यदि पशु को जो है गेहूं का छाणस
1: यानी जो बूर होया
0: हाँ, बूर है बिल्कुल, वो 6-7 दिन खातर जो है जरूर खिलावे और ब्याण के बाद जो है इस रोग के होने की जो संभावना उससे कम हो जाएगी। साथ ही ब्याण के बाद जो है पशु का पूरा पूरा ध्यान रखे और रोग का कोई भी लक्षण अगर दिखाई देवे तो तुरंत जो है अपने आसपास अपने गांव में जो भी कोई पशु चिकित्सक है उसके द्वारा जरूर लेकर जाओ।
1: यानी आपने शुरुआत तो पहले कर देनी है 6-7 दिन पहले उससे वो छाणस खिलानी है,
0: कैल्शियम की मात्रा
1: फिर भी उसमें आपके लक्षण है बीमार है पशु तो डॉक्टर ने जरूर बुलाना
0: बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ जो है जो बीमार गाय या भैंस है उसके ठीक होने के 12 घंटे बाद तक जो है उसने उसका दूध ना निकाला है और ना ही जो है 2-3 दिन तक उसके थना दूध जो है खाली रहना दे,
1: यानी दूध काट जब उसमें थोड़ा सा दूध छोड़ दे बिल्कुल निचोड़ने नहीं,
0: हाँ निचोड़ने नहीं है। और पशु जो धन है हमारा उसने नर्म और पौष्टिक जो आसानी तक जमा वाला जो खाना है वो जरूर दे रहे हैं ताकि उसकी सेहत जो है दोबारा बढ़ सके। तो ये तो करी चर्चा पशुओं में प्रसूति बुखार के लक्षण और उसके उपचार पर। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: पुतला बोल रहा
2: है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो पहली वाली बात कहाँ,
3: परम तो सब नहीं डाले
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई मैं भी आज तो जल्दी खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत

अभी अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब होगा भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: हमने कहा कार्यक्रम थारी पसंद, और कार्यक्रम थारी पसंद में जो हमारे श्रोता भाई हैं वो अपने संदेश भेजे हैं और अपनी फरमाइश की जो अपनी जो फरमाइश भी रखे हैं, तो हम कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों के जो संदेश है वो कार्यक्रम में शामिल करें और उनकी फरमाइश भी सुनावें। तो सरिता जी,
1: विनोद जी, देखो जी। आज का जो पहला संदेश है वो गांव दहांगला से है और इन जो भाई हैं, राम राम करिए गिरधारी जी ते भाई रिसाला ते विनोद से और वीरेंद्र जी से, और ये जो संदेश भेजने वाले जो हमारे श्रोता है वो है मांगे राम सैनी जी, और इन्होंने नाम लिखवाए है जीत राम सैनी, नवीस सैनी, देवान सैनी, और इन फरमाइश करिए कोई बढ़िया सा भजन सुना दो।
0: इनकी फरमाइश पर सुनाओ एक रागनी
1: जी।
2: रनु बोला लाड चावी मैं मिल गए, मन इब के पुछ

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुनिए सारे बाण भाइया ने विनोद भाई और
1: सरिता दैया की प्यार भरी
0: राम राम। भाइयों आज है दिन वीरवार और दिन वीरवार

आखे बोले साए जब घर जाले कद्दे भी नुक है कोना आदे वर भोजने

कुन बेटी एक सलाह देने दुखी होन्या

ഏറെക്കാമ കരണമ്മേ तने बाप बराबर समझू था मेरा नहीं जग।

0: ये तो सुनी भजन रागणी और गायक कलाकार थे वेद प्रकाश कौशिक।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
3: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। SIDS और जलवायु परिवर्तन, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। छोटे द्वीप वाले विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से पैदा हुई एक्स्ट्रा गर्मी का 90% हिस्सा महासागरों में सोख लिया है। इस गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। जिन द्वीप देशों में ज्यादा लोग रहते हैं और जो कम विकसित हैं, वे सबसे बड़े खतरे में हैं। उनकी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम सीधा प्रभावित हो रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ने और तेज ट्रॉपिकल तूफानों से तटीय इलाकों में लहरों का तूफान, तटीय कटाव, खरे पानी का घुसना, फसल खराब होना और पानी की कमी हो जाती है। कुछ द्वीप तो निर्जन भी हो सकते हैं। यह एक दिलचस्प तथ्य है। किरीबा, मालदीव्स और वानुआतू जैसे एशिया पैसिफिक के द्वीप देश दुनिया के सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों में गिने जाते हैं।
0: और भाइयों, इब करें चर्चा कृषि में रसायनों के सुरक्षित उपयोग पे। सरिता जी,
4: जी विनोद जी,
0: जिस श्रम जी कर रहे थे ना, खेत बचाओ अभियान।
4: बिल्कुल।
0: तो खेत अगर हमने बचाने हैं तो हमने जो हमारे जो खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाले जो रसायन हैं उनका भी हमने सुरक्षित उपयोग करना बहुत जरूरी है।
4: देखो विनोद जी, देखो कि अच्छी फसल लेनी है तो एक सीमित मात्रा में रसायन प्रयोग करने तो जरूरी है।
0: बिल्कुल।
4: लेकिन उनका एक सुरक्षित तरीके से क्यों प्रयोग करा जाए वो आज चर्चा कर ले हैं।
0: हाँ, और जो खेती बाड़ी कर रहे हैं तो हमने जब रसायन का इस्तेमाल करना है तो ध्यान रखा कि सही कीटनाशी की उचित मात्रा हमने लेनी है और सही तरह से उसने गोल कर, यानी कि जो निर्धारित मात्रा उसकी उतनी ही हमने मात्रा लेकर उसका गोल तैयार करना,
4: यानी कि ना तो गणी लेनी ना कम लेनी। गणी लेवेंगे वह फसल ने नुकसान
0: करेगी
4: और कम रहेगी तो फायदा नहीं करेगी।
0: बिल्कुल।
4: और लिमिट मतलब जो निश्चित है वही लेनी
0: जी। हाँ, क्योंकि अगर हम जरूरत ज्यादा लेंगे तो उसमें भी किसान पर आर्थिक बोझ पड़ेगा।
4: बिल्कुल।
0: और साथ में किसान भाइयों ने ध्यान रखना कि छिड़काव करते समय हवा की गति और उसकी दिशा का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि जो आसपास की जो दूसरी फसल है या जो हमारे जानवर हैं, मधुमक्खी हैं, उनकी भी सुरक्षा का हमने ध्यान रखना है।
4: बिल्कुल। और एक मुझे जिस साइड हवा का बाव है उस हाँ। तरीके से अपने शुरुआत करनी।
0: बिल्कुल।
4: और विनोद जी, मन न्यू लागे है ये सारी शुरुआत करने से पहले अपना बचाव जरूरी
0: हाँ,
4: है। अपना जिस बंदे ने छिड़काव करना है भी ऐसे कपड़े पहनने, सारा शरीर कवर हो जा
0: जी,
4: और भी हाथा में दस्ताने पहन ले, आंखा पे चश्मा लगा ले और जो पैरा में जूते वगैरह, मतलब अपना बचाव पहले जरूरी
0: है, क्योंकि रसायन है और जहरीला है, तो अपना बचाव करना तो बहुत जरूरी है कि हम अपना बचाव करेंगे तो ही जो है हम खेती बाड़ी सही हाँ कम कर पाऊंगे। और साथ में जो है ध्यान रखें कि जब बारिश का अगर मौसम हो रहा है या संभावना है बारिश की, तो उस समय छिड़काव ना करें,
4: क्योंकि अगर बारिश आपने छिड़काव कर दिया और बारिश हो गई सारा बह जाएगा।
0: बिल्कुल, दो जगह सारा फसल पत है। और साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं छोटे, उनके आसपास भी हमने जो है कृषि के जो ये हमारे रसायन है इनका डब्बा है या इनके यंत्र है वो नहीं रखने हैं,
4: पहुंच से दूर रखना,
0: उनकी पहुंच से दूर रखने हैं। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना कि जो यंत्र हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो यंत्र में कोई लीक ना हो, कोई उसमें जो है छेद ना हो, ताकि वो दवाई जो हो टपक टपक कर सारी खराब ना चली जावे।
4: इसके खातर एक बार उस यंत्र में पानी डालकर स्प्रे करके देख ले भी, यो ठीक ठाक हाँ, चल रहा
0: है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसमें कोई उसकी जो नली उसमें कुछ जम ना गया हो कि वो आगे काम में ना करे, उसमें हमने घोड़ भी बना लिया।
4: बिल्कुल,
0: तो ये बात हमने ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ जो हमारा स्प्रे पंप है उसकी नोजल में कोई चीज फंस जाए तो उसके मुंह ने भी जो है अच्छी तरह से खोलना है, लेकिन ध्यान रखना कि अपने मुंह तक कई बार हमको अपने मुंह में डालकर खोलना है।
4: कई बार क्या करेंगे, मुंह तक फूंक मार कर देखे बहुत गलत बात है, बहुत नुकसान हो।
0: जल्दबाजी में हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि यह गलती ना कर दें। और साथ ही साथ जो हमारे जो कृषि रसायनों का प्रयोग अगर हम करने जा रहे हैं तो अकेले ना करें।
4: हाँ, मतलब आसपास कोई ना कोई हो, खुदा ना खास्ता या कुछ इसी अनहोनी हो जाए तो कम से कम कोई संभालने तो हो।
0: बिल्कुल है। और साथ ही साथ जो है रसायन का भी हमने जो है थोड़ी सी मात्रा में अगर शरीर के किसी भाग पे या हमारे कपड़े हैं उन पर छू जाए तो तुरंत जो है हमने नहाना भी है, अपने जो कपड़े हैं वो भी हमने धोने हैं, इस बात का भी हमने ध्यान रखना है।
4: यानी स्प्रे कर काम ना घर ना जाने से पहले अपने कपड़े धो धाकर ना कर जब जाना है
0: हाँ, तब जाना,
4: आपके संपर्क में कोई दूसरा भी ना आवे।
0: बिल्कुल। और साथ ही साथ हमने ध्यान रखना कि जो डिब्बे हैं, बोतल है या जो पैकेट है उस पर जो लगे लेबल है उस पर हमने जो शाकनाशी या जो कीटनाशी के प्रयोग की जो वैधता है उसकी जो तारीख है एक्सपायरी डेट हम कहते हैं उसका भी हमने ध्यान रखना है कि वो जो हम जांच लें कि जो एक्सपायरी डेट तो नहीं उसकी जो है डेट तो नहीं होगी है। और साथ ही जितनी मात्रा उस पर लिखी गई है लेबल पर उतनी मात्रा का हमने इस्तेमाल करना है।
4: जी यानी जी आप डेट देखो नहीं और सारा हाँ, काम करिए पता चला हुआ तो एक्सपायर हो रही थी
0: हाँ,
4: तो इसलिए पहले ही देख लो।
0: बिल्कुल, अपने पहले जो है उसने एक बार जांच लें उसके बाद फिर हम छिड़काव करें। साथ ही साथ सरिता जी जो है कृषि रसायन है उनके प्रयोग में जो है शांत और साफ मौसम जरूर होना चाहिए। हवा की गति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम ही रहे तो बढ़िया है। बारिश का मौसम का भी ध्यान रखें, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो जो छिड़काव हम कर रहे हैं तो हमारी फसल पर वो फायदा दे होगा।
4: जी।
0: साथ ही छिड़काव करने वाली जो जगह है उसके आसपास जो है खाने पीने की वस्तुएं वो है उनका भी हमने ध्यान रखना है कि वो ना हो और खाली पेट छिड़काव ना करें क्योंकि इससे जो हमारे कृषि रसायन है उनका जो हमारे शरीर पर प्रभाव है वो ज्यादा देखने मिला है। तो खाना खाकर अच्छी तरह पेट भराओ तभी काम हम करें।
4: जी।
0: साथ ही साथ जो शाकनाशी या कीटनाशी जो है उसको पानी में जो हाथ ना डालें या जो हम सीधा कई बार करेंगे अपने हाथ तक गोड़ दें उसने तो वो गलती ना करें। डंडा है कुछ लेकर
4: हाँ,
0: तो वो करके हम उसका घोड़ बनावे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये तो करी हमने चर्चा कृषि रसायनों के सुरक्षित उपयोग पे।
4: जी।
0: और क्योंकि सरिता जी का आज कार्यक्रम है थारी पसंद तो थारी पसंद में भैया ने संदेश भेजे हैं तो और कौन कौन से संदेश आए हैं?
4: देखो जो अगला संदेश आया है यो गांव रामसावाड़ा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आया है
0: जी।
4: और ये संदेश भेजने वाले श्रोता हैं ब्रजपाल, श्यामवीर, पूजा, मोनी, सोनम, उन्ती और उत्सव
0: जी।
4: और इन गीत सुनना चाहा है मेरा नौ डंडी का बीजना
0: जी। और सरिता जी एक और जो है हमारे पास संदेश आया है वो आया है गांव जगुड़ी जिला यमुनानगर से और लिखने वाले भाई हैं चौधरी रणधीर सिंह बांगड़, गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम, वीरेन, मनराज और इनके परिवार के सदस्यगण।
4: और एक संदेश गांव उगाड़ा जिला अम्बाड़ा से आया है और भेजने वाले हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सदस्य।
0: और एक संदेश आया है गांव तेजामोड़ी जिला अम्बाड़ा से और लिखने वाले भाई हैं बंसीलाल संधु, कमल, प्रदीप संधु, कबीर और इनके परिवार के सदस्यगण। और इनकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनाओ भाई फिल्मी लोक गीत।

0: सरिता जी अगला संदेश।
1: विनोद जी, जो अगला संदेश है वो खुर्जा उत्तर प्रदेश से है और भेजने वाले हैं तिलक राज अरोड़ा जी, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा और बराड़ा योगी भोला बराड़ा जिला अम्बाड़ा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, गुरकीरत, मन्नत, गुरशब्द सिंह राहुल और
0: इनकी मुली जली फरमाइश पर सुनाओ भाई ना ये लोग।

0: ये तो सुना भैया, लोकगीत और फिल्म थी लीलो चमन।
1: विनोद जी, एक संदेश और आ रहा है हमारे पास, और ये है राजीव कुमार विवेक रितेश, और ये बोल रहे हैं भी गीत सुना दो हमने, एक हरियाणवी फिल्म का।

0: और इसी फिल्मी लोकगीत के साथ आज के ग्राम संसार कार्यक्रम का समय यहीं तक, और इसी के साथ अपने भाई विनोद और
1: सरिता दैया की
0: राम राम, राम।

अभी आप सुने थे ग्राम संचार कार्यक्रम आकाशवाणी का, ये कुरुक्षेत्र केंद्र है एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ शाम के 7:30। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जय जवान।

जय जवान कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को प्रदीप का नमस्कार। सैनिक भाइयों, आज इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। वो कहते हैं ना कि सरहदों पर जो जागते हैं तभी हमारे घरों में सवेरा होता है। जो देश के लिए जीते हैं उन्हीं के कारण हमारे देश का तिरंगा लहराता है हर समय। आज का ये कार्यक्रम उन वीर सैनिकों को समर्पित है जो हर मौसम, हर चुनौती और हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। भारत की मिट्टी में वीरता की ऐसी खुशबू है दोस्तों, जो हर भारतीय के मन में देशभक्ति का भाव जगाती है। हमारे सैनिक न केवल सीमाओं की सुरक्षा करते हैं बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और संकट के समय भी देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। ऐसी ही भावनाओं के साथ हम सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

जी हाँ सैनिक भाइयों, ये गीत बहुत शानदार है। ये गाना हमें अपने देश की विविधता, संस्कृति और एकता की याद दिलाता है। सैनिक साथियों, जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया उसका कर चुकाना आसान नहीं। देशभक्ति केवल शब्द नहीं, ये जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। हमारे जवान अपने परिवारों से दूर रहकर देश की सुरक्षा करते हैं। उनका त्याग और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है। आइए अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, जो भारत की महान संस्कृति और पवित्र नदियों के प्रति सम्मान का भाव जगाता है।

0: अब हम तो क्या सारी
1: मंगल भवन मंगलहारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: दादी की कहानियां, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
4: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
5: दोस्तों, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय जवान। श्रोताओं, सीमा पर सरहदों पर डटा हुआ सैनिक जब तिरंगे को सलाम करते हैं ना, तब पूरा भारत उन पर गर्व करता है। देश के विकास और सुरक्षा में युवाओं ने जितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो सर्वोपरि है। आज का भारत आत्मनिर्भरता, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है और इसमें हमारे जवानों का, हमारे युवाओं का योगदान अमूल्य है। दोस्तों, अब समय है एक ऐसे गीत का जिसने हाल के वर्षों में देशवासियों के दिलों को छुआ है। ये गाना समर्पण प्रेम और अपनत्व की भावना को सुंदर ढंग से व्यक्त करता है।

दोस्तों, गीतों का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है, लेकिन देश प्रेम की भावना हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहनी चाहिए, क्योंकि कहा भी है कि वतन की आन में जीना, वतन की शान में मरना, यही संदेश देते हैं हमारे वीर जवान। देश के सभी सैनिक और उनके परिवारों को हमारा सादर नमन। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का जय जवान कार्यक्रम समाप्त करने के अपने दोस्त प्रदीप को दीजिए इजाजत।

आज के कार्यक्रम में आपने दिल जले देश के जिस देश में गंगा बहती है और परमाणु फिल्मों के गाने सुने।

0: आप जय जवान कार्यक्रम सुन रहे थे। एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय शाम के 7:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं AIR FM कुरुक्षेत्रा और अब समय हो गया है ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार का।

0: करो।
1: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
2: नमस्कार, मैं मीनू ऑर्गेन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में आपका स्वागत करती हूं। ऑर्गेन इंडिया दिल्ली की एनजीओ पराशर फाउंडेशन की पहल है जो अंगदान, उत्तक दान और देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करती है। आज के कार्यक्रम में हम अंगदान से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं।
3: आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार, मैं हूँ सागर। इस प्रोग्राम को आप लोगों तक पहुँचाने का श्रेय जाता है ऑर्गन इंडिया को। आज हमारे साथ हैं अभिषेक बिट्टू जी, बीकानेर राजस्थान के रहने वाले हैं। इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और ये हुआ था 2019 में। अभिषेक जी, स्वागत है आपका।
4: थैंक यू भैया।
3: अभिषेक, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, अपना थोड़ा सा ये बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पर बड़े हुए, कहाँ पर पढ़ाई की?
4: मेरा जन्म जो है बीकानेर के एक गांव के अंदर हुआ, यात्रा, और मेरी जो अर्ली एजुकेशन है 7th-6th class तक वहीं हुई। उसके बाद मैं प्रिंस एजुकेशन हब शिक्कर में पढ़ा, और फिर 9th class के अंदर जब मैं प्रिंस में पढ़ रहा था तब मुझे एपिलेप्सी का अटैक आया था, सीजर्स आने स्टार्ट हो गए। तो फिर मैं वापस अपने होम टाउन आ गया और यहीं से पढ़ाई की बीकानेर से ही, और यहीं से ग्रेजुएशन, सभी पढ़ाई यहीं से ही चल रही है। और फिर 2019 के अंदर मुझे पता चला कि दोनों किडनी मेरी है जो फेल हो चुकी है।
3: क्या आप स्पोर्ट्स में ज्यादा मीनो इंक्लाइंड थे या किस तरह का बचपन रहा?
4: हाँ, स्पोर्ट्स में मैं इंक्लाइंड था, उसके लिए डांट भी पड़ती थी क्योंकि मैं स्कूल से आने के बाद अपनी ड्रेसेस खोलता नहीं था और सीधे बैग पे रखा और सीधे क्रिकेट वाले मैदान में चला जाता था खेलने के लिए। स्पोर्ट्स डेली, छुट्टियां हैं तो स्पोर्ट्स खेलना है, स्कूल के बाद स्पोर्ट्स खेलना है, अभी भी 5:30 होते ही घूमने चला जाता हूँ।
3: मैं 2019 से पहले का जीवन इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी ऐसी गलती है जो आपने करी हो या बचपन में आपसे हो गई हो, ताकि बाकी लोग वो गलती ना करें, इसके लिए मैं ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बताइए ट्रांसप्लांट के पहले के जीवन के बारे में, अगर कोई गलती आप बता सके कि हाँ मुझसे ही गलती हुई।
4: गलती तो अब पता नहीं, मुझे लगता है कि मुझे तो सीजर्स आना चालू हुए थे जब मैं सिक्कर प्रिंस स्कूल में था, तो मैं बास्केटबॉल खेल रहा था, एक बार मुझे याद है गिरा था, हो सकता है उस वजह से मेरे क्लोट हो गया था ब्रेन के अंदर।
3: ओके।
4: उस वजह से मुझे सीजर्स आने लग गए थे। उसके बाद से मेरी लाइफ थोड़ी लिमिटेड भी हो गई थी, मतलब घर पे ही, बाहर ज्यादा जाना नहीं, क्योंकि सीजर्स आते हैं तो एक डर रहता है, आप बाइक नहीं चला सकते, आप गाड़ी नहीं चला सकते, या बाहर अकेले ज्यादा जा नहीं सकते। और उसके बाद 6 साल बाद अब पता नहीं क्यों बट किडनी फेलियर हो गया, हो सकता है ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता हो, मे बी द टैबलेट्स उनके साइड इफेक्ट्स,
3: ठीक है,
4: पता नहीं।
3: हाँ। और ये सीजर की आपका इलाज कहाँ से चल रहा था?
4: यही बीकानेर से ही मेरा इलाज चल रहा था।
3: और उसमें आराम मिला था आपको?
4: हाँ, आराम, कुछ आराम था, लेकिन कंटिन्यू अभी तक सीजर से मैं दिक्कतें हैं अभी तक, मतलब कंटिन्यू अभी टैबलेट चल रही है, 10 साल हो गए सीजर, अगर टैबलेट कम की जाए तो वापिस आ जाता है और कंटिन्यूटी है सीजर्स में।
3: थोड़ा सा बताइए 2019 में आपकी उम्र क्या थी और आप क्या करते थे उस टाइम?
4: उस समय मैंने 12th कर ली थी और मैं 1st year के अंदर आ गया था, मैं DLED कर रहा था, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन।
3: ठीक है, और ये बीकानेर की बात हो रही है?
4: नहीं नहीं, मेरा कॉलेज था गंगानगर के अंदर,
3: श्री गंगानगर,
4: और वहाँ मैं दे रहा था, 1st year के मेरे एग्जाम्स थे। तो उस दौरान क्या है कि मतलब उल्टी आना, आंखों से दिखाई नहीं देना, मतलब एग्जाम्स दे रहा हूँ तो वो धुंधले से हो जाते थे अक्सर। फिर मैंने सोचा आंख का होगा, तो आंख का चेक करवाया तो वो नहीं था। फिर 10-11 पेपर थे जो मैंने जैसे तैसे, मुझे पहले से सीजर थे, मुझे डर लगा कि कुछ ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तो एग्जाम में वो मैंने एक लापरवाही की 10-11 दिन कि मैंने एग्जाम्स के बाद ही पूरा चेकअप करवाया। फिर फिजिशियंस को चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि आपके ब्लड प्रेशर ज्यादा आ रहा है, क्रिएटिनिन वगैरह की जाँच करो और सोनोग्राफी करो।
3: ठीक है, उस टाइम पर सिम्टम बताएंगे आप एग्जैक्टली कि क्या क्या सिम्टम्स आपको आए थे? जैसे आपने कहा कि आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था।
4: अंधेरा छाता नहीं था, जैसे कि अपन अक्सर पढ़ रहे हैं तो वो अक्सर एक दूसरे से मतलब मिल जाते थे, साफ से पढ़ा नहीं जा रहा था, उल्टियां होती थी, मुझे पैर दर्द करने लग गए थे।
3: ठीक है, उसके बाद आपने दिखाया कहाँ पर?
4: यहीं पर, फिजिशियन है अनिल सोप की सर, उनको दिखाया। पहले मैंने किसी मेडिकल पर चेकअप करवाया था क्योंकि भयंकर सर दर्द हो रहा था और मैं उससे जेला नहीं जा रहा था, तो मैंने मेडिकल वालों को दिखाया था। उन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा आ रहा है, सुबह होते ही आप गलती मत करो और किसी फिजिशियन को चेक करो। यहीं बीकानेर में मैंने डॉक्टर अनिल सोपती सर है फिजिशियन, उनसे चेक करवाया। उन्होंने देखते ही बता दिया कि प्रॉब्लम ये है, आप ये जांच करवा दो।
3: ठीक है, उसके बाद फिर आपने सारी जांचें कराई तो उसके बाद क्या फाइंडिंग आई कि आपकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है?
4: दोनों किडनी जो है मेरी सिकुड़ चुकी थी, स्मॉलर इन साइज हो चुकी थी, मतलब इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं था, वो सिकुड़ चुकी थी, हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या ऐसा कुछ।
3: अब मुझे बताइए कि जब ये रिजल्ट आपके सामने आया, जब परिणाम आपके सामने थे कि किडनी काम नहीं कर रही है, सिकुड़ चुकी है दोनों आपकी, तो आपके घर का माहौल कैसा था, क्या सब बातें हो रही थी, क्या कुछ चल रहा था वहाँ पे?
4: वो टेंस भी होंगे बट मुझे क्या है, पूरा सही से बताऊं तो सही से याद नहीं है, क्योंकि मैं उस हालत में पहुंच सका था कि वो लास्ट स्टेज टाइप हो गया था।
3: आमतौर पे हम ये गलती करते हैं कि हमारी बॉडी कोई संकेत हमें दे रही होती है और हम उसको दबाने की पूरी कोशिश करते हैं।
4: हाँ, मुझे लगता है मेरी एक साल पहले ही ये प्रॉब्लम आने लग गई थी, लेकिन मैंने ये फल फ्रूट जूस ट्राई किया लेकिन वेट गेन हो ही नहीं रहा था।
3: अच्छा, तो एक साल पहले से आपका वेट लॉस होना शुरू हो गया था?
4: हाँ, वेट लॉस में एकदम दुबला पतला सा हो गया था, मतलब पता नहीं चल रहा था कि हो सकता है नॉर्मली वेट गेन नहीं हो रहा था, ट्राई पूरा किया था। फिर अपने इतने मतलब वेल एजुकेटेड मेडिकली है नहीं इंडिया में अभी, तो सोचते हैं कि हो सकता है कि पढ़ाई की वजह से, पढ़ाई कर रहा है तो वीक है, ये मेडिकली अभी तक अवेयर है नहीं है।
3: ये बिल्कुल सही बात है, और आमतौर पे जो एक माइंडसेट होता है, जो अप्रोच होती है हमारी, वो यही होती है कि जितना हो सकता है डॉक्टर को अवॉइड करें या जांचें ना ही करवानी पड़े, अपने लेवल पर ही चीजों को ठीक कर ले। हम डरते भी हैं कहीं ना कहीं, हमें डर लगता है कि कुछ अगर गलत निकल आया तो फिर क्या होगा। हाँ, और इसीलिए हम ये शो चला रहे हैं अभिषेक जी, हमारी कोशिश यहाँ पर यही है कि जितना हो सकता है लोगों को बताएं कि एक छोटी सी गलती हमारी हमें कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। अच्छा, अगर अब मैं अभी बात करना चाहूँ, एक साल पहले जो आपके संकेत देने शुरू किए थे आपकी बॉडी ने, आपका जो वजन गिर रहा था, तो आपको क्या लगता है अगर वो एक साल पहले आपने जांच करवा ली होती तो शायद वक्त रहते बचाया जा सकता था किडनीज को?
4: हो सकता है बचाया जा सकता था, अगर इतनी सिकुड़ी हुई नहीं थी या एक किडनी जो भी है बचाया जा सकता था।
3: अभी तक की आपकी पूरी कहानी से अगर हम सीखे तो ये है कि अगर कोई चीज है तो समय रहते उसको हमें जो है गौर करना चाहिए और अपनी बॉडी के हमें बात सुननी चाहिए कि हमारी बॉडी क्या कह रही है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना है अभिषेक के बारे में, इनके बचपन के बारे में बात करी, इनके उस फेज के बारे में जाना कि कैसे वहां तक पहुंचे और क्या इनसे गलती हुई। अब तो मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि अगर आपके परिवार से आपको किडनी ना मिलती तो आपने देखा था कि क्या क्या विकल्प है बाजार में?
4: डायलिसिस है।
3: ठीक है,
4: क्योंकि विकल्प तो मुझे नहीं पता, एक डायलिसिस का ही पता है अभी तक, वही जान पाया, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई विकल्प है।
3: तो किडनी वक्त के बाद हमें ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है और इसके लिए इकलौता विकल्प ही बचता है कि कोई डोनर उठ के सामने आए और वो डोनेट करे अपने ऑर्गन।
4: या तो आपकी फैमिली से कोई हो या फिर आप डोनर लिस्ट नाम लिखवाओ, जब आपका लग काम करेगा कोई डोनर मिल जाए, और इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतनी जागरूकता है नहीं, अवेयरनेस नहीं है ऑर्गन डोनेशन के बारे में।
3: मैं वही जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यही एक हमारा उद्देश्य है कि जितना हो सकता है हम उतना लोगों को जागरूक करें। नया जीवन आपको मिला है एक तरह से, तो अभी कैसा लगता है और आपकी दादी कैसी हैं वो बताइए थोड़ा सा।
4: मेरे दादी जी बिल्कुल फिट फाइन और एकदम ठीक है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ऑर्गन डोनेशन के बाद में। एक लोगों के भ्रम रहता है कि ऑर्गन निकाल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनकी लाइफ रहेगी या नहीं रहेगी, क्या प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन अभी तक तो उन्होंने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है। 4 या 5 दिन की टेबलेट थी ट्रांसप्लांट के बाद जब वो आईसीयू में थी, उसके बाद अभी तक कोई टेबलेट नहीं है। बीपी बिल्कुल परफेक्ट है, अभी पीछे ही जांच करवाई थी, क्रिएटिन वगैरह एकदम फिट, बाहर घूमते हैं फैमिली में, फंक्शन में इधर उधर जाते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बढ़िया है।
3: अच्छा, बहुत सारे लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने से कतराते भी हैं, तो आप बताइए आपका अनुभव कैसा है?
4: नहीं, बिल्कुल सही फैसला था, करवा लेना चाहिए। डायलिसिस बहुत हार्ड है और मुझे तो फिस्टुला नहीं लगा था, लेकिन 1 month के बाद फिस्टुला भी लग जाता है, फिर फिस्टुला भी हाथ में, फिर हाथ से। मेरे कोई रिलेटिव है, उनको दूर के रिलेटिव है, 20 years हो गए हैं किडनी फेल हुए, वो डायलिसिस करते हैं खुद ही, घर पर मशीन लगवा रखा है क्योंकि डोनर अभी तक मिला नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं उनके शरीर में, जगह जगह वो फिस्टुलाज, कभी पैर में, कभी कहीं, कभी कहीं, बहुत हार्ड है जीना, डायलिसिस बहुत हार्ड है।
3: क्या कोई ऐसी दिक्कत है आपके सामने अभी जो आपको लग रहा है कि ट्रांसप्लांट के बाद ये दिक्कत हुई है मेरे शरीर में,
4: हाँ ऐसे तो कुछ चीजें अवॉइड करनी पड़ती है, पहले जैसी लाइफ तो नहीं रहती है, बट ओवरऑल ये है कि बढ़िया लाइफ है, ऐसा आप नहीं कह सकते कि कोई कमी है, बिल्कुल सामान्य जीवन है जैसा अपने फैमिली में कोई जी रहा है ये, या बाहर कोई जी रहा है, बिल्कुल वैसी लाइफ है, कोई मुझे डिफरेंस ऐसे ज्यादा नजर नहीं आता। हाँ कुछ हेल्थ के लिए आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा, वो की जो की सबको करना चाहिए, पाम ऑयल हो गया ये वगैरह चीजें हैं, वो तो आजकल हर किसी को करना ही चाहिए अवॉइड।
3: यानी कि खान पान जो आपकी खुराक है वो अच्छी रखनी चाहिए। कोई और चीज जो आप कहना चाहते हो हमारे श्रोताओं से जो भी इस टाइम आपको सुन रहे हैं?
4: ऑर्गन डोनेशन बिल्कुल करना चाहिए, और उससे खुद को भी एक सर्टिफिकेशन मिलता है, कोई जो कोई ऑर्गन डोनर है या किसी ने ऑर्गन डोनेशन फॉर्म फिल किया है, बिल्कुल करना चाहिए। आपके फैमिली में प्रॉब्लम है तो उसका तो कोई नो आंसर ही नहीं है, 100% आपको ऑर्गन डोनेशन उसको करना चाहिए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी ऑर्गन डोनेशन में फॉर्म फिल करना चाहिए, और उससे सेटिस्फिकेशन मिलता है खुद को कि अपने लाइफ में कुछ वेलबींग के लिए कुछ किया है, ऐसी लाइफ नहीं चली गई है। और मिलने के बाद ऑर्गन डोनेशन ये एक तरीका है कि आपकी लाइफ के बाद ही लाइफ जो है चलती रहे। कहते हैं कि ऑर्गन्स मेमोरी कलेक्ट करते हैं, ऑर्गन्स भी कहीं ना कहीं 5% 10% मेमोरी को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया है तो वो मेमोरी भी अगले बंदे में थोड़ी बहुत जा रही है, और उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, वन किडनी के साथ भी लीवर भी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, लीवर है तो लीवर वापस ग्रो हो जाता है कोई अगर डोनेट करता है, और एक किडनी के साथ कहीं तो बोन नहीं एक किडनी के साथ ही होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं।
3: और अभिषेक जी कोई भी ऐसी चीज जो मैं ना पूछ पाया हूँ और आपके मन में हो और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
4: यही है कि अब कुछ न कुछ सेकंड लाइफ मिली है तो कुछ अचीव करना है, ऐसे ही सेकंड लाइफ में ऐसे ही नहीं जाना है, कुछ न कुछ करके जाना है कि लोग याद रखे।
3: जी तो हमारी पूरी संस्था की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, सबसे पहले मुबारक हो इस नए जीवन के लिए, और दूसरा शुभकामनाएं जो भी आप उच्च विचार यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि समाज में आपको कुछ करना है कुछ बेहतर करना है तो उसके लिए शुभकामनाएं आप। थैंक यू सो मच अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के शो से और अभिषेक जी की कहानी से हम कुछ मूल्य आप लोगों तक पहुँचा पाए हैं। तो कुल मिलाकर हमारे हर एक संवाद का उद्देश्य यही होता है

0: तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।
1: फिर लौटेंगे ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में।
2: दोस्तों, अंगदान से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप ऑर्गन इंडिया की वेबसाइट organindia.org पर जा सकते हैं या उनके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर संपर्क कर सकते हैं। अंगदान के बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सबको प्रेरणा दें।

0: करो।
1: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
3: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन, ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क, पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी, जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते।
4: अभी आप सुने थे प्रायोजित कार्यक्रम FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को प्रदीप का नमस्कार। दोस्तों कहते हैं ना कि कुछ चेहरे समय की धूल से कभी धुंधले नहीं पड़ते, कुछ मुस्कान ऐसी होती हैं जो पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में उजाला करती रहती हैं। हिंदी सिनेमा के आकाश में ऐसा ही एक सितारा थी अभिनेत्री मधुबाला, जिन पर केंद्रित है हमारा आज का ये कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं कि इस सफर में आप हमारे साथ रहेंगे। दोस्तों अभिनेत्री मधुबाला जिनकी खूबसूरती की चर्चा दुनिया भर में हुई, लेकिन उनकी असली पहचान थी उनका जीवंत अभिनय, उनकी मासूम हंसी और दर्शकों के दिलों से सीधा जुड़ जाने वाला उनका अभिनय अंदाज। आज के इस खास कार्यक्रम में हम याद करेंगे मधुबाला के जीवन और फिल्मों के कुछ अनछुए पहलुओं को समझने की, सुनने की, और सुनेंगे उनके फिल्मी सफर के चुनिंदा सदाबहार गीत। दोस्तों दिल्ली में जन्मी मुमताज जहां बेगम देहलवी बाद में पूरी दुनिया के लिए मधुबाला बन गई। आर्थिक कठिनाइयों के बीच बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू किया और देखते ही देखते हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। उनकी पहली सफलता ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। और भाई इस पड़ाव पर सुनते हैं वो गीत जिसने रहस्य और रोमांस को नई पहचान दी।

श्रोता दोस्तों, मुमताज़ जहां बेगम देहलवी, ये नाम बहुत बड़ा था और इस नाम को फिल्म इंडस्ट्री में चलाना बहुत दिक्कत भरा रहा और तभी उनका नाम मधुबाला रखा गया और ये नाम फिल्म इंडस्ट्री में इतना लोकप्रिय हुआ कि बहुत जल्द मधुबाला फिल्म इंडस्ट्री की चहेती बन गई। 1940 के दशक के अंत तक मधुबाला बहुत तेजी से फिल्म इंडस्ट्री की पसंदीदा अभिनेत्री बन चुकी थी। फिल्म महल, तराना, दुल्हन, अनमोल घड़ी ने उन्हें हर वर्ग में लोकप्रिय बना दिया था। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जिसमें मासूमियत थी, शरारत थी और एक अनकहा दर्द भी। 1951 में अमेरिकी पत्रिका टाइम ने उनकी तस्वीर छापते हुए लिखा था, द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड। और ये भारतीय सिनेमा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था।

श्रोता दोस्तों, अक्सर लोग अभिनेत्री मधुबाला की सुंदरता की बातें करते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्टर को देखें तो फिल्म निर्देशक उनकी अभिनय क्षमता के कायल थे। कैमरे के सामने आते ही अभिनेत्री मधुबाला किरदार में इस तरह ढल जाती थी कि दर्शक कहानी का हिस्सा बन जाते थे। उनकी मासूमियत से भरा ये गीत सुनिए और महसूस कीजिए उस दौर को।

दोस्तों, फिल्मी दुनिया में मधुबाला और अभिनेता दिलीप कुमार की प्रेम कहानी आज भी याद की जाती है। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें एक नहीं होने दिया। शायद इसी दर्द और प्रेम की झलक उनके अभिनय में दिखती है, उनकी फिल्म मुगले आजम में। और ये गीत सुनिए।

इस गीत को सुनकर आपको अभिनेत्री मधुबाला के उस अभिनय अंदाज में महसूस हो जाएगा उनका दर्द।

दोस्तों, मधुबाला की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सहजता, यानी उनके अभिनय में जो सहज भाव दिखता था वो शायद ही कहीं दिखाई दे। गंभीर भूमिकाओं में जितनी प्रभावशाली अभिनेत्री मधुबाला लगती थी वो तारीफ़ काबिल थी। हल्के फुल्के किरदारों में भी वे बड़ी ही चंचल शौक लगती थी। उनकी मुस्कान और आँखों की शरारत दर्शकों को अपना दीवाना बना देती थी। आइए अब सुनते हैं उन पर फिल्माया ये बहुत प्यारा गीत।

बहुत कम लोग जानते हैं कि अभिनेत्री मधुबाला लंबे समय तक हृदय रोग से पीड़ित रही, लेकिन उन्होंने कभी अपने दर्द को अपने काम पर हावी नहीं होने दिया। अभिनेत्री मधुबाला की जिंदगी हमें सिखाती है कि संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। इसी भावना के साथ ये गीत सुनिए और आपको अंदाजा हो जाएगा कि अभिनेत्री मधुबाला दर्द को कितनी संजीदगी से छुपा लेती हैं।

आज समझे

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के।

0: श्रोता दोस्तों, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से अपना मनपसंद कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। श्रोताओ, आप जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि एक छोटा संतराल है और फिर लौटते हैं इस कार्यक्रम में।
1: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: दादी की कहानियां, पिता की पसंदीदा कविता, माँ की

0: गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: तो दोस्तों, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री मधुबाला के जीवन से जुड़ी हुई, उनके फिल्मी कैरियर से जुड़ी हुई। दोस्तों, अभिनेत्री मधुबाला के व्यक्तित्व में एक ऐसी ताजगी थी जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उनके व्यक्तित्व की ताजगी किसी ठंडी हवा के झोंके जैसी महसूस होती थी। ये गाना सुनिए, आप खुद जान जाएंगे।

दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 36 साल की छोटी सी उम्र में मधुबाला इस दुनिया से विदा हो गई, लेकिन उनका कला संसार आज भी जीवित है। उनकी फिल्में, उनके गीत और उनकी मुस्कुराहट आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेंगी। श्रोता दोस्तों, कुछ कलाकार समय के साथ इतिहास बन जाते हैं और कुछ इतिहास बनकर भी हमारे वर्तमान का हिस्सा बने रहते हैं। मधुबाला भी उन्हीं अमर कलाकारों में से एक है। मधुबाला की मुस्कान, उनका अभिनय और उनकी यादें भारतीय सिनेमा की अमूल्य धरोहर है, और हम जब भी उन्हें याद करेंगे, उनका खूबसूरत अभिनय, उनका सजीला अंदाज एक मीठी याद बनकर हमारे सामने आ जाएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अभिनेत्री मधुबाला पर केंद्रित हमारा आज का ये कार्यक्रम। FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही क्षण में हम चलेंगे दिल्ली केंद्र, जहाँ से आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में। विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सिटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से ये जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
7: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों

0: कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन

लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, और हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए

हम सुन रहे थे उमराव जान फिल्म से तलत अजीज की आवाज में शहरयार के बोल और खयाम के संगीत से सजी हुई इस गजल को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए मैं आज की अंतिम गजल। मासूम फिल्म से है और अनूप घोषाल की आवाज है, गुलजार के बोल हैं और आर डी वर्मन का है संगीत।

0: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम आपके लिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम चार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया कहने लगे यहाँ हम डोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

0: मेरा जन्म भी बंबई का है और मैं भी साउथ बॉम्बे में ही मेरा बचपना मैंने बिताया। हम लोग पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौड़ जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज़्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज़ सुनी तो वो किसी साहस की सुनी, या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग पांचों इतने मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई हैं अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद ही इज ऑल्सो प्लेबैक सिंगर, और सबसे छोटा है दिलीप। मुझे एक किस्सा बराबर याद आ रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, म्यूजिक सिखाते थे, क्योंकि मैं संगीत में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तो जब भी कोई स्कूल का फंक्शन होता था तो कहीं ना कहीं वो मुझे उसमें तबला बजाने के लिए कहते थे या गाने के लिए कहते थे।

0: पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं हुई, क्योंकि संगीत बहुत कम उम्र से ऐसा रच बस गया था कि या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था, पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौर एक दक्ष तबला वादक हैं। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौर ने गायन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई एक सुरीले गजल गायक के रूप में।

पार्श्व गायक के रूप में रूप कुमार राठौर को पहला मौका दिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अंगार में। इसके बाद आई फिल्म भैरवी, जिसमें रूप कुमार राठौर की आवाज को बहुत पसंद किया गया। कुछ और फिल्में मिली जैसे गुमराह, मोहब्बत की आरजू, तेजस्विनी और नाजायज, लेकिन रूप कुमार राठौर को असली कामयाबी मिली फिल्म बॉर्डर से।

पहला प्रोग्राम मुझे याद है, जैसे मैं 6 साल का था तब मैंने स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस, एक ग्वालियर टैंक पे एक हॉल है तेजपाल हॉल, वहाँ पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज़्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफ़ी म्यूजिशनों का आना जाना रहता था और कई उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा प्यार, और गाने बजाने की बातें ज़्यादा होती थी राधर देन गॉसिप। तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो आवाज़, जो तबले की जो पहली आवाज़ या धा या ता या तिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पे डाला कि अगर मैं रो रहा हूँ और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, 102-103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बा जी, जिसे हम प्यार से अब्बा जी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब घर पे आए, और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज़ मुझे सुनाई दी, और मेरी आँख खुल गई और मैं रोने लगा, जिद करने लगा। और फिर खां साहब ने, अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे, और 1 घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया। हाँ, तो वाकई वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज़्यादा छाया हुआ था। तो शायद यही वजह रही हो सकती है कि मैंने तबला

0: कुमार जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कि कौन कौन आते थे?
1: अबाजी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह खान
1: साहब और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफ़ी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके एक बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोज़र हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमी अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
0: तबला जो था उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और किन से आपने सीखा?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने से आई, कुछ चीज़ें सीखने से आई, और कुछ चीज़ें जो हैं अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, ख़ास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तरकवा खान साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सब को देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एक लव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में बिठाई, और मैं आज भी वो चीज़ें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गज़लें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला, उसमें से ये एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था।

0: 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहाँ मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में
0: और वहाँ पर हारमोनियम पड़ा हुआ था, ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था, और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई, उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
2: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौर को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए।

0: जमाना।
1: लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश,

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौड़ पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चांदनी रातें।

चांदनी रातें कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को प्रदीप का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अपनी फरमाइश के गीत, और आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है आप सभी सुनने वालों के व्हाट्सएप संदेशों पर। सुबह से शाम

इस बहुत मधुर गीत के बाद सुनते हैं ललकार फिल्म का ये दो गाना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज़ में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इस गीत को सुनने के लिए व्हाट्सएप संदेश आप सबने किए। मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीत कंवर तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, एमडी फजान, एमडी फरहान, समय राज, मिनगुड़िया। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकास्ट्रो, रोजी डिकास्ट्रो, पर डिकास्ट्रो, विदेश डिकास्ट्रो। सदर बाजार मालवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान की फरमाइश है। गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से सोन सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और गुरनूर सिंह, शुभदीप सिंह। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। मुरादाबाद गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसरार, नरगिस खातून। कुमारहेड राजस्थान से सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा, नाजिया,

Mafia, Ibrahim Saddam. गांव फ्रांसी हिसार से व्हाट्सएप संदेश भेजा है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना। गांव बोरी खुर्द से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत जगुताई, आरे गांव से संचित वायाल, मोताला से कुमारी प्रणाली देशमुख, मोताला से प्रथमेश देशमुख, करडा से कुमारी सानवी देशमुख और सरवद देशमुख। शास्त्री नगर बीड़शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल, विशाल सपकाल। जिला खरगोन से नवद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मुसा भाईजान, राजकुमार बुडाना, आदलपुरा गांव से संजय बामणिया, माया कान्हा और कृष्णा। सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर वीक, जैतिक वीरक और मीका वीरक। सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ललकार फिल्म का ये दो गाना।

अच्छा तो दोस्तों, आप सुनते हैं प्यासा सावन फिल्म का गीत। कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख और सानवी देशमुख। जगोड़ी गांव यमुनानगर से रणधीर भांगड़, गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम, वीरेन, मनराज। नागलगांव से इंद्राज, इनकी फरमाइश आई है हमारे पास। हिंगोली महाराष्ट्र से श्रोता हैं शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, हम उत्तम जमदाड़ हैं। सलार पहलगांव कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, केसरुद्दीन। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। धुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजी है आदर्श नगर मलोर पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ, साइना और निवान शर्मा। नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलहत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज और साजिया, शाहिनाज, नाजिया, नूरीनाज। खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा, सतबीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्य बिजारनिया। जोगीवाला गांव श्री गंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका, मनीष सहारण। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी, वीपी रांझू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक और वीकेपुरी। फाजिलका पंजाब से क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, ओम बगड़िया, बेबी गरिमा, रजत और मनीष चौधरी। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। पटेल नगर मलोर पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप जाजोरिया, अर्जुन जाजोरिया, गुड्डू। पद्मा टॉकेज नेपा नगर मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजी है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, मंगला इंगले। सुनिए अपनी फरमाइश प्यासा सावन फिल्म से। आवाज है लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर की, संतोष आनंद का गीत है। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फरमाइश आपकी, आपको नजर।

इस बहुत मीठे गीत के बाद दोस्तों आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर अगला गीत है गांव चोहलता बागपत से संजय ढींगिया नमन ढींगिया और अपार ढींगिया तालुका शेव गांव मुंगी पैठन महाराष्ट्र से बाबा साहेब कंगनकर साखरबाई कंगनकर परमेश्वरी परमेश्वर रोहिणी श्रावणी ईश्वरी कंगनकर परिवार गांव बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलक चंद वर्मा भागवत वर्मा अभिषेक वर्मा सीमा वर्मा डॉक्टर अमित वर्मा सचिन मास्टर समर राज आर्यन बेबी आरोही यशिका अंजलि श्वेता वर्मा ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत प्रवीण अब्बासी शाहनवाज सरफराज और अब्बासी परिवार सनावत से शेख मुसा मोहसिन अशोक वर्मा राजकुमार बोडाना कर्मा चौक लोहारी डी कवर्धा छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार साहू लीलेश्वरी साहू की फरमाइश हमारे पास आई बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद पुणत नेहा जैन दीपक मयंक पुणत चेतन नाहटा दिलीप सिंह पवार फरमाइश आई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक अनिल शर्मा जयवीर सिंह ठाकुर कालका से फरमाइश भेजी है शुभचंद्र बजाज और बिट्टा बजाज ने जिला झारखंड बड़ा बाम्बू सुपाई गांव देवेंद्र तांती हैं राकेश तांती प्रकाश निशा कुमारी रेशमा कुमारी दीपाली कुमारी देवेंद्र सी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी सुनिए आप सबकी फरमाइश पर चोरी चोरी फिल्म का ये दो गाना लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में ये गीत है शैलेंद्र ने गीत लिखा संगीतकार हैं शंकर जयकिशन आपकी फरमाइश आपको नजर है

दोस्तों, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चांदनी रातें अपने दोस्त प्रदीप के साथ। कार्यक्रम का बाकी हिस्सा अभी आपको सुनाएंगे छोटे से अंतराल के बाद।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
3: तो लीजिए दोस्तों, हम फिर आज रहे हैं आपकी सेवा में और अब सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती। आवाज लता मंगेशकर की है, इंदिवर का लिखा यह गीत, संगीत से संवारा है अनु मलिक ने। इस गीत की फरमाइश की है आप सबने मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवानकर, राही सरिता गवानकर, प्रणीता सिद्धांत गवानकर, प्रिंस एकांश गवानकर, अर्जुन गवानकर और टुक टुक। कनेरा मोहल्ला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतु निहारी का हार्दिक वंश बत्ता। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गोगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, सुहानी शर्मा, पंकज शर्मा, रोहित शर्मा और रेशमा गुदारा। गांव वाला जिला अम्बाला से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और इनके परिवार के सदस्य। गांव दुल्हापुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहुजा। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिढा, अलका मिढा। मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत। विपनगर बीड से बाला प्रसाद कारवा, गीतांजलि कारवा, आकाश कारवा, आकांक्षा कारवा। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश जलालाबाद से राशिद मंसूरिया।

मंसूरी, जैसन मंसूरी। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुश दिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुश दिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुश दिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुश दिल, संजीव बंटी जिंदल। बीड शहर महाराष्ट्र से फरमाइश भेजी है नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्रे, बाला प्रसाद, गीतांजलि, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पी बिकुल थे। मुरादगढ़ गांव करनाल से रमेश कांबा, कुमार कांबोज, पिंकी वंश और भुवेश कुमार कांबोज। इसे गीत को सुनना चाहते हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली के अमर श्रोता, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से इनके परिवार के सदस्य हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना। आइए सुनते हैं दीवर का लिखा हुआ गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

याराना फिल्म का गीत अब सुनवाते हैं आपको। आवाज किशोर कुमार के अनजान का लिखा गीत, संगीत से संवारा है राजेश रोशन ने। इस गीत की फरमाइश की है आप सबने। गांव सिली कला से जयसिंह काम्बोज, विजेंद्र सिंह काम्बोज, रिदम निश्चय सिंह काम्बोज, जयपाल धीमान, कस्बा चिलकाना, सहारनपुर से मोहम्मद जरीफ अंसारी, नईम अंसारी, डॉक्टर आमिर अंसारी, मुन्ना नाजिम अंसारी और दानिश राजा। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती, ओम रेडियो श्रोता संघ के साथी हैं। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओंकार गायकवाड़, साईं गायकवाड़, गौतम नगर से नांदेड़ से हैं प्रभाकर जोंधरे, आरती जोंधरे नांदेड़ महाराष्ट्र से, सागर लखनादून मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, सक्षम रिमझिम चौबे, रानू चौबे, अनारकली बाजार जगराउंड से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, सेक्टर 8 भिलाई छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, आसमा श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, अनुश्री, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, पूजा परिहार, लाल माता सुदामा नगर रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, मनोहर भाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मन भावन, शोभा, कपिल, नैना, सत्यनारायण, फुंदीबाई बागरी, जाखोद राजस्थान से श्यामदयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत खट्टक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खट्टक, मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीव्यम, पाकुड़ झारखंड से फरमाइश आई है श्वेता भगत की, सुता सुवर्णवानंद, सत्यमानंद, बोहड़ा गाछी वेस्ट बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत की फरमाइश है, गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा स्वप्निल और रक्षता लोखंडे, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर, प्रदीप यमेकर की फरमाइश, बेरडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची करमकर, तन्नू करमकर, अस्तुपुला जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मऊ सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन अब्दुल्ला आजाद। आप सभी श्रोता सुनिए याराना फिल्म का ये गीत, तेरे जैसा यार कहाँ।

दत्रिंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। पदमपुरा जिला गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बबू डब्बू। जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत मोहम्मद, रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा नूर। नर्मदा पार मंगलवीडा से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल। मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा। नानकचंद मल्होत्रा शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, डोगू सिक्का। गांव लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना। गांव पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति, शिवांग वर्मा। लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। इस गीत को सुनना चाहा है कैथल से राजेंद्र बेबियन, अंजू बेबियन, साहिल बेबियन और नैन्सी बेबियन। आइए सुनते हैं जिगर फिल्म का गीत

और दोस्तों अब कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं हिमालय की गोद में। इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। इस गीत को सुनना चाहे आप सबने। चरखी दादरी हरियाणा से नर्मदा, नम्रता, खुशबू, खुशदीप और इनके परिवार के सदस्य। रघुनाथपुरा जिला गंगानगर राजस्थान से लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोड़ा ने, अर्चना ताई गोड़ा ने, हीरामन शेड़े, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोड़ा ने। दाऊदसराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नू साबरी, मुदस्सी साबरी, मुजक्किर साबरी, जरीफ अंसारी। जेद रोड जालंधर से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आसमा कौर, धर्मजीत, फातिमा कौर। और इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है

गाउँ कस्बापराडा जिल्ला अम्बाला से रवि कुमार राहुल जयप्रकाश राहुल गुरकिरत गुरसिमरत और प्रियंका मन्नत गुरशबद सिंह राहुल घरौंडा से विजेंद्र कुमार जयजान आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत। और दोस्तों इसी गीत के साथ ही अपने दोस्त प्रदीप को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम से कि आप सभी खुश रहेंगे अपने जीवन में अपना ख्याल रखेंगे अपने परिवार का ख्याल रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय। नमस्कार।

अभी आप सुने थे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम चांदनी रातें। एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। आप चलते हैं दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu.